0: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
1: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
0: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: स्किन एलर्जी, मस से, नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है।
1: विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने देश में अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के बंद होने की खबरों का खंडन किया है। एजेंसी ने लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे और निराधार दावों और भ्रामक सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग द्वारा आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बातचीत का उद्देश्य आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना और राज्य के विकास को उजागर करना था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के अंतर्गत कंपनियों को मंजूरी पत्र सौंपे। कुल 29 आवेदनों को 7,100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि रुपए का मूल्य बाजार से प्रेरित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। आज लोकसभा में रुपए के अवमूल्यन पर प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण दुनिया भर की मुद्राओं में अस्थिरता देखी जा रही है। लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक पहले संसद के प्रवर समिति को भेजा गया था। इसके बाद दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में आगे संशोधन के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य प्रक्रियागत विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा शुरू हुई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने नरेंद्र मोदी सरकार, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के प्रयासों की सराहना की। श्री शिंदे ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से रेड कॉरिडोर अब विकास कॉरिडोर में परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 200 जिलों में फैला वामपंथी उग्रवाद अब सिर्फ 3 जिलों तक सिमट गया है। सरकार ने आज कहा कि देश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास 58 करोड़ टन से अधिक कोयले का भंडार उपलब्ध है। इससे संयंत्र औसतन 19 दिनों तक 85% प्लांट लोड फैक्टर पर चल सकेंगे। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Government today assured that amid the West Asia conflict, the country has sufficient stock of fertilizers. Addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi, Additional Secretary for Department of Fertilizers Aparna Sharma informed that the country's urea units are currently producing at 80% capacity. She said that during the Kharif season, the country requires 390 tons of fertilizers. She said that efforts are being taken to diversify the sourcing basis other than the Gulf countries.
3: States have been sensitized to prevent any panic regarding availability of fertilizer. We have sufficient stock available. Honorable Minister for Chemical and Fertilizer has already spoken to major state governments, the agrarian states, in this regard. We are keeping a strict watch on the diversion, black marketing and hoarding, etc. Efforts are being taken up to stabilize all the raw material supplies, including rock phosphate. Further proactive measures are being taken to diversify our sourcing basis other than the Gulf countries.
2: Joint Secretary of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that there is adequate availability of petrol, diesel, LPG and PNG in the country. She said that the government has taken several measures to ensure this at multiple levels and continues to do so. She said that the country's refineries are operating normally and crude inventories are sufficient. The Lok Sabha has taken up a discussion on efforts to free the country from left-wing extremism. Initiating the debate, Shiv Sena MP Shrikant Shinde hailed the efforts of Narendra Modi government, paramilitary and police forces to make the country free from naxalism. He also paid tributes to all those security personnel who laid down their lives while fighting with left-wing extremism. Mr. Shinde hit out at the Congress saying that when the party was in power, it failed to provide necessary facilities to tribals and backward communities, which forced them to take up arms. Participating in the discussion, Saptagiri Sankar Ulakka of the Congress said that several efforts were also taken during the UPA government

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज के पीछे हम ज्यादा भागते हैं अक्सर वही चीज हमसे दूर होने लगती है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वो उतना हमसे दूर होती है। भागते हैं अक्सर वही चीज हमसे दूर होने लगती है और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वो उतना हमसे दूर होती हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं जो चीज हम नहीं चाहते हैं वो उतनी ही सामने आ जाती है ना। कभी कभी ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में भी, एंड आई एम श्योर मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत बारी होता है। हाय नमस्कार, वेलकम बैक, है सुप्रभात। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, एंड हो गई है एक अमेजिंग मॉर्निंग की शुरुआत लेडीज एंड जेंटलमैन। आज 16 सितंबर, एंड बहुत ही प्यारा वेंसडे का दिन है। आज बुधवार है। ओम गण गणपते नमो नमः, गणेश भगवान के साथ करते हैं, उनका नाम लेकर करते हैं आज के सफर की किक स्टार्ट, आज के सफर की शुरुआत। देखिए बुधवार है और इस वक्त गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश आपके जीवन से सारे विघ्नों को हरें, सारे कष्टों को हरें और आपके जीवन में सिर्फ सुख और शांति दें। दोस्तों कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अक्सर हम इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें चार लोगों की इतनी परवाह होती है, इतनी टेंशन होती है कि उन चार लोगों को पता ही नहीं होता कि हम उनके बारे में सोच सोच के अपना समय खराब कर रहे हैं, जबकि उन चार लोगों को ना आपसे कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये चार लोग ना, इनकी बात में भाई साहब बिल्कुल भी अपने आप माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, इनकी बातों को सुनना ही नहीं है। आपको जो बेटर लगता है, आपको जो सही लगता है, आपने वो करना है और अच्छी तरीके से अपनी दिन की शुरुआत, अपनी लाइफ की शुरुआत फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ। देखिए लोगों का काम है, वो आएंगे चले जाएंगे, जब आपको जरूरत होगी वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो भैया देखो, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ने का, अपनी लाइफ को जो है इंटरेस्टिंग बनाने का। मैंने एक चीज देखी का, मतलब जो मुझे पर्सनली फील होती है, रियलाइज कि मौके का फायदा हर कोई उठाता है, इसलिए ऐसा मौका ही मत दो किसी को कि कोई फायदा उठाए ना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, हर एक मोमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है यार। 8:25 हो गए हैं 16 सितंबर की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, स्पेशल मॉर्निंग है 2026 की। आगे बढ़ेंगे एक खूबसूरत गाने के साथ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे मैंने निकाल दिया है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और आज की मॉर्निंग की किक स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। कुछ कहना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं मुझे आज की मॉर्निंग 9837896896। बहुत ही ताजा तरीन गाना आपको सुनाने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ और आप भी सुनने के लिए तैयार होंगे आई एम श्योर। उदित साहब की बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारा गाना है, एआर रहमान साहब का म्यूजिक है, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है।
1: ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा।
0: बस अपने नजरिए को ऐसी रखना है, जिस भी चीज को देखो प्यारा लगे यार, बाकी कौन क्या सोच रहा है आपको सोच

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

काश इतना प्यार अपने शरीर से किया होता तो आज की सुबह आपका शरीर भी फिट और हेल्दी होता। क्या कहा आनंद जी, हम तो बहुत हेल्दी हैं, आई नो यार, बट बहुत सारे लोगों की तबीयत थोड़ी नाशाद है। कोई बात नहीं यार, जुकाम हो गया है, ओहो खांसी हो गई है। देखिए मौसम धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है ना, तो आपको स्पेशल ख्याल रखना है, कुछ एहतियात बरतना है आपको। और अगर आपको हल्का से भी सर्दी जुकाम है तो भैया डॉक्टर से दवा लो और आराम करो, बहुत जरूरी है। और देखिए अगर तबीयत थोड़ी सी भी नाशाद है तो बस पॉजिटिव सोचो, गेट विल सून, जरूर जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। और आप कितने भी ज्यादा, आप अंदर से, आपको कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपका शरीर कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं ना तो वो चीज और जल्दी रिकवरी करती है ना, इस बात को ध्यान रखिए। तो बस पॉजिटिव रहिए, अपनी स्ट्रेंथ को वीक मत होने दीजिए, स्ट्रांग होके, पॉजिटिव होके, अच्छा सोच के मेडिसिन लीजिए, सब अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी कहना चाहते हैं कुछ ऐसा काम करें यार कि ऐसी जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो उसके लिए अगर आप सुबह सुबह की दिनचर्या में अपने लिए 10 मिनट निकालते हैं ना, ये 10 मिनट आपके लिए बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल हो सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है आपने, बहुत सिंपल है, बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए 10 मिनट का टाइम निकालना है। कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं बताता हूं।

0: सो दोस्तों देखो, 10 मिनट अगर आप खुद को देंगे तो आप इन 10 मिनट में बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं सुबह सुबह। और सुबह का समय जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 10 मिनट में 10 चीजें भी कर लेते हो ना, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छी तरीके से खुद को हेल्दी और फिट रख पाओगे। एग्जैक्टली, आपको कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें करके आप खुद को हेल्दी बना सकते हो, खुद को फिट एंड फाइन बना सकते हो। बहुत सिंपल चीजें हैं अक्सर, और ये चीजें ना मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप इन चीजों के बारे में डेफिनेटली जानते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो लेकिन मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी सुबह की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आप योगा के साथ कीजिए, आप अनुलोम विलोम करके कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। आप बहुत सारे योगासन हैं, उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं आप कपालभाति कर सकते हैं, आप ओम चेंडिंग कर सकते हैं, आप योगा की और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अगर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेटर लगता है, आपको लगता है कि ये मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, आप वो कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत पावरफुल होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। सुबह सुबह जो लोग उठते हैं ना, ये चीज आप उनसे पूछ के देखेंगे तो आपको बहुत बेटर फील होगा, यानी आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार सच में सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। तो सुबह सुबह आप जो है, अगर योगा नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो आप अगर वॉक भी करते हैं ना, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुबह सुबह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज चलने वाली, मतलब अगर आप सिर्फ अपने घर का थोड़ी सी दूरी पर जाके कुछ राउंड काट के आ जाते हैं, मैं कहता हूँ रामलीला ग्राउंड के आसपास रहते हो, तो एक चक्कर भी आप लगा लोगे तो आपके लिए बहुत है। सुबह सुबह कुछ भी करो बट एक्सरसाइज जरूर करो, बहुत जरूरी है अपनी दिनचर्या को एक्टिव बनाने के लिए। और एक रिसर्च में ही पता लगा है, सुबह सुबह अगर आप डांस वगैरह करने का बहुत शौक रखते हैं, तो अगर आप डांस वगैरह करते हैं तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, है ना। तो आपको जो बेटर लगता है आप वो कीजिए, बट जरूर कीजिए। मैं तो कहूंगा कि सबसे अच्छा है आप योगा जरूर करें, कहते हैं ना करें योग रहे निरोग, तो योगा बहुत बढ़िया है। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए एंड बट सुबह सुबह अपने लिए जरूर समय निकालिए, बहुत जरूरी है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको पूरा दिन रिचार्ज रखती है। बाकी अगर आप जिम शिम जाते हैं तब तो बात ही अलग है यार, है ना। जिम विम अगर आप जाते हैं तो बात अलग ही है। फिर जो लोग जिम लवर हैं, ये चीज़ तो खैर उनसे पूछ के देखना आप कितने उनको अच्छा फील होता है, और जिस दिन वो नहीं जाते हैं तो उनसे पूछ के देखो यार उनको कितना अपसेट फील होता है। ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो लोग जिम वगैरह करते हैं। बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया आप जिम जाएं या ना जाएं, आप घर पे ही एक्सरसाइज करें बट जरूर करें। और बाकी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आने वाला गाना,
1: ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल
0: करेगा।
1: हम तो जान देकर यूं ही मर मिट,
0: क्या बात है।
1: सुन लो ऐ हसीनो, ये हमसे अब न होगा ऐसा जख्म।
0: 90s का बेहतरीन गाना, काफी नॉस्टैल्जिया वाइब। वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए, मैं लौट कर आता हूँ जरा सी देर में।

0: Bindas Morning. Bindas Morning. Bindas Morning. क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
1: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

सच में यार, गाना बहुत कमाल का और ऐसे गाने सुन के सच में आनंद आ जाता है। सुबह सुबह बेहतरीन ट्रैक अभी आपने सुन लिया। 8:53 का समय हो गया। अब आइए बात करते हैं आज के दिन के बारे में। क्यों खास है आज का दिन, का ये इतिहास का पन्ना, इस पे एक चर्चा करेंगे, एक नजर डालेंगे।

चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, यानी कि आज के इतिहास के पन्नों के बारे में एक नजर डालेंगे। 16 सितंबर की तारीख क्यों इतिहास के पन्नों के लिए इतनी खास मानी जाती है? विश्व ओजोन दिवस जो है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये 1987 में इसी दिन ओजोन परत को बचाने के लिए जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्रोताओं आपको बताते चलें तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है और इतिहास के पन्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तमाम सारे दिवस जो हैं वो आज के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन्हीं में से कुछ डे हैं जिनके बारे में आज हम सुबह सुबह आपसे बात कर रहे हैं आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। दोस्तों वक्त हो गया है 8:54 स्टेशन क्लॉक में, जो है समय हम बताते रहते हैं ताकि आप समय के साथ चलें। मेक्सिको को आज के दिन स्वतंत्रता को जो है, मतलब जो मेक्सिको है उसकी स्वतंत्रता को आज के दिन मान्यता मिली थी सन 1821 में। आपको बताते चले जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी सन 1908 में आज के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चले एक और खास चीज, देखिए यूं तो दुनिया भर की चीज़ें आज के दिन सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। आपको बता दें आज ही के दिन जो है एक और ख़ास चीज़ हुई और वो क्या थी, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ बिना किसी देरी के। आज के दिन ये चीज़ थी भैया, आज ही के दिन जो है भारत की महिला, एक ऐसी महिला जिनका नाम एक अलग ही रौनक छोड़ देता है, एक अलग ही छाप छोड़ देता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ गीता रानी जी की। सन 1981 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चले एक और नाम जुड़ जाता है आज ही के दिन, बलवंत सिंह का, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ सन 1882 में। और एक और नाम आज के दिन हम भला कैसे भूल सकते हैं, जी हाँ, आज ही के दिन जन्म हुआ था क्रिकेट, जो क्रिकेट की दुनिया में एक नया नाम कर रहे हैं, उनका नाम था आर रामचंद्र राव जी। 1931 में इनका जन्म हुआ था। सुनील आनंद जी का जन्म हुआ जो भारतीय अभिनेता हैं, सन 1977 में आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1975 में आज ही के दिन जो है पुष्कर सिंह धामी जी का भी जन्म हुआ था श्रोताओं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और एक और नाम जुड़ जाता है प्रसून जोशी, जो भारत के सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार हैं। 1968 में 16 सितंबर को इनका भी जन्म हुआ। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो मुझे आपके साथ पहुंचानी थी। बाकी और भी बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं जो आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके सब तो सब चीज़ें सब सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। मुरादाबाद से जुड़ी भी ढेर सारी जानकारियाँ हैं जो ऑफकोर्स आप तक पहुँचाएंगे हम इसी चैनल पर। ढेर सारे श्रोता साथी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कड़ी में 9837896896 पर अपने मैसेज के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं आज की सुबह, अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सुबह सुबह, कोई पॉजिटिव संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और नगमा, खूबसूरत ट्रैक आपके लिए निकाल रहा हूँ आपके रेडियो सेट पर, आप ऐसे ही सुनते रहिए आनंद को, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: कहा मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय,
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सच में यार ब्यूटीफुल डे तो हो जाता है जब वेंसडे आता है तो वीकेंड आने वाली वाइब आने लगती है थर्सडे फ्राइडे एंड वीकेंड। बाय द वे अभी वीकेंड की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर बात करूंगा आपसे आज के दिन के बारे में। 9:03 हो गए, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो यार देखो बिना एनर्जी के डोज के काम नहीं चलता है, क्योंकि आप खुद वेट कर रहे होते हो कि कोई हैपनिंग सी आवाज, कुछ बढ़िया सी एक्साइटमेंट की आवाज, वो यू नो एक एनर्जेटिक आवाज सुनाई दे ताकि हमारे अंदर की एनर्जी भी डबल हो जाए, राइट। सर कल रात में गया था गंज बाजार मुरादाबाद के गणेश उत्सव में, मुझे इनवाइट किया गया था, वहां पर मैं गया, मेरे को इतना अच्छा लगा वहां पे, क्या कमाल के मतलब जो है परफॉर्मेंस थी एंड गणेश आरती इतनी बढ़िया हो रही थी वहां पर, इतनी भीड़ भाड़ थी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊं गणेश चतुर्थी चल रहा है और ऐसे में आप कहीं भी चले जाओ, हरथले में बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है, चंदन नगर में भी सेलिब्रेट हो रहा है गणेश उत्सव, और बाकी आप लोग अपने अपने घरों में तो कर ही रहे हैं मुझे पता है, कुछ कुछ घरों में आज विसर्जन भी होगा, क्योंकि कुछ लोग देर दिन के लिए गणपति लेकर आते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन के लिए गणपति लेकर आते हैं, कुछ लोग 11 दिन के लिए भी लेकर आते हैं। जैसे जिसकी श्रद्धा, जितने दिन पप्पा को रहना है भाई वो उतने दिन ही रहेंगे ना, लेकिन फिलहाल जो सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है ना घरों में, सच में यार बहुत ही अच्छी और सकारात्मक ऊर्जाओं से पूरा माहौल रंगा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ आज वेंसडे भाई साहब, आज गणपति भगवान को 2 इलायची चढ़ा दो ग्रीन, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9:04 हो रहे हैं, आप आनंद

सुन रहे हैं फिलहाल यूपीआई से जुड़ी ढेर सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया हैंडल पर। कल टुमारो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, कल विश्वकर्मा पूजा है, उसके ऊपर भी कुछ खास बातें हो सकती हैं। और इस बार बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है हमारे प्रधानमंत्री के बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर क्या विशेष होने वाला है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एंड यूपीआई से जुड़ी एक खास बात मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। मुरादाबाद में भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। मुरादाबाद की दाल, यू इमेजिन, मुरादाबाद की दाल सिर्फ मुरादाबाद तक फेमस नहीं है, ऑफकोर्स यार पूरे देश में फेमस है, शादियों में सबसे ज्यादा खाई जाती है मुरादाबाद की दाल। लेकिन अब मुरादाबाद की दाल को एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, एक नई पहचान मिलने जा रही है अपनी मुरादाबाद की दाल को यार। मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है जब मैं ये सुन रहा था, तो मेरे को भी लगता है वाओ यार व्हाट वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि मुरादाबाद की दाल को एक अब नई पहचान मिलेगी, और ये बहुत ही अच्छी बात है और बिल्कुल मिलनी चाहिए यार। मुरादाबाद की दाल अपने आप में, जैसे मुरादाबाद के पीतल का बर्तन इतना फेमस है मुरादाबाद में, ऐसी मुरादाबाद की दाल भी बहुत फेमस है यार, है ना। तो फिलहाल मुरादाबाद की दाल को कहां पर एक नई पहचान मिलने वाली है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मुरादाबाद की दाल अपने आप में मतलब एक अलग ही वाइब है यार। तो बस अब जो है इस पे मैं पूरी वार्तालाप आपके साथ करने वाला हूँ, अभी जब लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा यार। चलिए फिलहाल एक और मुद्दा छिड़ गया है मुरादाबाद के अंदर कि भैया स्कूल्स के जो शौचालय है ना वो थोड़े गड़बड़ मिले हैं। कहाँ पर ही है मैं भी आपको बताऊंगा जब लौट कर आऊंगा। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह तो आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप के जरिए। मेरे पास ढेर सारे मैसेज पहुंचे, श्वेता जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। एंड अयूब अली रामपुर से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप, आई एम गुड यार। रिहाना जुड़ चुकी हैं रानी नांगल से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। दुर्गेश जी जुड़े हैं शिखा मानसरोवर कॉलोनी से जुड़ी हैं। इसके अलावा गीतिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, गायत्री नगर से जुड़ी हैं। शिखा के साथ ही कौन है जी, इनका नाम सुनीता झा, थैंक यू सो मच। रिंकू भाई जुड़ चुके हैं हनुमान मूर्ति से। एक और मैसेज आ गया सिविल लाइन से पवन जी का, आप क्या कर रहे हैं यार, व्हाट्सएप करो, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम और बढ़िया सा एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करो मेरे नंबर पे 9837896896 पे। फिलहाल आने वाला गाना वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो मेरे साथ, एंड आई विल बी राइट बैक। डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो आनंद वीडियो।

0: This is the koi mil gaya.
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: इतनी प्यार से बुलाओगे तो चले आएंगे, मैं भी और खुशी भी चली आई है सुबह सुबह आज बहुत जल्दी हमारे स्टेशन में। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है। वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद विद मी। 9:16 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में और ये टाइम होता है कुछ एड ब्रेक का। उसके बाद यूपीआई से जुड़ी एक खास बात आपके साथ शेयर करता हूँ। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: चलिए भाई यार ब्रेक खत्म हो गए हैं और अभी फटाफट से मैं आपको इमीडिएटली बता देता हूँ यूपीआई पेमेंट के कुछ नए नियम और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है वेरी वेरी सून, जो है मैं आपको बताने चाह रहा था लेकिन भैया मैंने सोचा सून को खत्म करके अभी बता डालता हूँ, तो जरा वॉल्यूम बढ़ा के सुनो। भैया आपको बता दें यूपीआई को लेकर कोई जो है बताया जा रहा है यूपीआई को लेकर वो एक बड़ा बदलाव एंड यूपीआई पेमेंट पर जो है नई एमडीआर व्यवस्थाएं लागू होंगी, लेकिन हर ट्रांजेक्शन पर शुल्क नहीं लगेगा, छोटे कारोबारियों के लिए राहत बरकरार रहेगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ठीक है, ग्राहक से छिपा शुल्क नहीं ले सकेंगे, यूपीआई प्रोवाइडर डिजिटल प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लगा मतलब लग सकेगा एंड इसके अलावा आपको बताते चलें कोई भी छिपा हुआ शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बैंकों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि वो इसका बोझ ग्राहक पर ना पड़ने दें। इसके अलावा आपको बता दें छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी एंड क्यूआर से हर महीने 1,00,000 तक पाने वाले छोटे व्यापारी जो शून्य उनका मतलब वो शून्य एमडीआर का लाभ लेते रहेंगे। इसके अलावा लगातार 3 महीने 1,00,000 रुपए से ज्यादा लेन देन होने पर सामान्य P2M कैटेगरी में वो लोग आएंगे, ठीक है आपको बता दें। और एक और चीज आपको बताते चलूं कि कितने कारोबारियों पर पड़ेगा असर आपको बता देते हैं भैया। सरकार के मुताबिक करीब 4% व्यापारी लेन देन प्रभावित, मतलब जो सिर्फ 4% व्यापारियों को लेन देन से प्रभावित होंगे। इसके अलावा ज्यादातर लेन देन 2,000 से कम है तो कई लेन देन मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कई लेन देन P2M छूट के दायरे में भी आते हैं, ठीक है। तो मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, 2,000 तक की तो ट्रांजेक्शन ऑफकोर्स आपकी है ही यार फ्री, उस पर तो कोई चार्ज आपको देना ही नहीं है ना। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि भैया यूपीआई में क्या चेंज हो गया है क्या हुआ है। तो भैया देखो यूपीआई से पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ लोग को लग रहा है महंगा, 2,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए का चार्ज लगेगा, ये तो फैक्ट है भैया। एग्जैक्टली लेकिन बाकी जो है ये बताया जा रहा है कि लेकिन ग्राहकों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस यूपीआई के पेमेंट अगर आप 2,000 से प्लस की पेमेंट कर रहे हो तो 5 रुपए का चार्ज लगेगा, लेकिन इसमें उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ग्राहकों के लिए ये मुफ्त रहेगा। देखो यार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है, और ये तो आपको पता है पहले भी खबर आ रही थी कि आपको चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद तो सडन प्लान चेंज हुए थे राइट, अभी पिछले दिनों कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ और एक बड़ी साफ शब्दों में आपको बात बता देता हूँ। 15 अक्टूबर से 2,000 से ज़्यादा पर जो है P2M UPI ट्रांजेक्शन पर 4% MDR लागू होगा, यानी 3,000 रुपये पर 12 रुपये, 10,000 रुपये पर 40 रुपये और 40,000 रुपये पर 160 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। आपको आगे बता देता हूँ 75,000 रुपये या उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर अधिकतम MDR 300 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन रहेगा और ये चार्ज मर्चेंट से जुड़ा है एंड ग्राहकों से सीधा वसूला जाने वाला UPI शुल्क नहीं है, तो ये चीज आपको क्लियर कर दी है मैंने, ठीक है जी। चलो UPI से जुड़ी बातें हो गई हैं अब एंड मुरादाबाद में भी भैया एक बहुत ही अच्छी चीज है जो अभी आपको खुशी बताने वाली है। मुझे एक छोटा सा काम है, मैं फटाफट निपटा के आता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे आज, तो मैं इमीडिएटली ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ। तब तक खुशी यहाँ पर आपके साथ रहेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, ढेर सारे गाने उसके साथ सुनिए, अच्छी बातें यहाँ पर होंगी, सो आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक, फटाफट आता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके। तब तक खुशी के साथ एंजॉय कीजिए कुछ अच्छे गाने और अच्छी बातें एंड ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। बाकी मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है जी, फिलहाल गाना छोड़ के जा रहा हूँ, चिटिया कलाइयां, कहीं नहीं जा रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। रॉय फिल्म का गाना, मी ब्रदर्स की आवाज, कनिका कपूर देंगी साथ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था यूपीआई पे कुछ बताइए प्लीज, यूपीआई पे कुछ बताइए, तो भाई मैंने देखो बहुत क्लियर बता दिया। अमित जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अमित ने लिखा मुझे यूपीआई ट्रांजेक्शन गाइडलाइन पर थोड़ी सी आप रोशनी डाले ताकि मुझे भी एफएम के सभी श्रोताओं को और मेरे साथ साथ सभी को इन्फॉर्मेशन समझ आ सके। बिल्कुल भाई, मैंने बहुत शॉर्टली इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी। ये गाना क्या बात है, चलो जी एंजॉय करो, खुशी आ गई है, मैं भी भाई यहीं पर हूँ, बस मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ। ओके, आई विल बी राइट बैक, तब तक के लिए डोंट गो एनीवेयर, सुनो अच्छे गाने, सुनते रहो बिंदास मॉर्निंग।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और बिंदास मॉर्निंग शो में मेरे को भी मौका मिल गया है आज। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि आनंद जी बोल रहे थे, अब खुशी कहाँ से आ गई, लेकिन उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया था कि अब खुशी जी आने वाली हैं, क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम था इसलिए जाना पड़ा। और अभी वक्त हुआ है राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 9:34, हाँ जी 9:34। अब मुरादाबाद के लिए खास खबर। मुरादाबाद की पहचान सिर्फ पीतल के खूबसूरत हुनर तक ही नहीं सीमित नहीं है, अब हमारे शहर का स्वाद भी देश दुनिया तक अपनी खास पहचान बनाने जा रहा है। दरअसल 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी ट्रेंड शो आयोजित होने जा रहा है। इस ट्रेंड शो में मुरादाबाद की मशहूर पीतल आर्टवेयर, सजावटी सामान और पारंपरिक उत्पादकों के साथ साथ मुरादाबाद की खास पहचान मुरादाबादी दाल को भी खास जगह मिली है। यानी जो खरीदार देश विदेश से यूपी के हुनर और उत्पादकों को देखने पहुंचेंगे, उसी खरीदारी के साथ साथ मुरादाबाद की दाल के स्वाद का जायका लेने का मौका भी मिलेगा। और बात सिर्फ मुरादाबाद की ही नहीं है दोस्तों, ट्रेंड शो में आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, बनारस की लस्सी और तिरंगा बर्फी, बनारसी पान, लखनऊ की मलाई एंड मक्खन, मेरठ की रबड़ी और गोरखपुर का लिट्टी चोखा जैसे यूपी के अलग अलग शहरों के मशहूर स्वाद भी देखने चखने को मिलेंगे। और दोस्तों मुरादाबाद का हुनर भी और मुरादाबाद का स्वाद भी अब यूपी ट्रेंड शो में देश दुनिया तक पहुंचेगा। सच कहें तो ये हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। और अभी राइट हियर इधर यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। बाकी और क्या कुछ स्पेशल है मुरादाबाद में, क्या चल रहा है, सब आपको अपडेट मिलेगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपके लिए कुछ अमेजिंग ट्रैक, आप एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ। तब तक हाँ, कड़क क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे, उसके लिए मुझे पता है आप 20 सब्जेक्ट इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लौट कर आती हूँ मैं। कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, जो इस वक्त अभी राइट नाउ मुझे ऑन द वे कार में सुन रहे हैं, जो ऑफिस के लिए अभी तैयार हो रहे हैं और जो बस अपने ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं, छोटी सी बात खास आपके लिए है। आज घर से निकलते वक्त बस अपने चेहरे पर ना एक प्यारी सी स्माइल रखिए, क्योंकि आज आप वैसे भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं और जो मैम मुझे सुन रही हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऑफिस में आज काम कितना भी हो, कोशिश कीजिए कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास के लोगों तक पहुंचे। किसी को एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए, किसी को गुड मॉर्निंग कह दीजिए, हो सकता है आपकी छोटी सी पॉजिटिविटी किसी और का पूरा दिन बना दे। तो चलिए नई एनर्जी के साथ अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और मुरादाबाद की अपडेट भी आपको देनी है।

एवरीवन, मुरादाबाद में अब तीन जोड़ी ट्रेनें चलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और अगर आप भी आने वाले त्योहारों में ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो मुरादाबाद और आसपास की यात्रियों के लिए ये काम की खबर है। त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद होकर तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसमें योग नगरी ऋषिकेश कोलकाता, अमृतसर कोलकाता और अमृतसर बरौनी के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। सबसे पहले बात योग नगरी ऋषिकेश कोलकाता ट्रेन की। ये ट्रेन 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का प्रत्येक शुक्रवार चलेगी और मुरादाबाद में रात करीब 3:17 पर पहुंचेगी। वापसी में कोलकाता से ये ट्रेन 18 अक्टूबर से 22 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी और मुरादाबाद में शाम 6:40 पर पहुंचेगी। वहीं अमृतसर कोलकाता ट्रेन अमृतसर से 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार चलेगी और मुरादाबाद सुबह 6:10 पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार चलेगी और मुरादाबाद सुबह 11 पहुंचेगी। इसके अलावा अमृतसर बरौनी ट्रेन भी 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी और मुरादाबाद सुबह 5:25 पर पहुंचेगी। वापसी में बरौनी से ये ट्रेन 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार चलेगी और मुरादाबाद रात 2:40 पर पहुंचेगी। तो अगर त्योहारों में आपका भी ट्रेन से सफर का प्लान है तो इन स्पेशल ट्रेनों की तारीख और समय जरूर नोट कर लीजिएगा। मुरादाबाद से सफर करने वाली यात्रियों के लिए ये जानकारी काफी काम की हो सकती है एवरीवन। तो अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो बाहर सिटी में रहते हैं या फिर जो मुरादाबाद आना चाहते हैं बाहर सिटी से, तो उनके लिए ये काफी अच्छी बात है। और अभी नेक्स्ट यहाँ पर बैक टू बैक मैसेज भी आप सभी के आ रहे हैं, उनको भी शामिल करेंगे। टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी। और हाँ दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, मालूम ही कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई है ना, इंतजार करा दिया ना मैंने काफी, अब इंतजार नहीं करवाती हूँ। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ, आज की सुबह पूछ लेते हैं, चलो मालूम कर लेते हैं। दोस्तों आज का एक कड़क क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं सोच रही हूँ कि गाना प्ले कर देती हूँ पहले, उसके बाद आपको ना वो क्वेश्चन जो है बहुत इजी सा है और मुझे उम्मीद है कि आप ना उसको जल्दी से गेस कर पाओगे। मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आपके उधर से आंसर फटाफट से आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा बस एक गाने का इंतजार मैं आपको नहीं करवाती हूँ, गाना सुनवाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है। आज की सुबह थोड़ा तो थिरकना बनता है ना एवरीवन, हर दिन स्पेशल होता है लेकिन आज का दिन कुछ खास है। वो क्यों स्पेशल है मैं बताऊंगी, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिएगा। वैसे चलो आप पेशेंस बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, हम आपको एक शानदार सा गाना सुनवाते हैं, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। और वो घड़ी आ गई है जिसका सबको भी सब्री से इंतजार होता है। फाइनली एक कड़ी क्वेश्चन का, जी हाँ। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। मैं एक म्यूजिक यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आपको गेस करना है और बताना है कि जो म्यूजिक मैं प्ले कर रही हूँ कौन सी गाने का है। गाने का नाम भी बताना है और फिल्म का नाम भी बताना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जान लेते हैं हमारे जो लिसनर हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आज की सुबह आपसे एक छोटा सा हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइएगा जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ कौन से फिल्म का है।

Yes, everyone, आपने गेस कर लिया होगा, बताएगा कि जो म्यूजिक मैंने प्ले किया है कौन सी गाने का है और इस फिल्म का क्या नाम है। जी हाँ, ये जो गाना मैंने म्यूजिक प्ले किया है कौन सी फिल्म का है और ये ट्रैक कौन सा है, बताएगा कौन सी गाने का म्यूजिक है। ये गाना बहुत ही प्यारा है।

अपने नाम के साथ एंड अपना राइट आंसर पहुंचाइएगा आज की सुबह। बताइए कि ये जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है कौन से ट्रैक का म्यूजिक है। बहुत ही प्यारी शानदार फिल्म भी है और गाना भी बहुत ही खूबसूरत है। आपने गेस कर लिया होगा ना, तो जल्दी से बताइएगा अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक शानदार सा ट्रैक आज की मॉर्निंग, जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ज्यादा अमेजिंग। चाहे आप सफर में हो या फिर आप घर में हो या फिर आप किचन में खाना बना रही हूँ, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही होंगी एंड क्योंकि कुछ फैमिलीज में ना लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये गाना आज की मॉर्निंग आप सभी के लिए। एंड आप अपना जवाब हमें पहुंचा दीजिएगा। वंस अगेन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ वो जो मैंने एक अमेजिंग म्यूजिक प्ले किया है आज की सुबह। आप मुझे बताइए कि जो म्यूजिक मैं प्ले कर रही हूँ कौन सी गाने का म्यूजिक है।

तो अभी मैंने इस म्यूजिक को 3 बार रिपीट कर दिया है, अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा ना एवरीवन। तो अपने इनाम के साथ अपना सही जवाब पहुंचाएगा और देखते हैं आज के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार मॉर्निंग शो के, विनाश मॉर्निंग शो के। अभी फिलहाल सुनिएगा एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे आपसे बहुत सारी बातें।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था एक सिंपल सा करेक्ट क्वेश्चन. एंड करेक्ट क्वेश्चन में आज मैंने एक प्यारा सा म्यूजिक प्ले किया था और गाना बहुत ही बेहतरीन है. तो चलिए एक चांस और आपको हम देते हैं, ठीक है. आपको बताना है कि जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, कौन सी फिल्म का ये म्यूजिक है, मतलब कौन से गाने का ये म्यूजिक है. और जिस गाने को हमने मतलब म्यूजिक को लिया है, ये ट्रैक है. और इस फिल्म का आपको भी नाम बताना है, फिल्म का नाम भी बताना है और ये किस गाने का म्यूजिक है ये भी आपको बताना है, ठीक है. एक बार फिर से सुन लीजिएगा.

मॉर्निंग्स एवरीवन। ओहो, आप सोच तो रहे हैं कि ये तो मैंने सुना है पर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा गाना है ये, है ना? एक और चांस मैंने आपको दिया है, तो फटाफट से अपना आंसर, सही आंसर पहुंचाएगा अपने नाम के साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी से आप अपना सही जवाब पहुंचाएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और देखते हैं आज के बिंदास मॉर्निंग के लकी सुपरस्टार कौन बनते हैं, वो हम अभी लौट कर आते हैं, तो ऑन ईयर बताते हैं आपको।

हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग शो आरजी खुशी के साथ। और आज के हमारे बिंदास मॉर्निंग शो के बनते हैं कौन लगी सुपरस्टार, वो हम आपको बता देते हैं। एंड सबसे पहले हमारे पास सही जवाब कहां से आया है और किसने पहुंचाया है ये हम आपको बताते हैं। और आज हमने बहुत सिंपल सा आपसे करे क्वेश्चन में एक म्यूजिक पूछा था। एंड गाना भी बहुत प्यारा है, फिल्म भी बहुत ही प्यारी है, म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा था। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। कुछ तो बोल रहे हैं मैम हमें ना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। बिल्कुल सादगी के साथ और पूरी सच्चाई के साथ उन्होंने सही जवाब मतलब अपना बताया है कि मैम हमें नहीं आता है। बट कोई बात नहीं, हमारे पास आज सही जवाब सबसे पहले हमें पहुँच रहा है यहाँ पर प्रिंस ने मुरादाबाद से। और जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था उस ट्रैक का नाम है जन्म जन्म जी हाँ, फ्रॉम द मूवी दिलवाले से ये म्यूजिक हमने प्ले किया था। एंड गाना था जन्म जन्म, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। तो आज प्रिंस के लिए जोरदार तालियां। आप बनते हैं आज के हाँ जी हमारे शो के लकी सुपरस्टार विनास मॉर्निंग के, तो आपके लिए जोरदार क्लैपिंग।

हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आज आप बनते हैं विंदास मॉर्निंग शो के लकी सुपरस्टार। आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब। नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेज आए हैं आज की सुबह। हमारे पास यहाँ पर मैसेज पहुँचाते हैं, गुड मॉर्निंग मोहन स्वरूप जी एंड बिलासपुर रामपुर से आनंद जी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अभी फिलहाल आनंद जी तो नहीं है लेकिन खुशी यहाँ पर है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला रामपुर तहसील स्वार से ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह। रिहान जी ने मैसेज पहुँचाया है, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, गुड मॉर्निंग आनंद जी। अभी आनंद जी नहीं, खुशी यहाँ पर है सर, बट कोई बात नहीं। दुर्गेश जी ने कहा कि मैम हमें इस सवाल का आंसर नहीं मालूम है, बट कोई बात नहीं सर, आपने इतनी सादगी के साथ आपने बताया कि आपको नहीं आता है, पूरी ईमानदारी के साथ, तो उसके लिए हम आपको देते हैं 1000 का नोट। हाँ मालूम है, चलेगा नहीं लेकिन पास रख लीजिएगा अपने। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप, आज बिंदास मॉर्निंग शो में आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। सो आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है, बट कोई बात नहीं, आपने ट्राई बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच एवरीबडी। आज की सुबह आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, और अब हमने जो म्यूजिक प्ले किया था ना वही ट्रैक हम प्ले करते हैं आप सभी के लिए आज की सुबह। और अभी नेक्स्ट मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी का फेवरेट शो, बने रहिए खुशी के साथ आप जुड़े रहिए एंड मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, नई जानकारियों के साथ, नई बातों के साथ खुशी लौट कर आती है।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन,
1: हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
2: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
3: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
2: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
3: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
2: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी और लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो। मुझे पता है आपको भी सब्री से इंतजार रहता है शो का। जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं आपके खूबसूरत संदेश यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। श्रोताओं वक्त हुआ है 10:22। ट्यूसडे मॉर्निंग है और खूबसूरत सा दिन है आज। और कहते हैं ना कि जिसके मन में विश्वास हो उसके रास्ते में ना मुश्किलें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती हैं। तो आज की सुबह अपने मन से हर चिंता को थोड़ा दूर रखिए और खुद से बस इतना कहिए, आज का दिन अच्छा होगा और मैं बहुत खुश हूँ। और हर एक पल को मैं दिल से एंजॉय करूंगी एंड करूंगा। और आज की इस खूबसूरत सुबह को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी के आशीर्वाद के साथ और भी खास बनाते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बलराम जी आपके जीवन में शक्ति सुख और शांति और समृद्धि लेकर आए। तो चेहरे पर रखिए प्यारी सी स्माइल, दिल में रखिए पॉजिटिविटी और इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं खूबसूरत गाने के साथ। तो श्रोताओं आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने खूबसूरत संदेश पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको अपना मैसेज पहुंचाना है। आज कोई थॉट आप पहुंचाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि हाँ तमाम श्रोताओं की हेल्प कर सकता है, तो बिल्कुल कोई मोटिवेशन कोड एंड कोई बात, कोई अपडेट जो आपको लगती है कि हमें शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मोहम्मद परवाना जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं मधुबनी बिहार से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सालिम अंसारी जी का और ये भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, क्या हाल है आपके, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह मोहम्मद ईशान जी लुधियाना पंजाब से। अगला मैसेज हमारे पास कश्मीर से यहाँ पर आया है महराजुद्दीन जी का और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अरे वाह सर, बताइएगा कश्मीर का मौसम कैसा है, वहाँ खूबसूरत वादियों का वेदर बताइएगा हमें। और जब तक आप अपने संदेश यहाँ पर पहुँचाते हैं तब तक हम आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं और बताएंगे अपने मुरादाबाद शहर में और क्या कुछ स्पेशल हो रहा है एंड पूरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ना। आप सब तक पहुँचाएंगे सारी अपडेट, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और हमने अभी ये प्यारा सा पंजाबी ट्रैक सुना। एंड आपके यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं वक्त आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 10:34। और आपकी मैसेज उन्होंने तो वो कमाल ही कर दिया है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज पहुंचाती है दीपशिका जी, और ये न्यू मुरादाबाद से हमें सुन रही हैं। कहती हैं कि खुशी जी, हम एवरी डे एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे शोज, सभी प्रेजेंटर्स बहुत मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली राइट मैम। और ये कहती हैं कि आज की सुबह हमें भी ये अवसर मिला कि चलिए आज हम भी मैम को मैसेज कर देते हैं। एवरीडे तो बिजी रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा फ्री थे, घर पर थे, तो इसलिए मैंने मैसेज किया। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। आपको भी आदाब, आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, सना एंड नाजिया तुर्क मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह। और नाजिया एंड सना आप दोनों सिस्टर हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी, और साथ में इनके दोस्त भी हैं शहीद शारिक अली जी, महाराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका शो हमें अच्छा लगता है, बेहद पसंद आता है, और एक गाना सुनना चाहते हैं आज की सुबह। बिल्कुल सुनवाएंगे सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, और साथ में ऋतिक जी हैं, आदित्य कसाना जी हैं, दादावली से ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। माया देवी जी भी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी मैं लौट कर वापस आने वाली हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, और बताएंगे आपको कि आज का डे क्यों स्पेशल है, वो सब आकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले सुनिएगा एक खूबसूरत सा गाना। कभी कभी ऐसा होता है ना एवरीवन, जैसे हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं और अचानक से हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं, तो बताइए मुझे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले जहन में किसका नाम आता है, कौन हो सकता है वो पर्सन जो आपको सुबह सुबह याद करते हैं, बताओ बताओ। अगर घर से दूर रहते हैं आप तो फैमिली ही याद करती है, और सबसे ज्यादा याद करते हैं मम्मा पापा। वैसे आप मुझे बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप सोकर सुबह सुबह उठे हो और आपको हिचकी आई हो तुरंत, तो आपने कहा ओह आज तो मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने मुझे याद किया, ये मेरी फैमिली ने याद किया है। ऐसा होता है ना, जहन में आता है सबसे पहले। और ये गाना मुझे सुनकर वही थॉट मन में आया, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से पूछ लेना चाहिए। आज की सुबह सुनी गई अमेजिंग ट्रैक लौट कर आती हूँ मैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, मन तन तो डोलने लगता है, कभी मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है तो अचानक से धूप निकल जाती है ना। और आज बात कहते हैं अपने शहर मुरादाबाद की मौसम की। तो आज मौसम सुबह का मिजाज थोड़ा मतलब बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरादाबाद में बादल छाए रहने और एक दो बारिश या फिर मतलब गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावनाएं भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री रहने का अनुमान है। देखिए दोस्तों, मौसम का जो सुबह का मौसम आपको सुहाना लग सकता है, लेकिन अगर बाहर निकलते समय मौसम में अचानक बदलाव को ध्यान में रखिए। खासकर अगर आप ऑफिस, स्कूल या किसी ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो मौसम पर एक नज़र ज़रूर रखिएगा। और हाँ, अपना छाता भी अपने पास रखिएगा। और पानी की बॉटल भी अपने साथ रखें, पानी पीते रहें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आपकी खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवलीस जी का। आज की सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये आज की सुबह हमें कहते हैं कि मैम एक गाना सुनवा दीजिएगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, प्रिय मित्र खुशी जी को नमस्कार। आपका मॉर्निंग शो हमें बहुत अच्छा लगता है, काफी दिलचस्प है, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, शुक्रिया आपका सर। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गी सैनी जी का। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग खुशी जी। आज हम थोड़ा बिजी हैं पर रेडियो सुन रहे हैं। अरे वाह, यही तो मोहब्बत है आपकी रेडियो के प्रति, जो हमें भी खींच कर ले आती है। दिल से दिल का रिश्ता है और रेडियो से नाता ही ऐसा हो जाता है। हम चाहे कितना भी बिजी हो लेकिन इसको सुनना बिल्कुल नहीं मिस करते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं मैम, बारिश हो रही है बहुत तेज, आज तो मेरे भी कपड़े भीग गए हैं। और मैम कपड़े तो अच्छा जी, ये कहती हैं कि आज तो मतलब मौसम ने कोई अपडेट भी नहीं दी और बारिश आ गई। कहती है ना कोई खबर ना कोई पैगाम आया है, अचानक बारिश ने मौसम को महका दिया है। खुशी मैम का नाम लिया तो दिल भी मुस्कुराया है, इन बारिश की बूंदों ने खुशियों का संदेश सुनाया है। अरे वाह, क्या बात है नीलम जी। ये मैसेज मैम ने पहुंचाया था हमें, आई रिमेम्बर 10:34 10:34 पर इनका मैसेज आया। और इन्होंने जो तस्वीर भेजी है ना बारिश की, झमाझम बारिश हो रही थी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, ओहो अफरूज जी आपको खांसी जुकाम हो गए हैं, हाँ अपना ख्याल रखो अच्छे से, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अभी मौसम भी बदल रहा है ना, कभी गर्मी हो जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। और ये जो मानसून है ना, इसमें इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसकी बात लौट कर आते हैं। एंड एक अमेजिंग क्वेश्चन भी हम आपसे पूछने वाले हैं आज की सुबह, तो तैयार हो जाइएगा आप सब।

0: बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सुबह में एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिनके शब्दों ने देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने में अपनी खास भूमिका निभाई। आज 16 सितंबर को हम याद करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत की रचयिता श्यामलाल गुप्त परिषद जी को। उनका लिखा ये देशभक्ति गीत सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, इसमें तिरंगे के प्रति सम्मान, देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की भावना की गूंज सुनाई देती है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और

आज जब हम अपने तिरंगे को देखते हैं तो एक पल के लिए उन अनगिनत लोगों को जरूर याद कीजिए जिन्होंने देश की आजादी और सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। देशभक्ति सिर्फ एक दिन की भावना नहीं, ये वो एहसास है जो हमारे दिल में हर दिन जिंदा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपके जो संदेश यहाँ पर आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और वक्त मैं आपको बताती हूँ, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:06। और हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, यहाँ पर मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी एंड लक्ष्मी कश्यप जी। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, और साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं। हाउ आर यू खुशी जी? आई एम गुड सर, आप बताइएगा कैसे हालचाल है। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, रेडियो को भी सुन रहे हैं। काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट का डोज जब मिल जाते हैं ना, मनोरंजन होता रहता है साथ में, तो काम कब कंप्लीट हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी मुरादाबाद लाइन पार से। और भी हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश आए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, आप भी कुछ पहुँचाना चाहते हैं हम तक तो बिना किसी देरी के आप पहुँचा दीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट इस शो को और ज्यादा खूबसूरत बना देती है। जब आप सब मुस्कुराते हैं ना हौले हौले से, तो मुझे लगता है कि चलो खुशी ने कुछ तो अच्छा किया है। और सुनिएगा अभी एक बेहतरीन ट्रैक, इस अमेजिंग गाने को सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। एंड और भी अपडेट है जो आप तक हमें पहुंचानी है, तो बस एक क्वेश्चन भी है जो आप तक मुझे डिलीवर करना है और आपको उसका आंसर भी पहुंचाना है ना। मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, बस इस गाने के बाद मैं लौट कर आती हूँ।

समय हम आपको बता दें 11:18 हो गए हैं और आपके बैक टू बैक जो मैसेज आ रहे हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको देखिए, गणपति जी का इतना ब्यूटीफुल उत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी का पर्व यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड हमारे पूरे भारतवर्ष में भी मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। और बात करते हैं अगर सेलिब्रिटीज की, जी हाँ, एक्टर्स की अगर बात करते हैं, एक्टर की बात करते हैं, तो सलमान खान जी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। सलमान खान जी ने गणपति बप्पा की आरती और बहुत ही सोशल मीडिया पर उनकी जो तस्वीरें हैं वो शेयर की जा रही हैं और बहुत वायरल भी हो रही हैं। बॉलीवुड से खूबसूरत और आस्था से जुड़ी तस्वीर सामने आ रही है। अभिनेता सुहेल खान के घर गणपति बप्पा की विदाई धूमधाम और श्रद्धा के साथ की गई। इस मौके पर अभिनेता सलमान खान जी, उनके ब्रदर ने भी गणपति बप्पा जी की आरती की और परिवार के साथ इस खास पल में शामिल हुए। घर का माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया है। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, अगले बरस तो जल्दी आ एंड बहुत ही खूबसूरत ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहीं पर बात करेंगे शिल्पा शेट्टी जी की। शिल्पा शेट्टी जी और राज कुंद्रा जी ने भी गणपति बप्पा की विदाई की है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी ने भी पूरे उत्साह और भक्ति के साथ गणपति बप्पा जी को विदाई दी है। ढोल नगाड़ों की धुन पर दोनों भक्ति में रंगे नजर आए और पूरी विधि विधान के साथ गणपति जी का विसर्जन किया। इस दौरान उनके चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। गणपति बप्पा से बस यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो हम भी जयकारा लगाते हैं एक बार, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। और आपके यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए हैं, उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। जिला रामपुर से मैसेज हमें पहुंचाते हैं, जिला रामपुर ग्राम खीटाना से मोहम्मद कामिल जी, साथ में लाइबर जी भी हैं। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं, गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में, खुशी की लहर मिले हर कदम पर, आपको देता है ये दिल दुआ बार बार आपको। अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं आपकी, सब शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, आज मौसम के अनुसार एक पुराने गाने सुनने की इच्छा हमारी हो रही है, तो मैम एक सॉन्ग हमें सुनवा दीजिएगा। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं खेमपाल सैनी जी मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। खुशी मैम आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका शो सुन रहे हैं पहली। अच्छा, पहले की तरह आज भी आपका शो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज आपने जो जो ट्रैक प्ले किए वो बहुत ही अच्छे थे। सुबह उनको सुनकर हमारी जो मॉर्निंग है वो खुशनुमा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ जी का मैसेज हमारे पास आया है इटली से, एवरी मॉर्निंग की तरह हमारे साथ जुड़ते हैं सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे आपसे भी ढेर सारी बातें।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, बलखा के लहरा के तो एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आया है और वो क्वेश्चन मैं आप तक डिलीवर करना चाहती हूँ। आज की सुबह हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो सवाल हम पूछने वाले हैं ना, ये सवाल बहुत सिंपल है और ये सवाल है बॉलीवुड लवर्स के लिए। जी हाँ, दोस्तों आप मुझे बताइए, फिल्म शोले में जय का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था? फ्रॉम द मूवी शोले में जय का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था? ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, तीन ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। ऑप्शन ए धर्मेंद्र पाजी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी शत्रुघ्न सिन्हा जी। बताइएगा एवरीवन, फ्रॉम द मूवी शोले में जय का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था? सही जवाब अगर आपको मालूम है तो आप अपना सही जवाब हमें पहुंचाइए अपने नाम के साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये क्वेश्चन हमने पूछा है जो बॉलीवुड लवर्स हैं, जो बॉलीवुड की सारी अपडेट रखते हैं। देखते हैं आज कौन कौन है बॉलीवुड लवर्स जो बताएंगे सही जवाब सबसे पहले। और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत संदेश भी आए हैं तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ बिना किसी देरी के। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दीप्ति शर्मा जी का, दीप्ति सूर्यवंशी जी का, एंड इन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज आज की सुबह हमें पहुँचाया है। गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम, आपको भी। और ये कहती हैं कि आवाज़ में मिठास बातों में नूर, आवाज़ में मिठास बातों में नूर, खुशी की आवाज़ सुनना ही सुबह का शुरूर, और यूं ही अपनी आवाज़ से सुबह को सजाती रहो, हर दिल में अपनी एक खूबसूरत जगह बनाती रहो। दीप्ति मैम, हमने आपके दिल में जगह बनाई है ना? हाँ जी, बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम, इतना लवली मैसेज पहुंचाने के लिए आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है गुलाम जिलानी पाशा जी का, कुंदरकी से, एंड गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए, कुछ खूबसूरत संदेश यहाँ पर तो हमने शामिल किए हैं लेकिन कुछ खूबसूरत गीत भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं और देखते हैं आज हमारे शो के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार। लौट कर आएंगे तभी बताएंगे ना, आप इंतजार कीजिए। और ये गाना बहुत ही प्यारा सा,

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का

0: ही समाधान, पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, आज मैंने आपसे पूछा था बॉलीवुड क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा आज का सवाल बॉलीवुड लवर्स के लिए था। बताइएगा एवरीवन, मैंने आपसे पूछा था कि फिल्म शोले में जय का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। ऑप्शन ए था धर्मेंद्र पाजी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी शत्रुघ्न सिन्हा जी। और सही जवाब देने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एंड उनसे बात करते हैं और जानते हैं सही जवाब क्या है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: हेलो जी, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताइएगा।
1: जी मेरा नाम आसिफ है।
0: हाँ जी आसिफ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जी इटली से।
0: इटली से बात कर रहे हैं, बताइएगा आज के हमने क्वेश्चन पूछा है उसका सही जवाब क्या है सर?
1: उसका जवाब है अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा, अमिताभ बच्चन जी। ओके, राइट आंसर आपने दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। बताइएगा कैसा लगता है आपको एफ एम मुरादाबाद के शूट सर, शो के बारे में बताइएगा।
1: बहुत अच्छा लगता है। मैं तकरीबन जितने भी शो है ना सुबह से शाम तक सारे तकरीबन जो है ना सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे शो हैं। तो सभी तकरीबन आप खुशी जी, रीना जी हैं, तो सभी जो भी शो है ना सब मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच। आपने शोले मूवी तो कई बार देखी होगी है ना?
1: बहुत दफा जी, बहुत दफा।
0: अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर कौन है सर, बताइएगा।
1: जो है ना शाहरुख हैं, अमिताभ भी हैं।
0: अच्छा,
1: तो ज्यादा जो मैंने वो देखा ना वो अमिताभ भी हैं मेरे एक्टर जो है ना।
0: ओके, आपकी फेवरेट, आपकी पसंदीदा, ओके, आपकी पसंदीदा अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, राइट
1: जी।
0: तो सर आज आप हमारे शो के बनते हैं लकी सुपरस्टार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दिया सही जवाब और आपको बहुत बहुत मुबारक है वंस अगेन।
1: वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल पे लिया।
0: हाँ जी, हमने कहा सर एवरी डे हमें मैसेज करते हैं, आज क्यों ना ऑन ईयर बात की जाए सर से।
1: बहुत शुक्रिया जी,
0: मोस्ट वेलकम, टेक केयर सर, बाय बाय। तो चलिए एवरीवन, ये तो आसिफ जी इटली से हमारे साथ कनेक्ट हुए राइट नाउ और ये इन्होंने दिया था सही जवाब, तो इनके लिए हो जाए एक बार जोरदार तालियां।

बिल्कुल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और बाकी श्रोताओं ने भी पार्टिसिपेट किया है एंड उनका भी हम यहाँ पर नाम मेंशन करते हैं। आपने भी बहुत ही अच्छे से इस शो में पार्टिसिपेट किया है एंड सही जवाब पहुँचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर कोमल शर्मा जी का आया था और ये कहती है मैम राइट आंसर है अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाया है खेमपाल सैनी जी ने और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाती हैं साबरीन जी मुलक से सही जवाब के साथ। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाती हैं अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से राधे राधे अमिताभ बच्चन जी हैं। क्या बात है मैम, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकी सागर जी का हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सुबह आपने पार्टिसिपेट किया और अभी लौट कर आऊंगी एक प्यारे से गाने के उस पार एंड करेंगे आपको बताएंगे अभी एक हेल्थ अपडेट जो कि बहुत जरूरी है इस मानसून में, कैसे अपना ख्याल रखें एंड डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। लौट कर आती हूँ बस एक प्यारे से गाने के उस पार, आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइए।

वैसे दोस्तों इशारा तो हमारी तरफ हमारी स्टूडियो की घड़ी भी कर रही है और वक्त मैं आपको बताती हूँ 11:56 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में 11:56 राइट नाउ। और दोस्तों बात करते हैं अभी हेल्थ के बारे में। दोस्तों मानसून का मौसम अपने साथ ठंडक और हरियाली तो लाता ही है, लेकिन इस सीजन में हमें अपनी डाइजेशन और हेल्थ का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। इस मौसम में कोशिश करें कि खाना लाइट, फ्रेश और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला हो। मूंग दाल की खिचड़ी, दाल, अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां और हल्का सूप अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, ऑयली और स्ट्रीट फूड को ना थोड़ा अवॉइड कीजिए। जी हाँ, साथ ही साफ और सेफ पानी पीजिए। पानी पीना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पेरेंट्स मुझे इस वक्त जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मानसून में बच्चों की केयर थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर कीजिएगा। बच्चों को फ्रेश और होममेड फूड दें, साफ पानी पिलाएं और बाहर का ऑयली जंक फूड थोड़ा अवॉइड कराइए। बारिश में गीले कपड़ों में ज्यादा देर ना रखने दें और हाइजीन का खास ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों की हेल्थ इज प्योरिटी। छोटी छोटी केयर बड़ी खुशियां लेकर आती है, इसीलिए आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बाकी सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब इतना प्यार करते हैं FM मुरादाबाद से, इतने प्यारे प्यारे अपने फीडबैक, अपने मैसेज हमें पहुंचाते हैं, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे सी यू सून 3 से 5 नई बातों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और खुशी कहती है कि अपना विशेष ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। और हाँ, एक बात जो वो कहती है खुशी बार बार, क्या कहती है कि हाँ, स्माइल करना ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मुस्कुराते हुए आप सब बहुत प्यारे लगते हैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
0: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ के सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्कार।
1: मैं बहुत अच्छा हूं आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद। और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार
0: जी। और आज का विषय बहुत ही स्पेशल है। आज की वार्ता का जो विषय है वो है घुलनशील पोषण उत्पाद एवं उनके लाभ। आज इस पर हम बात करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे स्टेशन में।
1: आनंद जी स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा और मेरी जो कंपनी चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार जी। और स्वागत इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
1: पीएम प्रणाम योजना है,
0: पीएम प्रणाम योजना,
1: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
0: जी,
1: उसमें जो पोषण का तरीका है उसके उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो जो जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
0: जी जी,
1: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक। तो उसका ये उद्देश्य है
0: जी।
1: तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी हो। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
0: जी,
1: कंपोस्ट खाद है
0: जी,
1: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाए, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं। जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है, लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं, 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में। अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए जो कि एक तरह से जो हमारे खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगें अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
0: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
1: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
0: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
0: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से
3: और इसी बात के साथ बिना किसी देरी घुलनशील पोषण क्या है और इसके लाभ क्या है इसके बारे में बताइए।
1: जी हाँ, घुलनशील पोषण मतलब ऐसे मान के चलिए कि जो भी रासायनिक उर्वरक किया और उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं वो स्थूल रूप में होते हैं, दाने के रूप में होते हैं या चूरे के रूप में होते हैं और उनको हम अपने खेत में फैलाते बिखेरते मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन पोषण की अन्य तकनीकियां भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि हम उनको घोलें और पानी में अच्छे से घोल के फिर हम उसका छिड़काव। उस समय ये क्यों आवश्यक है या इसकी क्यों आवश्यकता होती है, हमें इसके क्या लाभ हैं? इसके लाभ ये होते हैं कि जो हमारी खड़ी फसल है उसमें फसल हमारी अच्छी बड़ी हो गई, अच्छा साइज ले गई है, तो अगर उसमें हम कोई उर्वरक इस्तेमाल करते हैं जो हमें छींट के डालना है तो उसके आड़े क्या आता है, फसल के पत्ते आ जाते हैं और वो मिट्टी पर सही ढंग से नहीं आ पाती और जो है जो हमारी फसल है उसके पत्ते के ऊपर गिरती है तो वो पत्तों को भी खराब करती है।
3: हाँ जी,
1: नंबर एक ये है
3: जी।
1: दूसरा ये है कि जब भी इस तरह के हम उर्वरक प्रयोग करते हैं जो कि स्थूल रूप में होते हैं तो उनका बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी हो जाता है, हवा में उड़ के है या जो पानी के साथ नीचे जो है आपका निकल जाता है, बह के चला जाता है। तो इन सारी जो स्थितियों से जो हम एक तरह से इस तरह का बचाव करें कि जो भी पोषण हम दें वो पौधे को सीधा मिले और पूरी पूरी मात्रा में मिल जाए। तो जो भी ये हमारे जो इस तरह के उर्वरक हैं जो कि पानी में घोल के इनका स्प्रे किया जाता है, उनके अंदर ये विशेषता होती है कि वो पूरी पूरी मात्रा में पौधे को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो पौधे की पत्तियां हैं उनके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में स्टोमेटा बोल देते हैं, वो इसको सोखती हैं और अपना जो उनका तंत्र है जाइलम फ्लोएम जो भी है उसके द्वारा जो पौधे के हर अंग में इसको भेजती है, हर एक सेल में हर एक कोशिका में इसको भेजती है, जिससे उसका अच्छा विकास होता है, अच्छे से पोषण मिलता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप पौधे की मांग के अनुसार ही इस तरह के पोषक तत्व या इस तरह के उत्पाद चुन सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमें इसमें 5 तरह के सूक्ष्म तत्व देने हैं और एक मुख्य तत्व देना है, तो उस तरह का उत्पाद भी आज की तारीख में उपलब्ध है बाजार में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई खास पोषक तत्व है उसका भी हो सकता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि एक हमारे पास एक तकनीक आई है, ड्रोन तकनीक। आमतौर पर शादियों में भी हम देखते हैं फोटोग्राफी के लिए होता है, लेकिन इसका खेती में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ड्रोन है जिनके अंदर हम घोल की टंकी लगाते हैं, फिर उसमें GPS लगा होता है, फिर वो उस हिसाब से मार्क करके खेत में समान रूप से फसल के ऊपर छिड़काव करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है और बिल्कुल सही मात्रा में पोषण हमारे पौधे को मिल जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप धीरे धीरे प्रयास ये करें कि ड्रोन तकनीकी का आप इस्तेमाल करें और ये जो इस तरह के जो मतलब अब मैं ये कहूँ कि आपकी जो ये है सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल नहीं, इससे कीटनाशक का भी इस्तेमाल जो स्प्रे कर सकते हैं और जो खरपतवार नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, फफूंद नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पोषण में इसका खास महत्व है, क्योंकि जब आप खेत में घुस नहीं सकते हैं तो ये ऊपर से ही आप एक जगह बैठे हैं रिमोट से कंट्रोल करके ये आराम से काम कर। आजकल ऐसा भी है कि सपोज अगर आपके पास नहीं है तो बहुत से लोग रिमोट रखते हैं, भारत सरकार ने अपनी योजना लाई है, उनसे आप उनको आप अनुरोध करेंगे, वो आपके आएंगे, आपसे वो एक शुल्क लेंगे और आपके यहाँ पर वो ड्रोन से स्प्रे करके जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आगे के समय में ये सब तकनीकियां हमारे और जो काम आएंगी और हमें सहायता करेंगी अच्छी खेती करने के लिए। तो ये जो ऐसे उत्पाद हैं, जो ऐसे पोषण उत्पाद हैं जो कि जो पानी में घोल के स्प्रे किए जाते हैं, इनके लाभ तो मैंने आपको बताई, इनके उपयोग की जो तकनीकियां हैं उनमें भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां मैं समझता हूँ किसान इनका संज्ञान लेंगे और इनको अपनी खेती में बढ़ावा देते रहेंगे।
3: क्या सर प्रश्न है, उत्तम परिणाम क्या है?
1: उत्तम परिणाम, हाँ बिल्कुल। अब मैं अपनी कंपनी का एक उत्पाद है जिसका नाम है उत्तम प्रणाम। यह एक तरह से फास्फोरस युक्त उत्पाद है और इसके अंदर बहुत सारे और भी सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं।
3: अच्छा,
1: अब ये जो उत्पाद है
3: जी,
1: यह हमारी फसल को एक सही समय पर जो मतलब पोषण होना चाहिए वह देता है। इसके दो समय पर इस्तेमाल हो जाते हैं, पहला होता है बीज उपचार, लेकिन अब बीज उपचार क्या है कि फसल हमारी खड़ी है, खड़ी फसल में अगर हम इसको देना चाह रहे हैं तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और ऐसी अवस्था पे स्प्रे करें जबकि हमें लगे कि फसल को एक पोषण की जरूरत है, तो उस समय पर ये उत्तम परिणाम है। काफी लाभदायक उत्पाद है, 250 ml की पैकिंग में भी आता है, तो ये 250 ml एक एकड़ के लिए है, तो उसी हिसाब से इसकी पैकिंग जो तैयार की गई है। आप इसका प्रयोग करके अनेक लाभ अपनी फसल में ले सकते हैं, उसका विकास अच्छा होगा और उसका तने वगैरह का विकास भी बड़े अच्छे से होगा।
3: अरे वाह जी, बहुत बढ़िया सर। इसी बीच मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि उत्तम प्रणाम का उपयोग कैसे और करें।
1: हाँ, उत्तम प्रणाम का कैसे और कब उपयोग करें?
3: जी,
1: तो कैसे करें उसमें आप देखिए, इसका स्प्रे करना है जो फसल के ऊपर, सामान्यतः सभी फसलों के लिए 250 ml 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कीजिए। अगर आपकी फसल, आपको लग रहा है कि 200 ml पर वो आपके जो 200 लीटर पानी ज्यादा है, तो 150 लीटर पानी ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा पानी की ज्यादा, तो 250 लीटर भी आप पानी ले सकते हैं, और जो फसल पे छिड़काव आपको करना है।
3: जी जी,
1: आपने पूछा कि जो इसकी मतलब जो कैसे करें स्प्रे, इसके बारे में पूछा है
3: जी,
1: उपयोग कैसे करें और जो मतलब कब करें, तो अलग अलग फसल की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे धान की जो फसल है उसमें जब शाखाएं जो निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधा सघन होना शुरू हो जाता है, उस समय पर इसका आप करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है फिर भी आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो जब इसकी जो है फूल बनने की अवस्था है, या जब आपको लग रहा है कि फूल बना, अनाज भी बनना शुरू हो गया, उस समय पर भी आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। दो स्प्रे रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको लगता है दो नहीं हो पाए तो एक स्प्रे करके भी इन बीच में कोई भी समय चुन के आप धान में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी फसल फिर आती है कपास है, इसका जो शाखा विकास है, फूल बनने की अवस्था है, इनमें से कोई भी अवस्था आप जो चुन लें, उस अवस्था पर आप इसका स्प्रे करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फसल का जो तना है, फूल का जो विकास है, और जो भी इसका पूरा जो तंत्र है वो सशक्त हो जाता है, और फिर वो ज्यादा मात्रा में फल और उसका फूल का वो जो एक तरह से निर्माण करेगा
3: जी।
1: और जिससे कि हमें उपज अच्छी रहेगी। उसके बाद जैसे उड़द मूंग यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए भी बड़ा जो है सही समय ये, जब फूल आने वाली अवस्था हो और फूल से फली बनने के बीच की भी अवस्था है, उसमें भी आप इसका स्प्रे करें और लाभ ले सकते हैं
3: जी।
1: मूंगफली के बारे में अगर हम आ जाए, तो मूंगफली में जब फलियां, आपको लग रहा है कि फलियां अब तैयार होनी शुरू हो गई हैं, नीचे कोई पौधा उखाड़ के देख सकते हैं, उस समय पे आप इसका स्प्रे करिए, तो उससे फलियों का विकास अच्छा होगा, ज्यादा मात्रा में फलियां होंगी। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना
3: जी जी,
1: कि कुछ फलियां छोटी सी रह गई या उसमें और लग सकती थी लेकिन नहीं लगी, तो वो कमी इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मक्का की फसल अगर हम ले लें, तो उसमें जब मक्का आप अगर घुसे और आपके जो करीब करीब 4 फीट के आसपास की जब मक्का हो जाए, तो उसमें आप उस समय एक स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप फूल आने की अवस्था, जब उसकी ऊपर वाली मंजरी निकलती है, उस समय पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली अवस्था चूक गए, तो इसके बीच की कोई भी अवस्था आप चुन लें, उस समय पे आपको उत्तम प्रणाम का इस्तेमाल करना है। जी आनंद जी।
3: जी एके सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ हमारे किसान भाइयों की ओर से। आप बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार साझा कर रहे हैं। एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है, उत्तम प्रणाम का उपयोग कौन कौन सी फसलों में हो सकता है?
1: हाँ, लगभग सभी फसलों

0: कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें नहीं हो सकता। खास तौर से अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तम प्रणाम के जो जहां पर भी किसानों ने प्रयोग किए हैं, उन्होंने हर फसल में इसके बड़े शानदार परिणाम पाए हैं। सब्जी वाली फसलें हैं जहां पर लोग सब्जियां उगाते हैं
1: जी।
0: और सब्जियां उगा के वो फिर जो है सेल करते हैं बाजार में, वह इसको हर सब्जी में जो मतलब प्रयोग करें। और उसकी दो ही अवस्था है, एक तो जब उसकी शाखाएं बन रही हों, दूसरा जब उसमें फूल और फल आने की बीच की अवस्था हो
1: जी।
0: उस समय पर इसका आप प्रयोग करें और जो उपयोग करें और अच्छा उत्पादन लें, उत्पादन अच्छा लें, क्वालिटी अच्छी लें। और क्वालिटी से अच्छा ये होता है कि जब कोई भी सब्जी हम ले रहे हैं तो उसका जो एक स्वाभाविक स्वाद होता है वह विकसित हो, तो वह विकसित होता है तो बाजार में भी जब लोग उसका प्रयोग करते हैं या जो लोग उसको बनाते हैं तो सोचते हैं हाँ यार ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। सब्जियां हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो फल हैं जो कि हमारे क्षेत्र में होते हैं उन पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और वो फूल वाली अवस्था पे करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अनाज वाली सारी फसलों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी फल पे इसका आप जो इस्तेमाल करें उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप फूल की खेती भी करते हैं, जैसे कि गेंदा भी आपने जो लगाया, इस समय पर लगाते हैं गेंदा, जो कि उसके जो है फूल आते हैं, आसपास के शहरों में बेचते हैं और खास तौर से दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है। मूल चूल बात यही है कि उत्तम प्रणाम को हर फसल पर आप प्रयोग करें। दो अवस्थाएं हैं, जब उसका विकास हो रहा हो और जब उसके फल फूल वाली अवस्था हो, इन अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि उत्तम परिणाम के उपयोग की मात्रा के बारे में एक बार आप थोड़ा सा जरूर बताएं हमारे किसान भाइयों को।
0: हाँ आनंद जी, देखिए उत्तम प्रणाम के दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक तो जो फसल के ऊपर छिड़काव करके
1: जी।
0: दूसरा बीज उपचार। बीज उपचार के लिए जैसे कि सामान्य फसलें हैं तो उसके लिए जैसे अनाज वाली फसलें और सामान्य फसलें उनकी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो उसमें एक एकड़ का जो बीज है उसमें 100 ml मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 100 से 250 ml के हिसाब से बीज की मात्रा देख लें, जैसे किसी फसल में बीज ज्यादा लगता है, किसी फसल में बीज कम लगता है एकड़ में, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। उससे जो आपका बीज है उसके ऊपर आप उत्तम प्रणाम का लेप करें, थोड़ी देर छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई। इसके अलावा आलू है, गन्ना है, उसमें कंद होता है तो उसका भी आप 250 ml मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि इनकी जो संख्या ज्यादा होती है मात्रा भी ज्यादा होती है। 250 ml से आपको उपचार करना है, छाया में सुखाना है और फिर इसकी बिजाई कर देनी है। तो इससे क्या है, अंकुरण बहुत अच्छा होता है
1: जी।
0: अंकुरण होता है, इसके अलावा जो जड़ें हैं उनका विकास और बड़ा स्वस्थ विकास होता है। इसके बाद फिर आता है खड़ी फसल में। खड़ी फसल में मात्रा 250 ml है एक एकड़ के लिए, और जो सामान्य स्प्रेयर से अगर कर रहे हैं तो 250 लीटर पानी आपको चाहिए, 200 से 250 लीटर सामान्य स्प्रेयर, जो हाथ वाले हैं या जो ट्रैक्टर वाले उनकी बात में कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ड्रोन के द्वारा छिड़काव करते हैं तो 250 ml मात्रा को ज्यादा से ज्यादा, जो उसकी एक टंकी होती है उसको पानी चाहिए सिर्फ जो 10 लीटर, इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि 240 लीटर पानी की बचत है, फिर भी समान रूप से और बहुत ही जो है आपके जो है सही ढंग से और इफेक्टिवली उसका स्प्रे होता है। तो ड्रोन की जो तकनीक है बड़ी सार्थक तकनीक है और इसका प्रयोग करके आप अनेक लाभ ले सकते।
1: उत्तम प्रणाम उपयोग के क्या क्या लाभ हैं?
0: जी हाँ, लाभ की बात यह है तो एक समग्र उत्पाद है, समग्र लाभ देता है, समग्र विकास के लिए काम करता है
1: जी।
0: तो सबसे पहले जब बीज उपचार आपने किया है तो जो उसकी जड़ों का जो विकास है वो तेज होता है और काफी सघन होता है। जहाँ जहाँ पर पौधे की ये शाखाएं जाती हैं जो खेत के नीचे होती हैं जिनको जड़ कहते हैं, जितनी ज्यादा फैलती है उतना ज्यादा पोषण वो लेती हैं, उतना ज्यादा वो पानी लेती हैं। जब पोषण और पानी लेंगी तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा, वो स्थायी रूप से और सशक्त रूप से खेत में खड़ा रहता है। ठीक है, नंबर एक ये हो गया
1: जी।
0: पौधों की जो भी उसको अपने ऊर्जा चाहिए उसके संचालन में जो है ये सहायक होता है
1: जी।
0: क्योंकि जब शुरुआत में इस्तेमाल हुआ या जब इसको तो इसका जो जो जो आपके पौधे के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है उसको सशक्त करता है
1: जी।
0: तो जो एक आवश्यक ऊर्जा है या पोषण है उसको ये जो है उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा फूल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो तीव्रता लाता है, फूलों की संख्या ज्यादा बनती है, वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। और ऐसे नहीं होते कि फूल बना और नीचे गिर गया फिर उसमें फल नहीं बना, ऐसा नहीं होता है, या फूल बना उसमें दाना नहीं बना, तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं में सहायक होता है। चौथा, जब हमारा पौधा स्वस्थ है
1: जी,
0: ताकतवर है, उसका विकास अच्छे से हुआ है, तो उसको रोग से जो रोग को रोकने की क्षमता आ जाती है, रोग को सहन करने की क्षमता आ जाती है, तो आसानी से उस फसल में रोग अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। तो ये क्योंकि आप जैसे होता है ना, कोई आदमी स्वस्थ है तो भैया ये आदमी तो बिल्कुल फिट फाट है, तो इसको जुकाम बुखाम भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता या अस्वस्थ नहीं होता। इसी तरह से हमारे पौधों के साथ होता है। पांचवा है कि जो जो भी जो हम उत्पाद ले रहे हैं, जो भी जो उत्पादन आ रहा है फसल का, जो उपज आ रही है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, शाइनिंग होती है, उसमें स्वाद अच्छा होता है। और उसमें कोई जैसे होता है ना कि जैसे अमरूद है, अमरूद हम लेके उसमें चकत्ते ज्यादा है, लेकिन अगर उत्तम प्रणाली से तो बड़ा अच्छा निखारा हुआ आपका जो फल होगा। तो उसको जब इस तरह की जो अच्छी क्वालिटी की चीजें आप लोगों को देते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं और भाव भी ज्यादा मिलते हैं, तो क्वालिटी को अच्छा करता है। दूसरा ये है कि ये जब इस्तेमाल होता है तो अन्य पोषक तत्वों का भी जो पौधा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। जैसे सपोज मान के कोई आदमी स्वस्थ है
1: जी,
0: तो उसने जो भी खाता है वो उसके अंग लगता है,
1: अंग लगता है।
0: अब उसने घी खाया, घी भी उसके काम आ गया, उसने हरी सब्जी खाई वो भी उसके काम आ गई। तो हम ये कहें कि ये पौधे के को एक तरह से हर अवस्था में और हर चीज के लिए फायदेमंद है उत्तम प्रणाम। मेरा किसानों से अनुरोध है कि आप उत्तम प्रणाम का जो उपयोग करके अवश्य देखें, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक खेत में करें और दूसरे में न करें और फिर उसका अंतर देखें। लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर बूंदाबांदी हो रही है तो उस समय पर ध्यान रखें कि जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसके 8-10 घंटे तक कोई बारिश वारिश न हो, क्योंकि पौधे में उसका असर होता है, उसकी पत्तियों में सोखता है। अगर पानी ऊपर से इमिडिएटली आ जाता है तो वो उसका असर कम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि जो उत्तम प्रणाम के बारे में या जो ऐसा पोषण जो कि स्प्रे के द्वारा ड्रोन के द्वारा हमने देना है वो जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी।
1: तो श्रोताओं, आज के कम में जो है श्री एके सिंह जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपके साथ साझा करी, घुलनशील पोषण से जुड़ी और उत्तम प्रणाम के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हमारे तमाम सुनने वालों के साथ। सर, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को जो या जो लिसनर्स हमें रेडियो पे सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: जरूर आनंद जी
1: जी,
0: कि पोषण जो हम जो जो इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में,
1: जी जी,
0: हमारी सोच यही है कि भाई रासायनिक जो उर्वरक आते हैं कट्टे में हम उन्हीं का ही प्रयोग करें। ऐसे ही है, अब काफी अनुसंधान हुए हैं और उससे ये आया है कि जो खड़ी फसल में अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम खर्चे में हम उसका उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना कि हम स्थूल उर्वरक के प्रयोग से ले रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा ले सकते
1: जी।
0: तो मैं आशा करता हूं कि हम अपने यहाँ ऐसे संसाधन थोड़े से ठीक करें जिससे कि हम स्थूल उर्वरक की जगह जो इस तरह के उर्वरक आ रहे हैं उनको घोल के छिड़काव करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। स्थूल उर्वरक कभी कभी हम बहुत अत्यधिक मात्रा में या असंतुलित रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ होता है लेकिन हानि भी हमें होती है। हानि पर्यावरण के रूप में होती है, हानि हमें अतिरिक्त खर्चे के रूप में होती है, हानि हमें एक तरह से ये होती है कि जो हम खेत में इस्तेमाल किए वो बहुत सारा हमारे और संसाधनों में जाके मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम धीरे धीरे प्रयास करें कि जो इस तरह के जो उत्पाद आ रहे हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं और उनका फसल पर छिड़काव होता है, उनका हम प्रयोग करना अपनी खेती में शामिल करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एकी जी, आप आए और आपने तमाम जानकारियां साझा करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। और इसी बात के साथ मैं आर्य आनंद अब आपसे लूंगा इजाजत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार, आप जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम सुना।
1: बिल्कुल सर, नमस्कार सर, आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभ कई में एक नए एपिसोड के साथ। मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना।
2: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजेरीना, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
1: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
1: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
2: सही कहा अर्जरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, पर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
1: भाभी आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
2: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
1: फिर क्या किया गया भाभी?
2: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
1: भाभी बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
2: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
1: तो भाभी प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
2: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
1: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है, टाइफाइड कैसे होता है?
2: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है, इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है, गंदगी, साफ पानी की, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
1: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना, लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
1: और इससे बचने का क्या उपाय है?
2: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिएं। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
1: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
1: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है?
2: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं, यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
1: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
1: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
2: पास के मोहल्ले में हन्नु काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नु को हेपेटाइटिस ए है, समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया वरना मुश्किल हो सकती थी।
1: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं, ये बीमारी कैसे होती है?
2: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मल मूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटाफटा हिस्सा है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है, फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
1: इससे बचने का उपाय क्या है?
2: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
2: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है।

0: ये मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियाँ बहुत तकलीफ दायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
1: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आँखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है, इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
1: भाभी बचाव का सही तरीका क्या है?
0: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
1: भाभी बाढ़ के बाद गाँव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं। क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
0: बिल्कुल ठीक। बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं। उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
1: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
0: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है। कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
1: तो लोग इससे कैसे बचे?
0: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
1: भाभी बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
0: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुखाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
0: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
1: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
0: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए, गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हो वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
1: भाभी बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीले जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
1: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
0: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
1: तो फिर भाभी ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत। हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए। घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
1: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है। लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे और समय पर इलाज करवाए तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ,
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही है क्या ये?
1: सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्टोम कहते हैं, यानी बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले बेटे को जन्म दिया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी, बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
4: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
1: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना।
4: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्ची को जन्म के एक घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
1: देखिए, बच्चे को जन्म के एक घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्ट्रम मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
4: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
1: इसमें वो सब कुछ है जिसकी नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है, मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी है।
4: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: बच्चा जब भी चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है, यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
4: भाभी, कैसे समझे कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है?
1: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और कुछ और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
4: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
1: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
4: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओं को दूध पिलाते समय तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियाँ हो जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
4: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
4: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
1: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
4: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
1: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
4: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट

0: 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश निहर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। आज की बात बहुत सिंपल है। हम अक्सर कहते हैं ना, आज हमारा मूड नहीं है, पढ़ाई करने का मूड नहीं है, एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर हम हर जरूरी काम सिर्फ मूड देख कर करेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी पीछे रह जाएगी, पता है ना आपको। मूड बदलता रहता है लेकिन हमारे गोल्स रोज नहीं बदलने चाहिए। यही जगह है जहाँ डिसिप्लिन यानी अनुशासन काम आता है। डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे, जो जरूरी है उसका छोटा सा हिस्सा आज जरूर करें। तो आज का हमारा यही ब्यूटीफुल कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी हैं और करेंगी बहुत सारी बातें। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। बताइए रीना, कैसे हाल चाल है आपकी?
2: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो आजकल?
1: मैं भी ठीक हूँ। और रीना, क्या तुम भी ऐसा करते हो? अरे यार बस 5 मिनट और सोने दो ना, अभी मैं उठ जाऊंगी।
2: यार पता नहीं, लेकिन मुझे ना अभी सुबह सुना ठंड लगने लग गई है।
1: और अभी मौसम में बहुत बदलाव आ गया है ना, चेंजेस हो गए हैं। जन्माष्टमी की बात कहते भी हैं कि सर्दियां शुरू हो जाती हैं और सुबह सुबह हल्की गुलाबी ठंड लगने लगी है। हाँ
2: हाँ ये तो है, मन नहीं करता मेरा सच में ना। पहले मैं जल्दी उठ जाती थी, लेकिन अब एक्चुअली क्या होता है कि बस यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और सो लेती हूँ, और थोड़े के चक्कर में ना लेट हो जाती हूँ फिर मैं।
1: फिर घड़ी की तरफ देखते हैं और
2: जल्दी उठते हैं।
1: सुबह का अलार्म शायद हमारी जिंदगी का सबसे ईमानदार दोस्त है, पता है? वो रोज कहता है उठ जाओ, और हम कहते हैं बस 5 मिनट और। फिर 5 मिनट, 10 मिनट होते हैं, 10 से 20 और 20 से अचानक अरे इतनी देर कैसे हो गई। यही छोटी सी आदत हमें बताती है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। जल्दी उठना ही डिसिप्लिन नहीं है, असली डिसिप्लिन है जो तय किया जाता है उसे निभाइए। अगर आज आपने तय किया है कि 10 मिनट वॉक करेंगे तो 10 मिनट ही सही, लेकिन कीजिए जरूर। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस अपने फैसलों को अपने मूड से थोड़ा ऊपर रखिए, क्योंकि सुबह की पहली छोटी जीत पूरे दिन का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया है ना कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा और मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, तो आप ना उसको आलस पर मत टालिए, आप मूड पर मत टालिए कि आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं कर, मैं कल से शुरुआत करती हूँ। तो ये चीजें ना आपको आपकी जो डेडिकेशन है, जो आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका पीछे छूट जाएगा। तो आपने जो खुद से वादा किया है उसको निभाइए और अपनी लाइफ में देखिएगा फिर कितने चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ जब इम्प्रूव होगी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और आप फिट रहेंगे, तो फिर आपका हर चीज में, हर काम में आपका मन लगेगा। क्यों रीना?
2: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कही है कि हर काम में मन लगता है, और जब आप सुबह, लेकिन वो तब है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तब, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये चीज फील किया है जब मैं सबसे पहले उठती थी सुबह सुबह। एक तो वातावरण बिल्कुल शांत, अलग ही नेचुरल हवा आपकी बॉडी के अंदर फील होता है, और सच में ऐसा लगता है कि भाई ये दुनिया है। और जो सुकून मिलता है ना सुबह उठने में, अगर आप लेट उठते हैं तो उसके बाद आप खुद भी फील करेंगे कि आपका सर भारी भारी होने लग जाता है और फिर सारा काम डिले हो जाता है। पहली बात तो ये,
1: फिर पूरे दिन की ना बैंड बज जाती है,
2: कोई भी काम आप ढंग में नहीं कर पाते
1: इसीलिए रीना आपने बोला ना कि सुबह का वो खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सी वो ठंडी नेचुरल हवा जब हमारी बॉडी को छूती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिविटी आती है, और वो गोल्डन मॉर्निंग ना हर कोई नहीं देख पाता है। बहुत लकी लोग होते हैं जो सुबह सवेरे का आनंद ले पाते हैं, सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते हैं। क्यों रीना?
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वही हैबिट बहुत अच्छी होती है। आप चाहे देखिए सुबह जल्दी उठ जाइए, फिर दिन में सो जाइए जब हाँ, आपको टाइम मिलता
1: है, दिन में रेस्ट कर सकते हैं आप। ये बात तो बिल्कुल सही की है रीना।
2: लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई लेट उठना है और फिर दिन में भी सोना है, तो एक तो पहली बात तो आप दिन में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा दिन अजीब सा रहेगा, मन भी भारी
1: लीजी लीजी रहता है ना, आलस आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एवरीवन एवरी मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है। लेकिन जल्दी उठने के लिए ना आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, ये तो याद रखो यार। अब आप रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो हाँ, और आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता, कैसे उठ पाएंगे आप? जब आप जल्दी सोएंगे तभी तो आप जल्दी उठ पाएंगे ना। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ एवरीवन कि रात का अपना रूटीन अच्छा रखोगे ना, तो अर्ली मॉर्निंग का रूटीन भी आपका अच्छा ही होगा।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, अदरवाइज फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होता है, हर चीज चेंज होता ही चला जाता है आपकी जिंदगी में। और अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद और साथ ही साथ ये कहा जाता है सुबह का जो आप पढ़ते हैं ना,
1: दादी जी मम्मी पापा कहते थे बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में,
2: वो पूरा दिन दिमाग में रहता है, अगले दिन तक मतलब तुम्हें हमेशा के लिए याद रहता है। और ये बात फैक्ट है,
1: ये असर भी करती है ना।
2: हाँ, एक तो देखिए आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होता, आप और आपकी बुक्स आपके साथ होती है और बिल्कुल सुनसान, कोई एक भी आवाज नहीं आती आपके कानों तक, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो आप सुबह पढ़ सकते हैं आसानी से और पढ़ाई का मूड का इंतजार मत कीजिए। सुबह के टाइम में ये भी होता है ना कि उठ जाते हैं, किताबें हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वही फिर नींद आती रहती है और किताबों के साथ साथ खुद ही सो जाते हैं। मेरे साथ कभी मतलब बहुत बार हुआ ऐसे, जब मैं स्कूल टाइम में अक्सर मेरे से होता था कि जब मैं सुबह पढ़ती थी उस टाइम हमारे घर में ये था कि दिन में कोई तुम्हें बोले ना बोले, लेकिन 4 बजे जरूर मम्मी पापा उठा देते थे हमारे कि अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अब मम्मी पापा उठा के चले जाते, मैं बुक हाथ में लिए मस्त नींद में सोती रहती, मेरी मम्मी आती एक चपाटा मारती।

0: आपको एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना, बस आज एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है, तो किताब खोलिए, फोन साइड में रखिए और खुद से कहिए, मुझे पूरा नहीं करना, मुझे बस शुरू करना है। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं पूरा करूंगी या पूरा करूंगा या बुक आज ही मैं खत्म कर लूंगा, तो ये आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से ही पूरा होता है, कहते हैं ना, जब हम बूंद बूंद से तालाब भरते हैं। तो खुद पर आजमाइए ये चीजें और सोचिए कि मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि एग्जाम्स के टाइम ही हम पढ़ लेंगे, तो वो चीज नहीं होता है। और यही रीजन है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं यार मैं क्या क्या पढ़ू, क्या पढ़ सकता हूँ। जब आप खुद मैंने खुद सोच कर देखिए, जब आप खुद एक दिन में एक बुक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो एग्जाम के टाइम में जब इतने कम समय में 5-6 बुक्स कैसे आप कवर कर सकते हैं,
1: पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो उसके लिए जैसे आपने कहा रही ना कि एवरी डे आप 30 मिनट्स पढ़िए, टाइम दीजिए, और ऐसे जब आप रेगुलर 30 मिनट्स अपनी बुक को देंगे जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है आप वो पढ़ेंगे, तो इजीली आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपके माइंड पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ता है। अदरवाइज एक दिन पढ़ेंगे तो भाई सच बता रही हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और सबसे जरूरी बात है हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक चीज छोड़ देते हैं ना, दूसरी बार उसकी हैबिट डालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन होता है। और सबसे आज के टाइम में क्या है, मैं खुद से ही कन्वर्ट करती हूँ, किसी के ऊपर नहीं करना है। जब मैं खुद फोन चलाती हूँ तो कब से 7 से 10 बज जाते हैं मुझे भी नहीं पता चलता।
1: नहीं पता चलता यार।
0: तो वैसे ही सोचिए, आज मैं सच बताऊँ तो मैं लिखने बैठी हूँ आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। मतलब इतनी स्लो मेरी राइटिंग हो गई है, पहले ये था कि मैं जल्दी जल्दी लिखती थी,
1: 1 घंटे में इतने सारी पेपर्स हम कंप्लीट कर देते।
0: देखिए, देखा होगा 2 घंटे का पेपर होता था और कितने क्वेश्चन होते थे, हम टाफट क्वेश्चन आंसर कर देते थे। लेकिन अभी मैं लिखने बैठी हूँ तो मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मैं 2-3 लाइन लिखते लिखते मेरे हाथ दर्द होने लगे, मन ही नहीं कर रहा है कुछ लिखने का।
1: वो इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया।
0: हाँ, हैबिट खत्म हो गई, हैबिट सबसे बड़ी बात है।
1: अब फोन चलाने की हैबिट है, उंगलियां चलवा लो मोबाइल।
0: ऑनलाइन जमाना है, AI है, कुछ पूछना होता है उससे पूछ लेते हैं, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें आने के बाद ना, ये असर हमारे ऊपर ही पड़ रहा है।
1: हाँ,
0: क्योंकि हम जो खुद से लिखते थे, खुद से दिमाग लगाते थे, वो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: तो मुझे लगता है कि भैया फोन को साइड रखिए और खुद से आप करके देखिए,
1: थोड़ा अपने दिमाग को भी दौड़ाइए।
0: हाँ, और आपको पहले वाला जो लाइफ होता था ना, उसकी अनुभूति होगी। और फिर आपका दिमाग है ना, मतलब पूरा दिन किताबों में रहेगा, जो भी आप काम उसमें आपका दिमाग रहेगा, एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज करने का, सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज एक्सक्यूज क्या है?
0: एक्सक्यूजेज होगा,
1: एक्सक्यूज है। देखिए यहाँ पे,
0: हाँ, एक्सक्यूज।
1: एक्सरसाइज करने का सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज क्या है? कल सुबह से वॉक करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से योगा करूंगी। लेकिन वो कल आता ही नहीं है मैडम। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आपको 2 घंटे नहीं चाहिए, शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की वॉक से हो सकती है। और अगर किसी दिन मन नहीं है तो खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट और कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर पूरे काम से डरता है, शुरुआत से नहीं। याद रखिए, फिटनेस का रास्ता मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से बनता है। आज सिर्फ 10 मिनट अपने शरीर को दीजिए, शायद यही 10 मिनट आगे चलकर आपकी सबसे अच्छी हैबिट बन जाए। क्यों रही ना?
0: हाँ, ये तो देखो तुमने सही बात कही है कि हैबिट आगे चलकर बनी जाती। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत करो पहले। अगर सोचते रह जाएंगे आज करेंगे कल करेंगे,
1: तो करेगी कल तो आएगा ही नहीं, नहीं है। हाँ, कल कभी आएगा नहीं और हम फिट रह नहीं पाएंगे। तो फिट रहना है आपको, यंग दिखना है ना, बिल्कुल शिल्पा शेट्टी की तरह, तो आपको ना एक्सरसाइज भी करनी होगी।
0: जी, अब सोच के देखिए, वो 51 की है।
1: अरे यार, 16-13 साल की लड़की को टक्कर देती है। हाँ, आजकल के जितने भी यंग्स गर्ल्स हैं, उनके बराबरी वो लेबल पर रहती हैं।
0: मतलब उनके बराबर तो हम भी नहीं है, सच बताऊँ तो। वो जितना मतलब
1: उनकी बेबी
0: है,
1: तो उनकी बेबी है, वो अभी भी लगती नहीं है कि उनकी बेबी है, ऐसा लगता है कि अभी उनकी शादी हो जाएगी दोबारा से।
0: अभी वो 2-3 शादी कर लेंगी तब भी चल देगी
1: वो यंग लगेंगी यार। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों, आप भी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो एंड वॉक करो, क्योंकि जो फिट है वो हिट है। और आप भी चाहते हैं ना कि आप भी हिट रहेंगे, एकदम शिल्पा शेट्टी की तरह आप भी हिट दिखना चाहती है और

0: भी होना चाहती हैं, तो बस उसके लिए आप अपना ख्याल रखो, हेल्दी डाइट लो, एवरी डे एक्सरसाइज करो एंड माइंड भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको।
1: और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम भूल गई हो बताना।
0: अच्छा बताइए मैम।
1: खाना
0: नहीं, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है यार, कभी कभी चलता है वो भी हेल्दी, ठीक है, रेगुलर नहीं खाना है क्योंकि आपका घर का बना हुआ सबसे हेल्दी फूड होता है।
1: हाँ, और वो आप खाएंगे तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा हेल्दी भी रहेंगे।
0: हेल्दी रहेंगे और घर पर हम एकदम, हमें पता है कि हम किस चीज से बना रहे हैं।
1: और आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जितना जो चीज डालना है आप आसानी से डाल सकते हो।
0: इजीली
1: आपको लगता है कि भाई हम मिर्च में ज्यादा नहीं खाते, बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, लेकिन बाहर थोड़ी पता है कि आपके मूड के हिसाब से कोई तो खाना नहीं बनाता,
0: नहीं बनाएगा। या आई एग्री विद यू।
1: उनसे बल्कि आप बोले ऑर्डर भी करेंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, अच्छा मिर्च कितना डालना चाहिए, अच्छा सर तेल कितना डालो, ये कभी नहीं पूछता है कोई भी। तो सोच कर देखिए, बाहर के खाने अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती अच्छे नहीं होते, टेस्टी भी होते हैं, मजा आता है खाने के, खाने का कर
0: भैया ये लड़की हमेशा खाने की बातों पर ही आ जाती है क्योंकि ये खाने पीने की बहुत बड़ी शौकीन है। और मुझे लगता है कि जो खाने पीने का शौकीन होता है ना, वो इंसान कहीं भी जाए उसको ना वो अपने ट्रैक पे आ ही जाता है। तो रीना बहुत बड़ी फूडी लड़की है, इनफैक्ट मैं भी फूडी हूँ बट रीना से ज्यादा नहीं, रीना
1: नहीं,
0: बहुत
1: मेरे से ज्यादा है। गाइस देखिए,
0: नो नो नो नो, नो, नो।
1: देखो मैं इसके साथ रहती हूँ, आप नहीं रहते तो आपको नहीं पता है।
0: अच्छा दोस्तों ऐसी बात है, तो एक दिन आप ऑफिस जरूर आइए और
1: लेकर आइए,
0: ये तो ठीक है। चलो
1: चलिए फिलहाल अपने,
0: अभी तो अभी हम आपको कुछ देते हैं, वो क्या है, एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं और वो एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और भी गपशप करेंगे एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बातें आपके लिए लेकर आए हैं। तो बस आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, खुशी ने आपको बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया है और इस तोहफे के बाद हम फिर से कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फोन और डायरेक्शन। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अभी फोन हाथ में है, आई नो मुझे पता है कि आप सभी के हाथ में अभी फोन है, खुद से पूछिए मैं इसे किस काम के लिए खोल रहा हूँ। कभी हम नहीं पूछते, इसे नहीं सोचते भी नहीं है कि आखिरकार हम फोन उठा रहे हैं तो किस काम के लिए उठा रहे हैं, मतलब करने जाते हैं कुछ और करने कुछ और लग जाते हैं।
1: अगर हाँ, ये जैसे आपने बोला अभी वाली बात बोली है कि फोन किस लिए चलाते हैं, हम फोन उठाते हैं क्योंकि चलो अपनी यार दोस्त से बात कर लेते हैं, मम्मी को कॉल लगा लेते हैं, और कॉल लगाते तो नहीं लेकिन इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, हाँ फेसबुक पर पहुंच जाते हैं,
0: रील्स देखने शुरू कर देते हैं, अच्छा स्टोरी लगाना है।
1: फिर जब एक घंटा हो जाता है, जब डाटा का नोटिफिकेशन आता है कि 50% आपका डाटा खत्म हो गया है, तभी याद आता है अरे मम्मी को कॉल करना था।
0: उसके बाद हम मैसेज देखते हैं, काम करने या बस आदत से है, हम कहते हैं एक रील देखता हूँ, और फिर मतलब हम यही सोचते हैं ना कि हमें एक रील देखना है, लेकिन एक रील के चक्कर में हम ना जाने दूसरा तीसरा 3-2 घंटे कब खत्म हो जाते हैं हमें भी कुछ नहीं पता होता है, आधा घंटा निकल जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब है फोन छोड़ना नहीं, मतलब फोन का इस्तेमाल आप तय करें, फोन आपकी अटेंशन तय नहीं करे। काम के 20 मिनट में नोटिफिकेशन बंद करके देखिए, हो सकता है आपको पता चले कि आपके पास समय की कमी नहीं थी, बस फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम के ऊपर था। वो तब होएगा जब आप फोन की नोटिफिकेशन बंद करेंगे। एक्चुअल क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, इनफेक्ट पूजा भी करते हैं ना, और फोन का नोटिफिकेशन आ गया तो आरती छोड़ेंगे पहले

0: भगवान से कहते हैं, अरे भगवान दर्शन तो हम कर ही लेंगे आपका, टेंशन मत लो, सब्र रखो आप। हम उल्टा भगवान को सब्र दिलाने लग जाते हैं।
1: तो रीना, जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल कि फोन जो है हमारा, नोटिफिकेशन जब हम कोई काम करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन ऑफ रखना चाहिए ताकि हम डिस्टर्ब ना हों, है ना। और जैसे आपने कहा कि हम टेम्पल में पूजा कर रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारा तुरंत माइंड वहां पर चला जाता है, तो हमारा माइंड वहां से ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना तो पूरा फोकस एक ही काम पर रखें, अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए, उससे क्या होगा आपके काम में ना मन लगा रहेगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे फोकस्ड के साथ। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है, जब भी आप कोई काम करें तो नोटिफिकेशन ऑफ रखें, ठीक है। चलो अभी हम अब अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे घर के लोगों से डिसिप्लिन सीखना हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर में कितने लोग हैं जो मूड देखकर जिम्मेदारी निभा हैं। माँ का मूड हो या ना हो घर संभालना होता ही है, पिता का मन हो या ना हो काम पर जाना ही होता है। एक वर्किंग पर्सन थका हुआ हो सकता है फिर भी जरूरी काम करता है, क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मूड से बड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आराम जरूरी नहीं, आराम भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। बस फर्क समझिए, जरूरत के समय पर आराम करना और हर जरूरी काम को आप आलस के नाम पर टालना दो अलग अलग बातें होती हैं। आज खुद से यही सवाल पूछिए, मैं सच में थका बस टाल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना रीना कि हम ना, हमारे पास काम होता है और हम उसको बेवजह टाल देते हैं कि नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कर लूंगा, जबकि आप थके वके कुछ नहीं होते हैं, बस आप अपने मूड के ऊपर चले जाते हैं कि आज मन नहीं है। लेकिन आपको ना ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि मेरे पास टाइम है और मुझे मेरे अर्जेंट काम करना है तो उस समय पे ना आप आलस बिल्कुल ना करें, उस काम को टाले नहीं, उस काम को उसी समय पर करें। और हाँ, अगर जब आप लग रहा है आपको कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत मैं टाइट फील कर रहा हूँ, तो तब आपको रेस्ट करना चाहिए, उस समय पे आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है। जब हमारी बॉडी रेस्ट करेगी तभी आप उस कोई भी काम को अच्छे से कर पाएंगे।
0: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा है, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट मांगती है और सबसे बड़ी बात है कि नींद पूरा करिए। जब तक आप नींद पूरा नहीं करेंगे कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, पूरा दिन आपका बोरियत फील होगा। और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में एक गोल्स जरूर बना कर रखिए। कई बार हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। रोज दो घंटे

0: जिंदगी डली, बस आज एक छोटा सा हिस्सा बेहतर बनाना है और अपने लिए सोचना है। क्योंकि देखिए, हम लास्ट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, इसीलिए बड़ा स्टेप लेने से पहले छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाइए, तभी जाकर वो बड़े बड़े कदम में परिवर्तन हो जाते हैं।
1: रीना, ये एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया है कि अगर आपको टेरेस पर जाना है और आप चाहते हैं कि बस मैं सीढ़ियां ना चढ़ूं, फटाक से उड़कर पहुंच जाऊं, तो ऐसे हाथ पैर में चोट लगने का खतरा होता है ना, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तो आप मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है।
0: अरे साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं छोटा जॉब नहीं करूंगा,
1: हाँ।
0: मैं कम पैसों का जॉब नहीं करूंगा,
1: लोग ऐसा भी
0: मुझे
1: सोचते
0: तो
1: हैं।
0: सीधा 50,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए, तो भैया ऐसा नहीं मिलता है कभी भी। आपको एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तभी उसी हिसाब की आपकी सैलरी भी बढ़ती है
1: उसी अकॉर्डिंग।
0: अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे अभी अभी 1,00,000 रुपए मिल जाए, तो पॉसिबल ही
1: नहीं है।
0: आप ऐसे करेंगे, ऐसे सोचेंगे तो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे।
1: तो आपको ना ऐसा नहीं सोचना है डायरेक्टली। देखिए, आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो, और पहली बार तो ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और जब आप शुरुआत करते हैं, आज आपको 20,000 मिल रहे हैं, कल आपको 40,000 भी मिलेंगे, क्यों रीना। तो धीरे धीरे पेशेंस रखिए, सब चीजें होती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है अपना लाइफ में। और ऑफिस में कभी ऐसा होता है कि काम बहुत ज्यादा है और मन नहीं करता, आज कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर काम सामने देखकर समझ में आता है कि भागने से ही काम कम नहीं होगा। ऐसे समय पर एक तरीका अपनाइए, प्रायोरिटी यानी सबसे जरूरी काम पहले। पूरी लिस्ट देखकर परेशान मत होइए, बस 3 जरूरी काम लिखिए, पहला काम पूरा कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई बार हमारी प्रॉब्लम काम की इक्वलिटी नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग का जो कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए आज का रूल आप बनाइए, एक समय में एक काम कीजिए, फोकस करिए। काम धीरे होगा तो भी चलेगा, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्यों रीना।
0: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा है, लेकिन देखिए सही के साथ साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेते हैं भैया, ये भी बहुत जरूरी
1: जब
0: है।
1: हम बातें करना शुरू करते हैं,
0: भैया मैडम बोलती रहती हैं, गाना तो सुनाती नहीं है।
1: हम वही कह रहे हैं, जब हम बात करना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने श्रोताओं को दें, लेकिन उससे पहले गाना भी बहुत प्यारा सा जो रीना जी की पसंद पर हम प्ले करने वाले हैं, और वो आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और एंजॉय कीजिएगा हमारे शो को। आई होप आपको ये शो इंटरेस्टेड लग रहा होगा, मुझे मालूम है। वैसे अपने फीडबैक
0: की गाना सुनाऊंगी, जिंदगी एक सफर है सुहाना,
1: यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो कल का किसी को नहीं पता होता है क्या होने वाला है, इसीलिए दोस्तों आज आपको ये पास वक्त है, आपके पास ये टाइम है, इसे एंजॉय करो, जो भी काम करना है उसे कर लीजिए, कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है,

0: श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना सुना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ कल क्या हो किसी को नहीं पता होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ कल क्या हो किसी को नहीं पता होता है। कल की इनफैक्ट बात छोड़िए, आपको सेकंड का भी नहीं पता होता कि कब क्या हो जाएगा। इसीलिए जिंदगी में जो भी आप काम करें सोच समझ के करें, और कुछ भी काम कल के परसों के ऊपर या आधे घंटे दो घंटे के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उसके ऊपर मत छोड़िए। जो करना है अभी करना है और शुरू करना है, बस कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं गुस्से पर डिसिप्लिन। ये हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि हम ना चाहते हुए सामने वालों को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इसीलिए पहले अपने आप पर कंट्रोल करिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई और एक्सरसाइज में नहीं है, हमारे व्यवहार में भी चाहिए। गुस्सा आए और हमने तुरंत बोल दिया, मैसेज आया और हमने तुरंत जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कहा और हमने उससे ज्यादा कह दिया, बाद में सोचते हैं काश मैं ये नहीं कहता, यानी इमोशनल डिसिप्लिन काम आता है। गुस्सा आए तो तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अगर जरूरत हो तो कहिए मैं थोड़ी देर बाद बात, क्योंकि हर फीलिंग्स पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिएक्शन को रोकना भी सबसे बड़ी जरूरत है, और ये हमारे अंदर सबसे कम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो जैसा बोलता है भैया उसको हम वैसा ही रिप्लाई देते हैं। तो सोचिए आप में और सामने वाले इंसान में क्या ही डिफरेंस रह गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो उसने बोला आपने रिटर्न कर दिया है। इसीलिए जब आपको लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है आपको रिश्ता बचाना है, आपको दोस्ती बचाना है, और साथ ही साथ आप अपना गुस्सा किसी ऊपर ना दिखाए, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं किसी से नहीं बोल सकता हूँ, तो जो आपका मन करे, गाना सुनने का मन करे गाना सुनिए, अकेले बैठने का मन करे अकेले बैठिए, लेकिन किसी को अपशब्द वचन ना बोले, क्योंकि एक बार जब ये जुबान से फिसल जाती है ना, दोबारा वापस नहीं आती है, ये दूसरे इंसान को भी घाव देती है और आप उसके नजरों में बुरे भी बन जाते हो। इसीलिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो इंसान कंट्रोल करना सीख जाता है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाता है।
1: बिल्कुल, क्या बात है यार रीना, तुम तो इतनी प्यारी बातें करती हो, मुझे पता नहीं था, आज ही पता चल रहा है तुम्हारे साथ बैठकर, वैसे मजा आ रहा है इस बातचीत में। अब हम बात करते हैं रीना, हम दूसरों से किया प्रॉमिस निभाने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन खुद से क्या प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगा, इस महीने में पैसा बचाऊंगा।
0: बात ये है कि हम दूसरों का डिसीजन मान लेते हैं,

0: अपना डिसीजन।
1: हम दूसरों से किया प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश करते हैं रीना, चाहे कुछ भी हो जाए भाई मैंने उसको प्रॉमिस किया है तो वो मैं निभाऊंगा दिन रात चाहे मुझे जागना पड़े। अब एग्जांपल आप ही ले लेते हैं, देखो आपकी बहन ने आपको काम दिया शॉपिंग करने के लिए कि मेरे लिए ड्रेस खरीद के लाओ, तो आप कितना रिसर्च कर रहे हो उसके लिए, हाँ परेशान कितना हो रही हो, पर भाई काम दिया है प्रॉमिस दिया है निभाना पड़ेगा है ना। लेकिन खुद से किया प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगी, इस महीने पैसे बचाऊंगी, अब फोन कम चलाऊंगी, और फिर खुद ही भूल जाती हैं है ना। लेकिन दोस्तों खुद से किया छोटा प्रॉमिस निभाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आज बड़ा प्रॉमिस मत कीजिएगा, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कीजिए, आज मैं अपना एक जरूरी काम पूरा करूंगा या पूरा करूंगी, ठीक है। जब वो पूरा हो जाए खुद को क्रेडिट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दूसरों की तारीफ से नहीं आता, खुद को बार बार साबित करने से आता है, जो भी हूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़िए, और अभी फिलहाल हमें भी दीजिएगा जाने की अनुमति, हम आपसे मुलाकात करेंगे नई बातों के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और कभी बात करेंगे तो बताएंगे रीना जी ने किस शॉप से शॉपिंग की थी, क्योंकि ये बहुत रिसर्च कर रही हैं एंड बताएंगे आपको, ठीक है। बस आप ऐसे एंजॉय करिए, बिंदास रहिए, और हाँ आपको कोई भी काम कल पर नहीं टालना है, आपको जो करना है आज ही कीजिए।
2: नहीं गाइस, जो करना है 10 दिन बाद करेंगे।
1: अरे अरे यार ये क्या था
2: मतलब अगर हम ऐसा एग्जांपल देते ना किसी को तो वो सोचता है कि नहीं यार अभी करना है, जल्द करना है।
1: हाँ तो आपको अच्छे से अपने काम को करना है और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पता नहीं है दोबारा मिले या ना मिले, ये जो जन्म मिला है जो जिंदगी मिली है ना इसको खुल कर दीजिए, जो करना है वो कर डालिए, पर अच्छा काम करना है।
2: चलिए बाय
1: बाय।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना रेडियो प्रोग्राम है, आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर। एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं और ऑफकोर्स यहाँ पर जो बातें होती हैं वो आपके काम से जुड़ी बातें होती हैं। और आज हमारे बीच में एक बार फिर से सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर अजीत कुमार जी मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ। आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं श्रोताओं, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है मनाया जा रहा है और ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हम जानेंगे डॉक्टर अजीत जी से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। एक्चुअली नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये पूरे देश भर में एक पखवाड़े के रूप में इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ आई डोनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ये इसी कारण से डोनेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है कि हम रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर सके। सो हम लोग बहुत पीछे हैं, इसीलिए हम पब्लिक को और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये पखवाड़े ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि नेत्रदान बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बता दें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है नेत्रदान का मतलब।
1: एक्चुअली नेत्रदान में हम लोग क्या करते हैं कि जो आंख के सामने की जो काली पुतली है जो दिखती है उसको बस हम निकालते हैं, वो भी मरने के बाद, मरने के 6 घंटे के अंदर में हम उसको निकालते हैं। और जिनको जरूरत हो, जिनमें वैसी ब्लाइंडनेस हो जो उनकी वजह से हो, पुतली खराब होने की वजह से हो, जिसको रोका जा सकता है।
0: सो श्रोताओं, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोग अक्सर समझते हैं डॉक्टर साहब की नेत्रदान का मतलब पूरी आंख निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देना है, इसमें कितनी सच्चाई है?
1: एक्चुअली ऐसा नहीं है
0: जी।
1: नेत्रदान में बस हम जो कॉर्निया है, जो आंख के सामने जिसको पुतली बोलते हैं, काली पुतली है, बस वो निकालते हैं
0: जी।
1: और इसमें पूरी आई नहीं निकाली जाती है और इस कारण से चेहरे का डिसफिगरमेंट होने का भी रिस्क नहीं होता है, देखने में भी कॉस्मेटिकली ठीक लगता है। तो हम बस जो हमारे सामने की पारदर्शी परत जिसको पुतली बोलते हैं उसको बस निकालते हैं, पूरी आंख नहीं निकालते हैं।
0: तो श्रोताओं, आई होप आपने एक मिथ तो डेफिनेटली अपना दूर कर ही लिया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं और उनकी कोई एज लिमिट भी होती है क्या इसमें?
1: नेत्रदान करने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत या मरने से पहले अपना प्लेज फॉर्म फिल करके या संकल्प पत्र लेकर के प्रत्यर्पण कर सकता है, कहीं भी कर सकता है,
0: कोई ऐसी एज
1: लिमिट? इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं।
0: ओके, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जीवन में नेत्रदान करने का संकल्प लेता है तो उसके बाद उसे मतलब क्या करना चाहिए? उसकी फैमिली कई बार पैनिक हो जाती है कि ये नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी होता है ना ऐसा, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली पैनिक होने की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ये सोचना चाहिए कि एक नेत्रदान है वो एक महान दान है, एक सामाजिक काम है, जिसके बाद हम ये सोचकर करें कि मरने के बाद भी मृत व्यक्ति की आंख दुनिया को देखेगी और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अपनी स्वेच्छा से बस आपको फोन करना है, आपको अस्पताल भी आने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके घर पर जाएगी और स्वतः वहां से आपकी कॉर्निया निकाल करके हम लोग लाते हैं, उसका कोई खर्च नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती।
0: जी सर, अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसमें कोई नंबर है या कोई कॉन्टैक्ट है जिससे कॉल करके परिवार या वो व्यक्ति पूरी जानकारी ले सके?
1: एक यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है 1919, जिस पर हम कॉल करके मृत व्यक्ति के घर वाले या जो भी है जो प्लेस करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, वो कॉल करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं, उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी टीम आती है, उनको काउंसिल करती है, समझाती है कि उससे जुड़े हुए क्या मिथ हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हो नहीं सकती, कोई दिक्कत होती नहीं उसमें
0: जी।
1: तो हम लोग आकर के खुद, वो स्वतः हमारी टीम आकर के उसको ले जाती
0: है। अच्छा, तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है
1: 1919,
0: इस पे भी आप श्रोताओं कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर हम रुकते हैं ब्रेक के लिए, एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते।

0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे RJ आनंद को, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर। और आज हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन के बारे में, ढेर सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, और इसी पर बात करने के लिए आई इंस्टीट्यूट सीएल गुप्ता से हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अजीत जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर, जो मृतक परिवार है अगर वो जब तक आपकी आई बैंक की टीम वहां पर नहीं पहुँचती है तो उनको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए?
2: एक्चुअली नेत्रदान से पूर्व जब तक हमारी टीम वहां नहीं पहुंचे तब तक मृत व्यक्ति के परिवार को कुछ कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे उनका सर थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, वो ऊंचा करके रखें, आंखें बंद करके गीली रुई आंखों के ऊपर रख दें, पंखा वो कूलर बंद कर दें।
1: डॉक्टर साहब मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, किन

0: परिस्थितियों में जो है नेत्रदान नहीं किया जाता?
1: कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर नेत्रदान नहीं किया जा सकता है, जैसे यदि किसी की डेथ सेप्सिस से हुई हो, एक्टिव सेप्सिस हो, या फिर रेबीज के मरीज हो, या फिर HIV HCV और हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो, या फिर कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे क्रुसपेल जैकब डिजीज या इंसेफेलाइटिस, उन सब यदि एक्टिव होता है उसमें हम आई डोनेशन नहीं।
0: ओके, अच्छा एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्या नेत्रदान के लिए उनको हॉस्पिटल जाना होता है या आई बैंक की टीम घर आ जाती
1: है? आई बैंक की टीम खुद घर आ जाती है, जनरली उनको हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं होती, हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है, ट्रेंड है इस चीज के लिए।
0: ठीक है, ओके सर।
1: और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई एक बड़ा और लेंदी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें आराम से पब्लिक के बीच में और परिवार वालों के सामने ही आई डोनेशन आप कर सकते।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, मान लीजिए किसी परिवार ने संकल्प नहीं लिया है आई डोनेशन का, बट वो उसका परिवार कराना चाहता है, तो क्या ये संभव है, पॉसिबल है?
1: हाँ, इस कंडीशन में ऐसा है ना कि फैमिली को जरूरी नहीं है कि पहले से ही संकल्प पत्र फिल हो या प्लेज लिए हो, उसमें बिना प्लेज फॉर्म फिल किए भी वो एट ए टाइम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको डोनेशन कराना है, और ये डोनेशन कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी भी राज्य का हो, किसी दूसरे राज्य में नहीं कर सकता, ये कहीं भी करा।
0: सपोज मैंने अगर अपना संकल्प लिया मुरादाबाद में और मैं चला जाता हूँ राजस्थान में, और खुदा ना खास्ता वहाँ डेथ होती है, तो क्या वहाँ हो सकता है, पॉसिबल है?
1: हाँ, आप वहाँ की टीम को या फिर 1919 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ भी ये करा सकते।
0: ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीते जी संकल्प नहीं लिया आई डोनेशन का, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार अगर आई डोनेशन करना चाहे, नेत्रदान करना चाहे, तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है?
1: एक्चुअली इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि संकल्प पत्र फिल किया जाए, प्लेज फॉर्म हो ही, उसके बिना भी वो डोनेशन कर सकते।
0: ठीक है, ओके, मतलब ये संभव है, पॉसिबल?
1: हाँ, ये संभव है।
0: ठीक है, सो श्रोताओं आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीत जी मौजूद हैं स्टूडियो में और लगातार हम नेत्रदान पे बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ढेर सारी बातचीत जो है वो लगातार जारी रहेगी, ब्रेक के बाद आएंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, डॉक्टर अजीत जी से उनके बारे में बहुत सारी बातें पूछनी है अभी मुझे, उन्होंने बहुत जानकारियां दी है लेकिन उनके बारे में तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, तो जनता भी इंतजार कर रही है, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर अजीत जी, और तमाम जानकारियां उन्होंने हमारे लिसनर्स को दी है, मुरादाबादीज को दी है, मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बारे में भी हमारी जनता को बताएं। आपने तमाम जानकारियां दी, तमाम सवालों के जवाब दिए, अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली जानना चाहता हूं, आप थोड़ा अपने बारे में हमारी जनता को बताएं।
1: तो मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है, मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में आई बैंक डायरेक्टर के रूप में हूं।
0: सो डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारी जनता को, जो तमाम इस वक्त आपको देख रही है या रेडियो पे सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या एक अपील करना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की ऑडियंस?
1: तो आई डोनेशन में तो हमारा पूरा भारत देश ही बहुत पीछे है, और मुरादाबाद को देखा जाए तो यहाँ पर डोनेट करने वालों की संख्या काफी कम है और रिसीवर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ चाहते हैं मुरादाबाद की जनता से कि कृपया सामने आकर के प्लेस करें, प्लेस फॉर्म भरें और स्वेच्छा से आई डोनेट।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी इस विषय पर, बहुत अच्छा लगा। और सर से बातचीत करके ये तो पता लगता है कि सर की जो लैंग्वेज वो बता रही है कि प्रॉपर मुरादाबाद से तो नहीं है। वेल, कोई बात नहीं सर, अगर आप ये बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं हमारी ऑडियंस की जो सुन रहे हैं, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए आप कहां से हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा।
1: मैं बेसिकली पटना बिहार का रहने वाला हूं और अपनी सुविधाएं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में पिछले 10-11 सालों से दे रहा हूं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। वो एक कोई टैगलाइन है शायद, अगर मैंने बोल दी तो मेरे पे भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहां से निकलता हूं। आप कहीं मत जाइए गाइस, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, जल्दी मिले।

0: सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
4: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
5: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए दो योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये KCC की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालक का

0: करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा है। केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही।
1: हमेशा प्रमाणित खरीदें, फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पोषण।

0: मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थलसेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क

0: नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
3: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन

0: भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: वासुदेव कमला।
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान की नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, महिला मंच। और आपको पता है जब महिला मंच कार्यक्रम लेकर हम आते हैं तो मैं अकेली नहीं, मेरे साथ में रीना जी होती है या फिर रीना जी के साथ खुशी होती है। तो आज मेरे साथ यहाँ पर रीना जी है और आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, बेटी है तो खर्च होगा, ये सब ये सोच अब धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। आज की बेटियाँ स्टडी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, नौकरी करके अपना खर्च खुद उठा रही हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता और परिवार का सहारा भी बन रही हैं। कभी कहा जाता था कि इतना पढ़कर क्या करोगी, आज वही बेटी अपनी मेहनत से घर का खर्च संभालने में हाथ बटा रही हैं। ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये उस आत्मविश्वास की बात है जो एक लड़की को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देता है। महिला मंच में आज बात उन्हीं बेटियों की है जो पढ़ रही हैं, जो स्टडी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं और परिवार को भी संभाल रही हैं।
5: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, जैसे कि तुम ही देख लो, तुम घर का भी काम कर रही हो। इनफैक्ट मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम नहीं हो, और भी जो मेरे साथ है, हमारे साथ
4: बहुत
5: है,
4: सारी हमारी वुमेन है जो घर भी मैनेज कर रहे हैं और स्टडी भी कर रही हैं।
5: हाँ, बहुत सी लड़कियाँ भाई यही सोच है कि अब तक तो मम्मी पापा ने हमें पढ़ाई है, हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, लेकिन अब हम भी खुद पढ़ते पढ़ते कुछ स्टडी कर लेते, जॉब कर लेते हैं और खुद का खर्चा खुद भी निकाल लेते हैं और फैमिली वालों को भी हेल्प कर देते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना हूँ। आवाज सुनकर तो पहचान ही गए होंगे। आपको अपनी पहली कमाई याद है, वो पैसा कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी मेहनत का कमाया जाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। खासकर उस लड़की के लिए जिसने पढ़ाई के साथ मेहनत की, नौकरी हासिल की और पहली बार अपने हाथ में घर में कुछ खरीदा या माता पिता को पैसे दिया। उस दिन सिर्फ पैसा मिले, एक एहसास मिले कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ। आज बहुत सी बेटियाँ अपने फीस खुद भरती हैं, अपने छोटे बड़े खर्चे खुद उठाती है और घर की जरूरत में भी साथ खड़ी होती है। यही आत्मनिर्भरता, जहाँ लड़की किसी पर बोझ ना हो बल्कि खुद और अपने परिवार की ताकत बनती है और हमेशा यही कहती है कि पापा मैं आपके साथ हूँ, आप अपने आप को कभी अकेला फील ना करें। तो सोचिए उस पिता को कितना गर्व होता होगा कि कहां दुनिया कहते हैं कि बेटियों को मत पढ़ाओ। और जब ये वाली बातें आ जाएंगी ना हर किसी के घर में कि उनकी बेटी कमा भी रही है और पापा से ये बोल रही कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे, तो एक बाप को ना एक सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व फील होता है कि मेरी बेटी कुछ आगे कर रही है और अपनी जिंदगी में जो करेगी अच्छा ही करेगी। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटियां पढ़ती हैं तभी भविष्य बनता है और अपने घर के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करती हैं और आपको उन पर गर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल भी वो बन जाती है कि शर्मा जी की बेटी ने तो भैया बहुत अच्छा काम कर रही है, जॉब भी करती है, पढ़ाई भी करती है, घर का थोड़ा हाथ भी बटाती है। तो सोचिए आप भी कर सकती हैं। जो लड़कियां सोचती हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, आप बिल्कुल सोचिए मत, जो करना चाहती है बिल्कुल करिए। बस आपकी फैमिली आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है,
6: फैमिली सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है रीना। और जैसे नौकरी के साथ घर मैनेज करना, आपने अभी बात की, नौकरी करना आसान नहीं होता और नौकरी के साथ घर संभालना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सुबह उठकर घर के काम, फिर तैयार होकर ऑफिस जाना, पूरे दिन काम करना और शाम को वापस आकर घर की जिम्मेदारियां देखना, कई महिलाओं की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है क्योंकि वो जानती है कि उनके नाम उनके काम से सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदल रही बल्कि उनके परिवार की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। और आज की जो गर्ल्स हैं देखो, वो ऑफिस भी मैनेज करती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, वो घर की जिम्मेदारी भी बराबरी का मतलब भागीदारी वो निभा रही हैं। इसलिए ये काम को सिर्फ नौकरी मत समझिए, उसके पीछे उनकी मेहनत, समय और बहुत सारे समझौते भी होते हैं। जब एक लड़की बाहर निकलती है ना घर से जॉब के लिए, तो कई बार तो उसे ताने भी सुनने को मिलते हैं, इनफैक्ट उसको भी मिलते हैं, उनकी फैमिली को भी मिलते हैं कि लड़की को माने के लिए भेज रहे हैं, लड़की के पैसों पर अब माँ बाप राज करेंगे। इस तरह से सोच होती है ना, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अब तो भैया लड़की काम कर रही है, नौकरी कर रही है और नौकरी लड़की की कमाई खाएंगे, इस तरह से कुछ बोलते हैं लोग।
5: अरे इस तरीके से सुनने को भी आया, बहुत से सुनने को आया कि एक बात सोच के देखो, जिस माँ बाप ने उसे पाला बड़ा करा, उसके ऊपर इतना खर्चे किया, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो फैमिली के लिए कुछ करे?
6: बिल्कुल होती है जिम्मेदारी फैमिली को, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा रीना।
5: बिल्कुल, जो दुनिया कह रही है कि बेटी के खर्चे पर अब घर चलेंगे, तो वो थोड़ी दे देंगे हमारे खर्चे लाके, वो सिर्फ बात बना सकते हैं।
6: लोगों का काम है बात बनाने का, है ना,
5: ये तो है।
6: तो लोगों की बातों को मत सुनो, आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, तो बस आप अपनी ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लोग पीछे गिराने वाले ना हजार मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले, आगे पुश करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और वो अगर मिले हैं ना, तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं कि वो आपका नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो। तो बस आप किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनिए और आप जिंदगी में आगे बढ़ते चलिए।
5: खुद सोच कर देखो, माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते? उनकी हिम्मत बनने के लिए ना, उनकी सहारा बनने के लिए,
6: सहारा बनने के लिए।
5: तो बन रही है तो उनको बनने दीजिए, उनको ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए बल्कि उनका सपोर्ट करिए। और आप भी अपने बच्चियों को करिए,
6: उनको अच्छी एजुकेशन दिलाइए, पढ़ाई कराइए, और अगर वो उनका कुछ ड्रीम है, जॉब करना चाहती हैं, तो उसमें भी आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना, तो ऐसा लगता है रीना कि हमने पूरी दुनिया जीत ली है।
5: ये तो बिल्कुल सही कहा। और अब बात आती है अपनी कमाई, अपना आत्मविश्वास।
6: अरे जब पैसा मिलता है तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है यार।
5: अपनी कमाई का मतलब सिर्फ पास पैसा होना नहीं है, अपनी कमाई का मतलब है अपने फैसलों में आत्मविश्वास। जब लड़की अपनी मेहनत से कमाती है तो उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए हर बार किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे पता होता है कि अगर कोई चीज चाहिए तो वो मेहनत करके उसे हासिल कर सकती है, चाहे वो अपना फोन हो या पसंद की ड्रेस लेना हो, पढ़ाई का खर्चा उठाना हो या घर में माँ के लिए कुछ खरीदना हो। अपनी कमाई से किया गया हर छोटा काम उसे अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें हुनर दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और मैं हर गर्ल्स से यही कहना चाहूंगी कि भैया आप अपने पैरों जरूर अपने पैरों पर खड़े होइए आप, क्योंकि कल को आपको ना किसी के आगे अपनी हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 2 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। अगर सोचिए सामने वाले ने आपको मना कर दिया तो उस टाइम क्या बीतती है? उस टाइम दिमाग में यही आता है कि काश मैंने कुछ कर ली होती, ताकि मैं मतलब देखिए फैसले की बात नहीं है, आप अपनी मर्जी की चीजें खुद तो खरीद सकते हैं ना, इतनी आत्मा को तसल्ली तो आप खुद दे सकते हैं कि उससे ही खाना खुशी।
6: और आजकल देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो आप उसको और इम्प्रूव कीजिए, एनहेंस कीजिए। जैसे आप अगर अच्छा मेहंदी लगाती हैं तो आप एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हैं। आप अगर अच्छा डिजाइन के ड्रेस बनाते हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकती हैं, अच्छे सूट डिजाइनिंग के आप बना सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है रीना।
5: ड्रेसेस वाले फैशन में तो बहुत
6: है ना। और देखो आजकल हम नॉर्मल भी ड्रेसेस बनवाते हैं, शलवार सूट बनवाते हैं, तो उसके लिए भी हमें आई रिमेम्बर 300 रुपीज जाते हैं ना, और ज्यादा ही देते हैं।
5: सिंपल सूट की महंगाई बढ़ चुकी है।
6: सिंपल सूट की अगर हम नॉर्मल बनवाते हैं तो 300 रुपए जाते ही है।
5: 300 नहीं जाते यार, पहले जाते थे वो, अब तो 500 के समथिंग है।
6: 500 सिंपल सूट की?
5: अच्छा,
6: जब मैंने सिलवाया था तो 300 लिए थे मुझसे, नॉर्मली बनवाया था।
5: हाँ, जो पहले के टाइम था वो मैं भी जब बनवाती थी, लेकिन अब तो रेडीमेड आ चुका है हर चीज।
6: हाँ,
5: रेडीमेड ही खरीद लेते हैं।
6: हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसको इम्प्रूव करो एंड घर बैठा पैसे कमाओ। आजकल तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया आपके पास है। आप अगर कोई भी चीज अच्छा, आपके अंदर कोई स्किल है, आप जो कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो आप वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल सकते हैं। उससे भी जब आपकी रिच बढ़ेगी, लोग देखेंगे, तो आपका घर बैठे काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। चाहे आप अच्छा कुकिंग करती हूँ। वैसे रीना, कुकिंग की बात अभी आई है तो आप बताओ, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो?
5: कुछ भी, एवरीथिंग।
6: कुछ भी बना लेते हो? अरे वाह। नहीं, एक अपना फेवरेट जो आपको पसंद हो और आप सोचती हो कि अगर मेरे घर गेस्ट आए तो मैं ये अपना फेवरेट बनाकर खिलाऊंगी, जो हेल्दी भी है और जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है।
5: देखो, अगर मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है छोले चावल, दाल चावल।
6: अरे वाह, क्या बात है।
5: मतलब ये ओल्ड टाइम भी कहेगा ना मुझे कि तुम खा लो, खा सकती हूँ। मेरा इतना फेवरेट है ये, बहुत ज्यादा है।
6: ओके, और मुझे को राजमा चावल बहुत पसंद है।
5: राजमा चावल मेरे पहले थे, लेकिन अब मुझे छोले बहुत पसंद आने लगे।
6: मुझे राजमा पसंद है। चलो, अपनी बातें तो हम करते रहते हैं, है ना। हाँ। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले घर वालों के लिए कमाना। जब बेटी अपनी पहली कमाई से माँ के हाथ में पैसे रखती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, उसमें उसकी पूरी मेहनत छिपी होती है। ऑफिस की थकान, आने जाने की परेशानी, काम का प्रेशर, इन सब के बावजूद जब वही लड़की घर की जरूरत में अपना योगदान देती है तो परिवार को एक अलग ही तरह का सहारा मिलता है। आज बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की दवाइयों से लेकर घर के छोटे बड़े खर्च तक खर्च रखने में मदद कर रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, उन्हें करना ही है, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती हुई देखना चाहती हैं। बेटी जब परिवार का सहारा बनती है ना, तो पूरा घर थोड़ा और मजबूत हो जाता है। क्यों रीना?
5: ये तो तुमने सही कहा है, घर मजबूत हो जाता है और सभी फैमिली मेंबर एक साथ होकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम अब बात करने वाले हैं, पहले एक यार गाना सुन लेते हैं, मुझे ये लगता है।
6: चलो, लगता नहीं है, सुन लेना चाहिए। हमारे जो लिसनर्स है ना, वो भी इंतजार कर रहे हैं। खुशी जी बातें तो बहुत अच्छी कर रही है, रीना भी, लेकिन एक गाना भी हो जाए तो फिर मजा आ जाता है। जैसे हम दाल बनाते हैं ना, और दाल के बाद उसमें ऊपर से तड़का लगाते हैं, तो वैसे ही हमारे शो में भी एक तड़का लगना चाहिए गाने का।
5: जी बिल्कुल, चलिए हम आपको बहुत गाना सुनवाएंगे।

0: श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा गाना सुना है और ये प्रोग्राम भी बेटियों के लिए है, तो बेटियों के लिए गाना प्ले किया था, बढ़ती रहो आगे तुम। और लड़कियों की पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने से मत जोड़िए, पढ़ाई लड़की को सोचने की आजादी देती है, सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता देती है और अपनी जिंदगी के फैसले लेने में कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, पढ़ाई के बाद नौकरी मिले तो आर्थिक आजादी भी मिल जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से नौकरी नाम भी हो, तभी भी शिक्षित लड़की अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार में फैसलों और अपने भविष्य से ज्यादा समझदारी से संभाल सकती है। इसीलिए बेटी को पढ़ाना सिर्फ उसकी जिंदगी में निवेश नहीं है, ये आने वाली पूरी पीढ़ी में निवेश है। लड़की होकर इतना काम, ये बहुत क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है। आज भी कभी कभी किसी लड़की को सुनने को मिलता है, इतना काम क्यों करती हो? लेकिन शायद सवाल ये होना चाहिए, इतना कुछ करने के बावजूद तुमने खुद को कैसे संभाला? लड़कियां पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, घर के काम करती है, परिवार को समय देती है और कई बार अपने सपनों को भी थोड़ा पीछे रख देती है। अब समय आ गया कि लड़की के काम को सवाल से नहीं, सम्मान से देखना चाहिए। वो नौकरी करे या अपना बिजनेस शुरू करे, घर संभाले या करियर बनाए, उनका फैसला उसकी काबिलियत और उसकी पसंद के आधार पर होना चाहिए।
1: अपनी जरूरतें खुद पूरी करना, ये भी मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आर्थिक आजादी का मतलब ये नहीं है कि लड़की घर से अलग हो जाए, इसका मतलब है कि अगर उसे अपने लिए कोई जरूरी चीज चाहिए तो वो उसे अपनी मेहनत से पूरा करने की क्षमता रखती है। आज कई लड़कियां अपनी सैलरी से मोबाइल का रिचार्ज कराने से लेकर घर का राशन तक खरीदती हैं। कोई अपनी छोटी बहन की फीस में मदद करती है, कोई माता पिता के लिए दवाई ला रही है और कोई अपने भविष्य के लिए पैसा बचा रही है। ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियों से आत्मनिर्भरता बनती है। बेटी और बेटा बराबर है ना, सब बोलते हैं ना कि आजकल तो बेटा बेटी दोनों बराबर है। अगर बेटा पढ़कर नौकरी करता है और घर के खर्च में मदद करता है तो हमें गर्व होता है ना, फिर बेटी ऐसा करे तो गर्व क्यों ना हो। आज की बेटियां साबित कर रही हैं कि जिम्मेदारियां उठाने के लिए सिर्फ बेटा होना जरूरी नहीं है, बेटी भी पढ़ सकती है, कमा सकती है और परिवार के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती है। बराबरी का मतलब बेटा और बेटी बिल्कुल एक जैसे हों, ऐसा नहीं। बराबरी का मतलब है दोनों को समान मौके मिले और दोनों की मेहनत की समान इज्जत हो। इक्वल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है रीना।
0: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा है, बेटा हो या बेटी बराबर होते हैं, लेकिन कई घरों में आज भी सिर्फ बेटे को बोलते हैं भैया वाह कमा के दे रहा है, तो बड़े गर्व की बात। और जब बेटी कमाती है तो खुशी क्यों नहीं होती है? मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी खुशी उसके लिए आप रखेंगे ना, उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। तो बराबर सिर्फ कहने से नहीं होता है, बराबर मानिए तब जाकर बराबरी कहा जाएगा। नौकरी के पीछे की मेहनत, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि वाह तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तू तो पढ़ लिख कर कमा रही है, मतलब ऐसी किस्मत हमारी भी हो जाती, लेकिन कोई ये नहीं पूछता उसके पीछे की कितनी मेहनत करी होगी उसने। किसी लड़की को ऑफिस में बैठकर काम करते देखकर लगता है उसकी जिंदगी कितनी आसान, लेकिन उसके सुबह से पूछिए, समय पर उठना, घर देखना, तैयार होना, रास्ते का ट्रैफिक, ऑफिस का काम, डेडलाइंस और फिर घर लौटकर परिवार को समय देना, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं होता। इसीलिए जब कोई लड़की अपनी नौकरी को लेकर मेहनत करती है तो सिर्फ उसकी सैलरी मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसका समय देखिए और उसके पीछे की जिम्मेदारियां देखिए। हर वर्किंग गर्ल्स की कहानी के पीछे एक अलग स्ट्रगल होती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं पैदा होते उसकी जॉब नहीं लग जाती है, उसके पीछे मेहनत होता है। जैसे हम चलने के लिए परिश्रम करते हैं, वैसे ही जॉब के लिए भी हमें बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं।
1: एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे आरजी की जॉब कितनी इजी होती है।
0: हाँ, करेक्ट,
1: कि बस आकर बातें करकर और गाने चलाकर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे की तैयारियां, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, नेक्स्ट हमारी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम हमेशा हैप्पीनेस के साथ शो को प्रेजेंट करते हैं.
0: कभी हमें मतलब मेरे को 104 फीवर था तभी भी हमारा गला खराब था. इनफेक्ट तुम्हारा भी गला कितना खराब था, फिर भी जब भी देखते थे ना एकदम खांसी आने वाली होती है. फेडर ऊपर करते हैं,
1: नीचे करते थे जैसे हमें
0: फेडर एकदम नीचे करते हैं,
1: हाँ डाउन करते थे ताकि हमारी खांसी, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी ऑडियंस तक ना पहुंचे. हम चाहते हैं कि हमारे सभी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो हैप्पी रहें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है. तो अगर हम भी प्रॉब्लम लेकर बैठ जाएंगे तो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी सही नहीं होंगी. तो हमारा काम होता है कि खुद की लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों लेकिन सामने वाले को हम खुशियां दें.
0: वही असली बाजीगर कहलाता है.
1: वही असली बाजीगर जी, वो कहते हैं ना
0: मारी छोरी किसी छोर होते कम
1: कम थोड़ी है. हाँ.
0: और हमारी अभी टीम इंडिया जो लड़कियों की टीम है धमाल मचा रही है भैया, बहुत ज्यादा धमाल मचा रही है. मतलब मैच कहते एक टाइम ये कहा जाता था खुशी, अरे यार लड़कियों के मैच कौन देखेगा.
1: हाँ.
0: मैं तो नहीं देखने वाला हूँ.
1: हाँ.
0: अच्छा तू देखने वाली है, तू देखने वाला, ये क्वेश्चन आता
1: हाँ.
0: था. और जब लड़कियां जीत गई तो आज करोड़ों आबादी और देशवासियों का लड़कियों की तरफ जो है उनके गेम की तरफ देखने के लिए भैया ने भी पहले टिकट बुक करेंगे हम.
1: हाँ, अब इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है
0: क्योंकि उनसे पहले प्रूफ मांगा जा कि तुम वाकई में कर सकती हो या नहीं कर सकती हो. अगर तुम कर सकती हो तभी तुम इसके काबिलियत हो, अदरवाइज नहीं. तो उन्होंने प्रूफ भी दिया.
1: उनके दिलों पर राज कर रहे हैं, वो दिलों पर राज कर रहे हैं, करोड़ों दिलों पर राज कर रही है हमारी इंडियन क्रिकेट वुमेन.
0: जी बिल्कुल सही कहा तुमने. अब हम माँ बाप का सिर ऊंचा करना. हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटी खुश रहे और अपने पैरों पर खड़ी हो. जब बेटी पढ़ाई पूरी करके अपने दम पर नौकरी हासिल करती है तो पहली सैलरी पाती है और फिर माता पिता के लिए कुछ करती है तो उसे खुशी को शब्द में बताना मुश्किल है. कई बेटी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है और उनके माता पिता गर्व करते हैं, ये हमारी बेटी है. शायद इसे बड़ी उपलब्धि किसी बेटी के लिए कुछ नहीं हो सकती.
1: बिल्कुल, जब हमारे प्राउड से हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, जब हम अच्छा करते हैं तो उससे बड़ा और क्या प्राउड मोमेंट हो सकता है, बताओ हमें रीना.
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने और मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं.
1: मम्मी पापा ने हमें इतना स्ट्रगल करके पढ़ाया है लाइफ में, इतनी मेहनत करके, और जब हम सफल होते हैं तो वो भी खुश होते ही हैं. अब हम बात करने वाले हैं रीना, लड़कियों को सपोर्ट चाहिए. किसी लड़की के सक्सेस होने के पीछे उसकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन कई बार परिवार का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है. जल्दी ऑफिस जाने देना, देर से आने पर समझना, घर के काम में हाथ बटाना या बस इतना कहना तुम कर सकती हो, ये बात लड़की को बहुत ताकत देती है. हर लड़की को रास्ते में किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसकी काबिलियत पर भरोसा करे. इसलिए बेटियों को सिर्फ सलाह मत दीजिए, उनके सपनों के रास्ते में उनका साथ भी दीजिए, उनके साथ चलिए. और कहते हैं ना कि बेटियों को जब आप हिम्मत देते हैं ना तो वो आसमान छूने की ताकत रखती है.
0: अपने कपड़े, मोबाइल, ट्रैवल, पढ़ाई, छोटी जरूरतें जब वो अपने मेहनत की कमाई की पूरी करती है तो उसके अंदर का एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसे बड़े फैसले लेने में हिम्मत देता है. आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती, उसकी शुरुआत अक्सर पहली कमाई और अपने छोटे खर्चे खुद उठाने से होती है. और एक बात और भी हम कहते हैं ना कि ये घर का काम है सिर्फ लड़कियां ही करेगी. क्यों? घर का काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, हर किसी को मिलजुल कर करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो. सोचिए कल को लड़का कहीं जाएगा और जब उसको कुछ आएगा नहीं तो कैसे अपने लिए कुछ कर पाएगा. फिर तो वही है, बाहर से ऑर्डर करो, बाहर का खाना खाओ और फिर बीमार पड़ो. लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम कनेक्ट होते हैं श्रोता और करेंगे क्या ढेर सारी बातें.

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और हम बात कर रहे थे घर का काम सिर्फ लड़की का नहीं होता, अगर महिला नौकरी करती है तो घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी क्यों? ऑफिस में काम करने के बाद जब महिला घर आती है उससे घर के सारे काम करने की उम्मीद करना सही नहीं है। घर परिवार का है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की होनी चाहिए। पति, भाई, पिता या बच्चे, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम कर सकता है ताकि उसको अंदर से खुशी भी होगी। जब परिवार मिलकर जिम्मेदारी उठाता है तो महिला के लिए करियर और फैमिली दोनों में संभलना आसान हो जाता है। क्यों सही कहा ना खुशी हमने?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब एक गर्ल्स घर आती है ऑफिस से थक हार कर और जब उसको फैमिली सपोर्ट करती है, छोटे छोटे काम सब मिलकर करते हैं, तो उससे फैमिली संभालना ना आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजी हो जाती है सारी चीजें। अब बात करते हैं बेटियां परिवार की ताकत है। बेटियों को अक्सर घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन आज की बेटी सिर्फ

कि हर दिन तारीफ ना होती लेकिन उसकी वजह से कई घरों में उम्मीद बनती रहती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई बेटी है, बहन, पत्नी या माँ है जो अपने दम पर आगे बढ़ रही है, तो आज उसे एक बार जरूर कहिए, हमें तुम पर गर्व है। क्योंकि आत्मनिर्भरता, महिला सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वो अपने आस पास की कई जिंदगियां बदलने की ताकत रखती है। और श्रोताओं, हम लेते हैं इसी के साथ जाने की इजाजत, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, और यूं ही अपना प्यार हमारे रेडियो के लिए बरसाते रहिए और हमारा रेडियो सुनते रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आपका अपना पसंदीदा शो लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। शो का नाम है हेलो फरमाइश और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:07। आप भी इस खूबसूरत से शो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड इस सफर को सुहाना बना सकते हैं। दोस्तों, आज फिर जुड़ते हैं दिल से दिल तक एंड इस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन में बातचीत भी करेंगे शो में और आपका पसंदीदा गीत भी आपको सुनवाएंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए, जल्दी से हमें कॉल लगाइएगा। अगले 2 घंटे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं और इस शो को बनाएंगे स्पेशल म्यूजिकल आप सभी की बातों के साथ। तो देर किस बात की है, आप भी अपना फोन उठाइए और जल्दी से मुझे कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनवाती हूँ यहाँ पर, तब तक के लिए आप कहीं मजाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए, रेडियो बजाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिए और सुनिएगा ये

0: शानदार से गाना।
1: अरे मेरा फोन है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और ये फरमाइशी शो जहां पर आप मुझे कॉल के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी पसंद का गीत यहां पर सुन सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी अपने खास को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शोक नाम है हेलो फरमाइश। और एफएम मुरादाबाद से दिल लगाने की एक ही सजा है, वो सजा ये है कि आपको वीक में एक बार तो कॉल लगाना होगा एवरीवन, अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ट्रैक यहाँ पर प्ले हो। बहुत प्यारी सी सजा है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैडम जी।
0: हाँ जी सर, कहाँ व्यस्त हो गए हैं आप फोन लगाकर?
1: थैंक यू मैडम, जरा सा मैं इधर खोया था।
0: किधर खो गए थे आप बताइएगा।
1: यस मैडम जी, वो भैसा इधर जा रहे थे तो मैं उनके इधर मेरा थोड़ा ध्यान लग गया था, जैसा कुछ भी नहीं।
0: जी, क्या नाम है आपको बताइएगा।
1: जी मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप मोहन जी?
1: बहुत बढ़िया है, खेत में बैठे थे, हमारे भैंसा चल रहे थे तो गाने सुन रहे थे, लगा रहा बोला। 15 दिन हो गए मैडम जी, 15 दिन के बाद फोन लगा रहे, आप बीच में नहीं आए थे।
0: हाँ जी बताइएगा, कैसे चल रहे हैं आपके यहाँ पर गणेश उत्सव?
1: बहुत बहुत बहुत बहुत एकदम एकदम, ऐसा पूछो मत कि बहुत अच्छे सा हाल है, एकदम कोई टेंशन नहीं। हमारे गणपति बापा आए तो अभी शाम को जाएंगे, आरती शाम की 8 बजे आरती होती है, सुबह 8 बजे होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मेहमान हमारे घर को आए तो अच्छा लग रहा है जरा।
0: जी जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: मोहम्मद रफी की गाय एक गीत है, धर्मेंद्र के ऊपर चित्र गीत हुआ है
0: जी।
1: वो गीत के बोल है, मैं गलियों का राजा तुम महलों की रानी।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में एक खूबसूरत सा ट्रैक। और आप भी मुझे कॉल लगाइए बिना किसी देरी के, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, जल्दी से कॉल लगाइएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। और अभी समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:33। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं नाजिया सर बोल रही हूँ।
0: बताइएगा नाजिया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर का।
0: बताइएगा कैसे हो आप?
1: मैम हम अच्छे हैं, अपने बताएं मैम।
0: हाँ जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं नाजिया, बताइएगा। और परिवार में सब आपके यहाँ पर ठीक है?
1: जी मैम परिवार में सब लोग ठीक है, आप बताएं आपके घर कैसे हैं?
0: हाँ जी सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा नाजिया जी क्या करते हैं आप?
1: मैम हम वर्क का काम करते हैं।
0: अच्छा तो कितने घंटे वर्क करते हैं आप?
1: मैम सुबह बैठ जाते हैं 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: तो कंटिन्यू आप ये वर्क करते हैं या बीच में ब्रेक भी लेते हैं?
1: जी मैम 3 महीने छुट्टियां रहती हैं, उसके बीच में मतलब सिलाई वगैरह कर लेते हैं।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कैसे चल रहा है आपका वर्क?
1: मैम बहुत अच्छा चल रहा है इसमें।
0: चलिए अच्छी बात है, अच्छा ही चलना चाहिए। बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मैम सॉन्ग है दिल में किसी से लगाना।
0: अच्छा आपने तो आप तो लगा बैठी हैं फिर मुरादाबाद से।
1: जी मैं मुरादाबाद से दिल लगा रहती हूँ।
0: जी तो सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना नाजिया जी, शुक्रिया आपने कॉल किया। हाँ जी
1: मैम गाना मिल गया।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप एंजॉय कीजिएगा ट्रैक।
1: जी मैम
0: जी
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं नाजिया जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837869689 3789689689। ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और अपनी फरमाइश का गाना सुनते जाना है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और अभी आपने सुना केकी की आवाज में ये अमेजिंग सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी। मैडम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: राजा राम।
0: राजा राम जी, बताइएगा कहाँ से आप बात कर रहे हैं? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया हैं। आप
0: हाँ जी, हम भी ठीक हैं। बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मुझे गाना सुनना है जिगर पिक्चर का।
0: जी बताइएगा कौन सा ट्रैक आपको सुनना है?
1: मोहब्बत है खुशबू, मोहब्बत लहरा।
0: अच्छा, और ये गाना आप किनके साथ सुनना चाहते हैं?
1: हम परिवार, बच्चों से हमारे और
0: ठीक है, आपके पूरे परिवार के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आप भी जल्दी से कॉल लगाइए हमें, बिल्कुल भी हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, बिना किसी देरी के कॉल लगाइए। हम कॉल रिसीव करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर और आपका फेवरेट गाना भी प्ले करेंगे, तो बिना किसी देरी के जल्दी कॉल लगाइए। आप नंबर मैं आपको फिर से बताती हूँ, 9837896896। ये है आपकी अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गानों का आनंद लीजिएगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और खूबसूरत गानों के बाद खुशी यहाँ पर हाजिर है। हमारे साथ ही कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं अभी कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं राइट नाउ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? आपको भी नमस्कार। नाम बताएगा सर अपना?
1: मैं नूर बात कर रहा हूँ करणपुर से।
0: ओहो, तभी हम बोले कि हमारे स्टूडियो में इतना नूर कहाँ से आया है। ये नूर जी बात कर रहे हैं, इसलिए नूर आया है। हाँ
1: नहीं मैम, एक साल बाद कॉल किया मैंने, इतना तो नहीं आना चाहिए जितना आप बोल रहे हैं।
0: लॉन्ग टाइम की बात जुड़े, इसीलिए तो आया है। या बताएगा आप कैसे हैं फैमिली में आपके यहाँ पर सब लोग?
1: मैम फैमिली में भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ।
0: ओके,
1: काम भी अच्छा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइएगा, आज काफी समय के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम एक सॉन्ग है मेरा दिल जिस दिल पर सीधा है।
0: ओके, और ये ट्रैक आप किनको डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: मैम ये बस मेरी होने वाली जो वाइफ है उन्हीं को डेडिकेट करना चाहते
0: हैं। अरे वाह, क्या बात है, मुझे लगा था कि लड़कियां ही शर्माती यहाँ पे, तो देखिए सर्विस शर्मा रहे हैं हौले हौले से। चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना। आपने कॉल किया उसके लिए शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी फर्स्ट सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए ना हमें फोन मिलाते रहिए, है ना। आलस मत कीजिएगा बिल्कुल भी।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey!

0: अगले कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप सर?
1: अच्छे हैं, चाय पी लो दीदी।
0: जी धन्यवाद सर, आप बताइएगा क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जय बजरंग रेडी चाय वाली बात कर रहा, चाय पी लो।
0: जी जी धन्यवाद सर, आपने हमें चाय के लिए कहा। वैसे चाय पीने की टाइमिंग भी हो ही रही है, और बताइएगा कैसे चल रहा है आपका चाय का कारोबार सर? आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बताएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: आज गाना
0: ठीक है, आपके दोस्तों के साथ साथियों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत और लौट कर हम आते हैं। तब तक एवरीवन आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हाँ जी हेलो, क्या हाल चाल है आपके? नाम बताइएगा अपना।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, आप कैसी हैं? वहाँ पर सभी कैसे?
0: ऑल गुड, बहुत अच्छे हैं सब लोग। बताइएगा अपना नाम।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निकट फातिमा आपसे बात कर रही हूँ दी।
0: जी बताइए निकट फातिमा जी, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या वजह है?
1: वाली बात नहीं है ना।
0: अच्छा
1: तो थी मैं।
0: ओके, अच्छा लगता है।
1: बात करने के लिए तो मेरे पीछे पीछे आ गई।
0: हाँ, जहाँ मासी होती है वहाँ पे तो दीदी के बच्चे आ ही जाते हैं।
1: भांजी तो ज्यादातर मासी से ही लगती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बताएगा निखत, क्या सुनेंगे आज आप?
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी राज थ्री मूवी का। और सॉन्ग है जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे।
0: अरे वाह, क्या बात है, आज तो गुनगुनाकर आपने बनाया किया है गाना। हाँ
1: पहली बार मन दादी मैं क्या गुनगुना के बताऊँ।
0: हाँ अच्छा किया आपने, और मुझे लगता है कि जब मन करता है ना तो वो चीज करनी चाहिए, है ना?
1: हाँ दी, हाँ बिल्कुल।
0: ठीक है निखिल, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: हाँ दी, मेरे साथ है।
0: हाँ बताइए।
1: मेरी सिस्टर नाइस फातिमा और भांजी सारा फातिमा और आयशा फातिमा और मेरी सिस्टर बैठी है सना और सोफिया।
0: ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं गाना। okay. एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू दी, बाय
0: बाय, टेक केयर एंड मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राजश्री से। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश
0: जी,
1: मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीर पुस्ता है, मोहम्मद इसरत आप साथ कर रहा हूँ
0: जी। बताएगा कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छा हो जाते हैं। मैम चाय का मौसम हो रहा है हमारे रामपुर में, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है मैम, काफी सुहाना मौसम है।
0: अच्छा, सुहाना से मौसम है, बिल्कुल चाय पीजिए आप और बताएगा क्या।
1: आप बताएंगे साथ में,
0: थैंक यू सर। बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम आज मूवी के नाम में बिच्छू गाने के बोले हैं, एक बार टक दे। मैम आज कह रहे फरमाइश में यार, तुम प्ले कर देना, कुछ सुनने वाले हैं
0: जी। बताएगा
1: मैम, सबसे पहले ये ग्राम बीवी पुरते हैं मकसूद भाई, स्वार्थ हैं बीजे राठौर, ग्राम खेड़ा टांडे से मोहम्मद कामिल साथ नापुरम।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गाना और इंजॉय करते हैं मिलकर सब ये ट्रैक। एंड दोस्तों आप ही कॉल लगाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Murababa 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी बिच्छू, और इस खूबसूरत गीत को गाया था हैरी आनंद एंड साथ में सुनिधि चौहान जी ने। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: फरमाइश, आई दी, तुम केम छो? मजा माँ, तुम केम छो? बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी? ओके, और बताइएगा क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा अफरोज जी, आपका नजला जुखाम खांसी कैसा है?
1: जी दी, अभी तो मतलब इतनी तबीयत सही नहीं हुई है मेरी, लेकिन हाँ बहुत तबीयत खराब हो गई थी।
0: पहले से बेटर फील कर रहे हैं ना?
1: हाँ जी, पहले से शुक्र है खुदा का।
0: जी बताइएगा, और सब खैरियत से हैं घर परिवार में आपकी?
1: हाँ जी, और तो सब ठीक है, आप बताओ आपकी फैमिली में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं। आज बताइएगा आप हमारे साथ जुड़े हो, क्या फरमाइश है?
1: दीदी आज मुझे सॉन्ग सुनना है, तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर लें।
0: वो तो हम करते हैं आपसे, और आप भी करते हो हमसे।
1: दीदी बहुत प्यार करते हैं आपसे तो।
0: हाँ जी, तभी देखो इतना स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं है, फिर भी आपने कॉल किया हमें।
1: हाँ जी, उस दिन मैं कॉल करने के लिए बोल रही थी सोमवार को, तो फिर मेरी तबियत ठीक नहीं थी, तो फिर मेरी सिस्टर ने कॉल की आपको।
0: जी हाँ बिल्कुल की थी उन्होंने, बातचीत हुई थी हमारी।
1: हाँ जी, आज मैंने सोचा मैं भी कॉल कर लूँ।
0: बहुत अच्छा किया, आप बताइएगा और आज क्या सुनना चाहते हो? यही प्यारा सा गाना ना?
1: हाँ जी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जी, मेरे दोस्त को बहुत पसंद है ये।
0: हाँ हाँ बताइए, कौन है आपके दोस्त जिनको ये गाना बहुत पसंद है?
1: दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा।
0: हाँ।
1: मेरी सिस्टर नजमा बरक्सा, रामपुर से शबनम भी।
0: ओके।
1: और खुशी भी है हमारे साथ में।
0: हाँ वो तो आपके साथ रहती है।
1: जी, और मैं एक शायर सुनाना चाहती हूँ।
0: जी इरशाद सुनाइएगा।
1: मगर तकलीफ में होती तो सजदों में दुआ करता, मगर तकलीफ में होती तो सजदों में दुआ करता, मेरे खातिर सनम रोता अगर वो हम सफर होता, मुझे अगर डर लगता हिफाजत वो किया करता, मुझे अगर डर लगता हिफाजत वो किया करता, मुझे आगोश में लेता अगर वो हम सफर होता, मुझे आगोश में लेता अगर वो हम सफर होता।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ थी आपकी।
1: अच्छा लगता है मुझे, रेडियो पे सुनाना बहुत पसंद है जी।
0: हाँ तभी तो हम भी आपकी शायरियाँ सुनते हैं।
1: जी अच्छा लगता है मुझे।
0: जी आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है?
1: जी बिल्कुल
0: जी। ओके सुनवाते हैं प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू, बाय,
0: मोस्ट वेलकम, बाय। तो चलिए अभी फन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:29।

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. मैं आपके साथ आपकी आरजे खुशी. और दोस्तों, शो का नाम आपको मालूम ही है, हेलो फरमाइश. एवरीवन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे कुछ लिसनर हैं जो कॉल लगा चुके हैं ऑलरेडी मंडे ट्यूसडे में, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप नेक्स्ट मंडे ही ट्राई करें, क्योंकि और श्रोताओं को भी मौका दीजिए. एक्चुअली बहुत सारे श्रोता हैं जो कॉल लगाना चाहते हैं, बट उनका कॉल लग नहीं पाता है. तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एवरीवन, आपको भी ये मौका मिलता है. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. अभी सुनिएगा एक और शानदार से गाना, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने सफर को खूबसूरत बनाते रहिए.

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब
1: की सुविधा
0: स्वस्थ सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड। कॉल करें 7060022।
2: जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी। और अभी आपने सुना ये ओल्ड गाना, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें एक सर ने की थी एंड वो बार बार कॉल करते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, पर पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया। चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: अंशुल सैन, ग्राम अकबरपुर, तहसील सुनौन, जिला बदीशा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: हम बढ़िया हैं, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या सुनना चाहते हो आज आप?
1: हम आपके मनपसंद का गाना सुना दो आप।
0: ठीक है, हम अपनी मनपसंद के गाना आपको सुनवाते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए फिर सुनते हैं गाना, बहुत ही प्यारा सा, मोहम्मद फैज की आवाज में, एंड उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगा।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी, और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक मिस्टर एंड मिसेस माही। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश, नमस्कार दीदी।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जी कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, ग्राम बिछिया जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसा मौसम है एमपी का?
1: जी बहुत अच्छा लगता है, सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम।
0: हमारा
1: बात करती
0: जी, आप कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: जी जी सुनते रहते हैं बिल्कुल दीदी।
0: ठीक है सर, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आज आपकी पसंद से कोई सा भी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, और हमारे मित्र लगातार आपका प्रोग्राम वो भी सुनते हैं, केसी सिंह राजपूत जी है और गैराज लोधी जी है, आज पान मंसूरी जी है।
0: ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं हम अपनी पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। और दोस्तों मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन।
2: सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी।

0: जीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने हमेशा बड़े विजन के साथ काम किया और सत्ता की चिंता किए बिना सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में श्रीमती सीतारमण ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और

0: नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निरागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उनहालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग HS1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। मोना को व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी को कांस्य पदक मिला। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read.
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यहाँ पर इवनिंग मस्ती शो में 5:11 और आर्जरीना भी आप सभी के साथ 2 घंटे के लिए कनेक्ट हो गई हैं। करेंगे ढेर सारी बातें, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ आज की तारीख यानी कि 26 सितंबर अगस्त के महीने में पहुंचा

हाँ जी देखिए, रुक तो हम जाएंगे आप सभी के साथ, लेकिन आपने भी रुकना पड़ेगा 2 घंटे के लिए, और रेडियो की जो सुई है ना वो बिल्कुल भी नहीं घुमानी पड़ेगी आपने। बस आराम से आप कनेक्ट रहिए, करेंगे ढेर सारी बातें, और अभी ऑन द वे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए। फिलहाल आज मुरादाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

कह रहा है दिल ओ जाना। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। आर्जरीना के साथ कनेक्ट है आप इवनिंग मस्ती शो में, और समय के भी राइट नाउ बात करूं तो 5:21 हो चुके हैं। और देखिए, जिंदगी में ना हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी को इस जिंदगी में ना मतलब हंसा नहीं सकते हैं। हंसाना बड़ा मुश्किल होता है, और जो आपने हंसा दिया ना किसी को, तो आपसे बड़ा कोई है ही नहीं इंसान सच में। और आप अभी ट्रैफिक में हैं, यानी कि ऑफिस से निकल गए हैं घर के लिए, तो चेहरे को ऐसे मायूस बनाकर मत निकलिए, थोड़ा सा स्माइल कीजिए और आराम से गाड़ी चलाइए, पेशेंस के साथ गाड़ी चलाइए। अगर गुस्से में हैं और हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाए, तो मैं कहती हूँ लगा लीजिए। मैं बोल रही हूँ इसलिए लगा लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये लगाना भी चाहिए। और देखिए, धूप बहुत ज़्यादा है तो इसका भी आपने ख्याल रखना है, और पानी की बोतल अपने साथ रखना है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं ना, जब हम घर रहते हैं तो इतनी जल्दी प्यास नहीं लगती है, जैसे हम बाहर निकलते हैं ट्रैफिक में सेकंडों के अंदर हमें प्यास लगने लग जाती है। तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, और ज़रूरतमंदों को भी पानी ज़रूर बांटें, क्योंकि देखिए पानी बांटना चाहिए, चाहे आप भले ही किसी को कुछ दे ना दे, लेकिन पानी की बोतल ज़रूर दे देना चाहिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी प्यास बुझ जाए। और आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए श्रोताओं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है।

0: कुछ राइट डाइव करूं लेफ्ट।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:30 हो चुके हैं और अब टेम्परेचर 1 पॉइंट घट चुका है, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस हो चुके हैं मुरादाबाद का टेम्परेचर। और आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, और समय 5:31। और अब ये कहा जा रहा है, बीच में ये कह दिया गया था ना कि अगर आप 2000 भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। अब ये फिर से ये कहा जा रहा है कि अगर आप 2000 किसी को पेमेंट करते हैं या उससे ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो आपके यानी कि चार्ज लगेगा आपका। और वो चार्ज अगर 2000 रुपये अगर आप करते हैं तो चार्ज लगेगा 0.4%। यानी कि अगर आप पूरा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अगर आप 2000 पेमेंट करते हैं तो 8 रुपये आपके कटेंगे, यानी कि 8 रुपये का चार्जेस लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेशन करा है, आप आराम से करिए और 4 × 2 × 4 कर दीजिए 8, और बाकी आप समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है, आप कैसे कैसे परसेंटेज आप निकालते हैं। लेकिन 2000 आप करते हैं तो 8 रुपये के चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा। यानी कि देखिए, हर बार देखिए महंगाई तो सर चढ़कर टांडव कर ही रही है, ऊपर से यूपीआई भी कर रहे हैं तो उसमें भी सांस नहीं ले सकते हैं, पैसे लगेंगे चाहे कुछ भी कर लीजिए। महंगाई बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। और देखिए, यूपीआई के बिना आज के अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत रेयरी होंगे जो ये बोलेंगे कि मेरे पास कैश है, अदरवाइज हर कोई बोलेगा कि ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, चाहे 10 रुपये करने हो, चाहे 5 रुपये करने हो, चाहे 1000 करने हो, चाहे 10000 करने हो, चाहे 15000 करने हो। इनफैक्ट 10000 यानी कि 2000 भी 3000 भी करने तो हम ऑनलाइन ही करते। रेलवे यानी कि ई रिक्शा में भी जाते हैं ना, तब भी हम कहते हैं कि यूपीआई पेमेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है। अब यही देखते सरकार ने सोचा कि भैया जब तुम पेमेंट करते हो यूपीआई से तो फ्री में तो कर नहीं सकते हो। अब सोचिए, पैसे भी हमारे फिर भी फ्री में लग रहे हो, और पैसे हमारे और ऊपर से चार्ज भी हमारे लगेंगे। 2000 भी पेमेंट करो, ऊपर से 8 रुपये और दो, मतलब भाई पता नहीं चल रहा कि फायदा किसको हो रहा है इसमें। आपको पता है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और आप में से बहुत से ऐसे होंगे भैया कि 2000 से दो प्लस ही मतलब आप पेमेंट करते होंगे किसी को भी, और बहुत से तो हम जैसे हम हैं 100-150 रुपये कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि 5000 करना पड़ता है, 2000 करना पड़ता है, तब क्या करेंगे। यानी कि आप जब भी पता लगेगा, जब करके देखेंगे और पैसे कटेंगे तब पता चलेगा कि वाकई में चार्जेस अब लग रहे हैं। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होंगे और करेंगे क्या ढेर सारी बातें।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है धुरंधर मूवी से। जो भैया ये मूवी ऐसी थी कि ब्लॉकबस्टर पर सुपर डुपर, और अभी साथ ही साथ दूसरी मूवी की बात करूं तो हनुमान अंश छाई हुई है भैया। 40वें दिन भी कमाल अपना धमाल ही मचाए जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब देखिए भैया मूवी के ऐसे बवंडर जो थिएटर से यानी कि लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, यानी कि खाटू श्याम के ऊपर, शाही बाबा के ऊपर, और भी बहुत से अब ऐसे मूवी बनवाई जाएंगी जिसको आप बड़े बुजुर्ग घर के सभी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद बोलेंगे कि अब भी दोस्तों के साथ जाने का टाइम नहीं, अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, फैमिली है, उनके साथ ये मूवी इंजॉय करेंगे हम तो, क्योंकि उनको भी दिखाएंगे और अच्छा लगेगा। फिलहाल आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 5:42 हो चुके हैं, और अब हम बात करने वाले हैं यानी कि T20 मैच के बारे में। कल यानी कि भैया दूसरा मैच था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि कल क्या हुआ है। यानी कि कल यानी कि सेकंड मैच भारत वर्सेस अफगानिस्तान, यानी कि पहले मुकाबले में भी इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था, और कल का जो यानी कि दूसरा सेकंड मैच हुआ है उसमें भी भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है, यानी कि 7 का आंकड़ा। अब ये देखेंगे कि थर्ड मैच जो होने वाला है उसमें क्या रहने वाला, ये 7 का आंकड़ा टूटेगा या फिर कम होएगा या फिर कुछ और ही बाजी पलटी जाएगी, वो तो थर्ड मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे आज की तारीख की, अगर मैं बात करूं तो आज है 16 सितंबर, और 16 सितंबर का स्पेशल डेज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि भैया देखिए रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाना है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। मैसेज है, मुझे लगता है कि शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज आता है, गुड इवनिंग रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम सब बहुत दिल से सुनते हैं, और गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप, लेकिन जो आपने फूल बरसाओ वाला गाना भेजा ना सर, मुझे लगता है कि ये गाना अभी नहीं, कुछ और आप बता सकते हैं, थोड़ा तड़क भड़क वाला गाना बताइए, हम जरूर आपको सुनवाएंगे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू जी, सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। अगले मैसेज की बात करूं तो दीपक जी कनेक्ट हो गए हैं गुड इवनिंग के साथ, और साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये प्रियंका हमारे साथ कनेक्ट होती है लाइन पार से, और इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा आपका शो लग रहा है, और मैंने कल का जो मैच है ना देखा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जैसा कि आपने बताया था भैया किसको किसको मैच देखना पसंद है, तो मैं मैसेज करती लेकिन कर नहीं पाई थी, एक्चुअली कुछ काम कर रही थी, लेकिन कल का जो मैच है वो मैंने मिस नहीं किया है फटाफट, यानी कि कल मम्मी बोल रही थी तुम्हें काम करना है, लेकिन मम्मी को बोल दिया कि आज मेरी छुट्टी करो, आप काम कर लो, और आज मैं मैच देखने वाली हूँ, तो मैंने मैच देखा और मुझे बहुत ही मजा आया। जब हमारी टीम इंडिया जीतती है तो खुशी का जो लेवल होता है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता है। बिल्कुल जी, ये तो सही कहा आपने, नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता है। फिलहाल बने रहिए, और कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करते रहेंगे ना, बस आपने रेडियो की सुई नहीं घुमानी है। अगर आप ऑन द वे हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट पहनिए, साथ ही साथ गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फोन से आपको इतनी दोस्ती, इतनी मोहब्बत, इतनी ज्यादा प्यार है, तो इस प्यार को घर जाकर बरसाइएगा, मोहब्बत दिखाइएगा फोन को, लेकिन अभी ट्रैफिक में मत दिखाइए, वरना ये प्यार थोड़ा भारी पड़ सकता है आपको, ठीक है जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

आय हाय, क्या बात है जी। हरियाणवी गाना सुनकर ना भैया अलग ही मजा आ जाता है ना। डांस करने का मन हो जाता है ना, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ काम कर रहे हो, चाहे किचन में हो। फिलहाल तो अभी चाय की बारी है, यानी कि चाय चल रही होंगी घरों में, है ना। क्योंकि शाम होते होते भैया हाथ बॉडी है ना काम करना बंद हो जाता है। अब जिनको चाय की तलब है, जिनको चाय की लत है, उनको इस टाइम चाय ना मिले ना, तो अगर उनसे पूछेंगे ना कोई काम करने के लिए, तो वो सीधा एक ही बात बोलेंगे, बॉडी साइलेंट हो चुका है, कहाँ हाथ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, कांपने लग गए हैं, मुझे चाय दो तभी मैं काम कर पाऊंगा, अदरवाइज कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी, ये सुनने को आता है। तो फिलहाल अभी चाय का ही टाइम चल रहा होगा हर घर में, और जो चाय पीते हैं भैया, चाय लवर है, चाहे गर्मी हो, कड़ाके की गर्मी हो, पसीने टपकते हो, लेकिन चाय नहीं छूटना चाहिए। चाय तो चाहिए ही भैया, चाय के बिना जिंदगी अधूरी है, ये कहा जाता है। फिलहाल जो चाय नहीं पीते वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि लेमन टी पी पीजिए, लेमन टी बहुत बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ समय की बात करूं तो 5:54 हो चुके हैं, इवनिंग मस्ती शो में आरजेडीना के साथ आप कनेक्ट हैं। और आज का यानी कि स्पेशल डेज की अगर मैं बात करूं तो विशेष और यानी ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल, यानी कि 26 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ओजोन परत के महत्व और इससे बचने की जरूरत के बारे में जागरूक किया जा सके। ओजोन परत हमारी धरती के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और ये इसका जो शुरुआत हुआ था 1987 में, इस दिन मोनोट्रियल यानी कि प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के इस्तेमाल को कम किया जा सके। अगर इसका जो कम किया जाएगा तभी पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि ओजोन परत सुरक्षित रहेगी तभी हमारी धरती भी सुरक्षित रहेगी। तो ये डेज इसलिए मनाया जाता है जो हानिकारक केमिकल ऑर्गन्स है उसको बचाने के लिए, ताकि धरती बची रहे और आप सुरक्षित रहे और आप शुद्ध हवा ले सके, इसलिए ओजोन डे आज मनाया जाता है। और इसी के साथ एक और गाना और फिर न्यूज़, है ना। रेडी होंगे आप सब सुनने के लिए? जी मुझे पता।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई पावर कमेटी में बदलाव की मांग को किया खारिज, कहा आरोप कल्पना पर आधारित। 100% टैरिफ के खतरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा सरकार की नीतियां फेल, पीएम मोदी पर ट्रंप के दबाव में होने का लगाया आरोप। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा महिला आरक्षण ठंडे बस्ते में।
1: मॉर्निंग टू यू नवीन एंड अ वेरी वार्म वेलकम।
2: पहले UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचे के तहत आने वाले लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300

0: नाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है.
1: And today is World Ozone Day. More in this report.
2: World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया. ना ना ना ना नारी नारी, लेकिन ना बिल्कुल नहीं कहना चाहिए जी. हाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ना क्यों नहीं लेना चाहिए. ना कभी कभी हमें बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम रिश्तों को बचाने के चक्कर में हमेशा हाँ करते रहते हैं, और कभी कभी जो काम हमें नहीं करने का मन करता है वो भी हम काम करने लग जाते हैं. फिलहाल समय की बात करूं तो देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:19 हो चुके हैं, और आज गणपति जी का चौथा दिन है, यानी कि चौथे दिन कपिला नाम से वो जाने जाते हैं.

आखिरकार ये नाम उनको उनका क्यों पड़ा? एक बार गण राजे शिकार खेलते हुए अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूम रहे थे। थकने पर वह अपनी सेना के साथ यानी कि महर्षि कपिला के आश्रम पहुंचे। वहां पर महर्षि कपिला के पास इंद्रदेव द्वारा दिया गया एक मतलब चिंतामणि रतन था। उस दिव्य रतन की शक्ति से ऋषि कपिला ने पल भर में राजा गणराज और उनकी पूरी विशाल सेना के लिए अत्यंत स्वादिष्ट और शाही भोजन का प्रबंध कर दिया। अब राजा गणराजे यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में लालच आ गया। ऐसा चमत्कारी रतन किसी ऋषि के पास नहीं बल्कि राजा के राजमहल में होना चाहिए। उनकी यानी कि महर्षि कपिला के वह रत्न मांगा लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। तब इस पर यानी कि बलशाली गणराज्य ने बलपूर्वक महर्षि के चिंतामणि रतन छीन लिया और अपना रतन छीन जाने के बाद दुखी होकर ऋषि कपिला ने भगवान गणेश जी को कठोर मतलब उनकी आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए। महर्षि की पुकार पर गणेश जी ने उनका खोया हुआ रत्न वापस दिलाया और भगवान गणेश के नाम यानी कि उन्हीं महर्षि कपिला के नाम पर उनको उनका नाम कपिला पड़ा। चलिए फिलहाल बने रहिए आरजे रीना के साथ। श्रोताओं कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। शानदार गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 6:19 हो चुके हैं, और साथ ही साथ सुबह की अगर वेदर की बात करूं ना भैया, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसा सिनेरियो है। यानी कि एकदम धूप कड़ाके की निकली हुई थी और एकदम झमाझम वाली बारिश, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि भगवान जी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि धूप निकाले हम या फिर बरसात या फिर बारिश होने दे, मतलब वो खुद आज कंफ्यूज हो गए थे। जैसे हम अपनी जिंदगी में कंफ्यूज रहते हैं ना, वैसे आज उनको भी कंफ्यूजन हो गई थी भैया कि बारिश है या फिर धूप निकलना है मुझे। लेकिन बाद में वो थोड़ा उनको क्लियरिटी मिली और इतनी कड़ाके वाली धूप निकाल दी भैया कि यही हमारा मुरादाबाद का टेम्परेचर यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ बहुत जगह बूंदाबांदी के साथ साथ आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी बताई गई है यानी कि 15 राज्यों में। अब देखिए, इस टाइम अगर बारिश हो रही है और खेतों में जो फसलें हैं, धान हैं, वो पकने के पूरी पूरी कगार पर है। बहुत जगह पर धाने कट गई हैं और बहुत जगह पर अभी धाने नहीं कटी है, यानी कि जिनकी फसल लेट बोई गई थी उनकी अभी फसल रहती है, और जिन्होंने भैया स्मार्ट काम दिखाया उनका स्मार्ट वाला काम भी हो गया है। तो ऐसे में यानी कि बिन इस टाइम बारिश नहीं आना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि फसलें फिर खराब हो जाएंगी, और ऐसे समय में ना बारिश जरूर आती है जब लगता है कि भैया यानी कि फसलें पूरी तरह से पक गई है, कटने के कगार पर है, तो इस टाइम बारिश तो भैया और भी जानबूझकर आती ही आती है। पता नहीं ऐसे चक्कर क्या है इनका, मतलब इनको भैया थोड़ा समझाना पड़ेगा, है ना, मुझे सूर्य भगवान को फोन करना पड़ेगा। फिलहाल 19 तारीख की क्या प्लानिंग है, आपकी तैयारियां चल रही होगी जोरों शोरों से ना। साथ ही साथ भैया क्योंकि राधा अष्टमी भी तो आने वाली है ना, गणेश उत्सव, गणेश जी तो पधारी चुके हैं घर में, साथ ही साथ राधा अष्टमी भी 19 तारीख को है। तो आप सभी को पहली एडवांस से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक और गाना सुनते हैं और फिर मिलेंगे हम आप सभी को, यहीं मिलने वाले और कहीं नहीं।

0: न्यू कर हीरो अंडा ना सर पर धरकर नाच ले, मना कौन जरूरत है।
1: अंगूरी हीरो अंडा का एक जूटा ले जा। अंगूरी, अंगूरी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 6:32 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 16 सितंबर, और 1.5 दिन की पूजा के बाद यानी कि गणपति पप्पा को विदाई कर दी गई है। बहुत से जगह खासकर मुंबई में यानी कि आज 1.5 दिन बाद उनकी विदाई कर दी गई है। बहुत से हैं अभी अपने घर में गणपति पप्पा जी को 10 दिन रखने वाले हैं और उनकी अच्छे सी खातिरदारी और पूजा करने वाले हैं। और देखिए, जब भगवान जी घर पर आते हैं ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी का फील होता है। और जिस पप्पा को हम लेकर आते हैं, देखिए आप सभी से बस एक ही विनम्र विनती करना चाहूंगी, आप बड़े चाव से बड़ी श्रद्धा के साथ आप उनको लेकर घर में आते हो तो विसर्जन वाले दिन बस यही कहना चाहेंगे कि आप उनको गंदे पानी में या फिर कहीं भी ऐसे ही आपने उनको विसर्जन नहीं कर देना है। आप विसर्जन करना चाहते हैं तो घर में ही एक बड़ा सा टब लीजिए, उसमें विसर्जन करिए और जो पानी बचता है वो गमलों में उस पानी को डाल दीजिए। क्योंकि जिस भगवान को देखिए हम 10 दिन घर रखते हैं, उसकी इतनी अच्छे से पूजा करते हैं और विसर्जन के टाइम उनको ऐसी फेंक देते भैया जैसे कि वो हमारी जिंदगी में हमारे घर कभी आए ही नहीं थे, तो वो पूजा पूजा नहीं लगती है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, भगवान है उनको भी दुख होता है, तो इसीलिए ऐसे विसर्जन हमें नहीं करनी है। अपने घर में बड़ा सा टब लीजिए, उनमें उनको विसर्जन करिए और वो पानी फिर अपने गमलों में डाल दीजिए, ठीक है? तभी आपकी अच्छी वाली श्रद्धा वाली पूजा है और जो पूजा का फल है आपको अवश्य मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आए हैं, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं और कड़क सवाल भी पूछने वाले हैं। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, गुड वाली इवनिंग है, वेरी गुड इवनिंग जी। अगले मैसेज की बात करूं तो हरियाणा वालों कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं। आरजे रीना जी बेस्ट, ओके जी, थैंक यू। अगले मैसेज की बात करूं तो करूला मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, शैयद शारिक अली जी कनेक्ट होते हैं। रीना जी आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं जी, आप बताइए। इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। और अगले मैसेज की बात करूं तो गुड वाली इवनिंग है रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे जी, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी और उम्मीद है कि आज का आपका भी दिन बहुत अच्छा गया होगा। जी बिल्कुल, हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप बहुत खूबसूरत और खुशी के साथ गुजर रही होगी आपकी लाइफ। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा हमें मैसेज भेजा है। और साथ ही साथ लेकिन सर आप अपना नाम भी बताया करिए प्लीज, नाम बताना बहुत जरूरी है, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। इनके नंबर की बात करूँ तो 6955 है। और आगे बढ़ते हैं जी, और आप सभी के लिए लेकर आएंगे कड़क सवाल।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोता। और इसी बीच आप सभी से पूछने का समय आ गया है, क्या कड़क सवाल। अब कड़क सवाल ये होने वाला है भैया, कड़क म्यूजिक पूछने वाले हैं। और सच में आप सभी का ये फेवरेट वाला गाना है, क्योंकि दिल की बातें हम सुन लेते हैं और जैसे ही आप इस गाने के म्यूजिक सुनेंगे ना भैया, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप मैसेज करें, हमें कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। प्यारी प्यारी मधुर आवाज है आपकी, तो आप भेजा करिए यार, कि मेरी आवाज के साथ साथ आपकी आवाज भी तो देश दुनिया तक पहुंचे ना। तो आप जरूरी नहीं कि मैसेज करें, हाथों को कष्ट दे। वैसे भी रात को 12 बजे 1 बजे तक कष्ट देते ही हैं चैटिंग करके, इसीलिए कष्ट नहीं देना है, सीधा वॉइस मैसेज भेजना है हमें। चलिए फिलहाल म्यूजिक प्ले करते हैं, आपने बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और बताना है कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले करने वाली हूँ गाने का क्या नाम है। साथ ही साथ सिंगर का नाम बताऊँ तो सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी की आवाज में ये गाना है।

0: चलिए जी, बस आपने सोचना है और हमें मैसेज करना है कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। नंबर है 9837896896। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

रखी है। फिलहाल तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि पानी पीना है जी, कुछ और नहीं पीना है, ठीक है जी। मुझे पता है कि आपका दिमाग कहीं और ही जा रहा होगा ना, लेकिन पानी पीना है, पानी, ओनली पानी। और साथ ही साथ जूस पी सकते हैं आप, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी हेल्थ के लिए। और आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:49 हो चुके हैं, यानी कि 6:49 हो चुके हैं। और आज का कड़क मैंने म्यूजिक प्ले किया भैया आप सभी के बीच, बहुत ही फैंटास्टिक वाला, और साथ ही साथ एक बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली न्यूज है ये कि बिहार में 50 लाख लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं। देखिए बिहार में बहुत अलग अलग जगह, कई कई जगहों पर इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई है ना कि तबाही मचा दिया है। और हर साल सुनने को मिलता है कि बिहार में भैया हम बहुत भीड़ आती है, यानी कि बाढ़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, घरों से बेघर हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं रहता उनके पास। फिलहाल सरकार उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, टाइम टू टाइम उनके पास खाना भी पहुंचाया जा रहा है, और जो आसपास के इलाके में हैं उनको सुरक्षित निकाला भी जा रहा है, ताकि वो सुरक्षित एक अच्छे स्थान पर जाए और वहाँ पर अभी रहे, क्योंकि बाढ़ के कारण, बाढ़ के चपेट में भैया बहुतों की जान जा चुकी है, बहुत सभी फंसे हुए हैं। और साथ ही साथ आज का कड़क म्यूजिक जो मैंने आपको प्ले किया है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना था और तभी आप आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए अब कि कन्फ्यूजन था ना आपको, लेकिन अगर आप दोबारा इसको सुनेंगे तो आपके जितनी भी कन्फ्यूजन था ना, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन एक बार और ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। सुनिए

आशा की आवाज में अपने गाना एंजॉय किया है। और साथ ही साथ अब बारी है आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते भैया कि किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि आज का जो म्यूजिक था ना, बहुत ही कड़क वाला म्यूजिक आप सभी के बीच मैंने प्ले किया है, सुनिए एक बार और।

चलिए जी, अब देखना ये है कि किनका हमारे पास सबसे पहले राइट मैसेज आता है। अगर मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना मैम, गज वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास गाने सुना रही हो आप। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी। कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। आय हाय, राइट आंसर भैया पहुंचा दिया है इन्होंने। और कहती है कि गर्मा गर्म चाय पी लीजिए मैडम, जीभ जल जाएगी जी मेरी, गर्मा गर्म चाय पीऊंगी तो मैं चाय को थोड़ा ठंडी करके पीने में अलग ही मजा आता है, कभी पी कर देखिएगा, आनंद की अनुभूति होगी आपको। एक हमारे पास ना वॉइस मैसेज आते हैं, तो उसको भी सुनना जरूरी पैंदा है।

फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं भी थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया है और ये मैसेज आता है हमारे पास और विक्की सागर जी कहते हैं कि देखिए मैडम जी, जब भी हम हमारे आसपास से गाड़ियां गुजरती है ना और देखते हैं कि आपका शो चल रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है कि आपका शो सुनते हैं और अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी। और इन्होंने बताया है, इन्होंने भी राइट आंसर पहुंचा दिया है भैया, इश्क कमीना यानी कि गाना इन्होंने राइट आंसर पहुंचा दिया हमारे पास। फिलहाल बढ़ेंगे आगे अगले मैसेज की तरफ।

0: फिलहाल जिनका हमारे पास वॉइस मैसेज आता है ना, वो सुनवाते हैं आपको कि इन्होंने अपनी आवाज में क्या भेजा है।
1: कर दे मुश्किल इश्क कमीना,
0: कर दे मुश्किल इश्क कमीना। क्या बात है जी, राइट आंसर आ गया। चलिए, पर गाना ये है, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी, गुड वाली इवनिंग है। गुड इवनिंग सर, और हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी, और इनका कहने की मैडम जी ओल्ड मूवी का सवाल पूछा करो आप जी, तभी हम बता पाएंगे। अच्छा जी, चलिए आपको बातों को हम ध्यान रखते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो भैया हमारे पास अगला मैसेज आता है, ये विवेक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका भी राइट आंसर आया है, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। अगले मैसेज की बात करूं तो शिवानी जी कनेक्ट होती हैं, ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है। गुड इवनिंग जी,
2: कर दे मुश्किल जीना
0: इश्क। अब इसी के साथ में लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे, बाय बाय। सर आज का आंसर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप कल समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने म्यूजिक प्ले किया था, गाने का नाम है कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, और ये ललिता जी आज के विनर बन चुकी हैं, और ये गाना मैं प्ले कर रही हूँ, सुनिए ध्यान से।

0: रखी गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में

0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है। आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस
2: भैया जी बहुत
0: है। लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी

0: रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
1: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
0: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
1: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुँचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
0: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
1: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो ये भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
0: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
0: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
1: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
0: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
1: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों,
0: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
1: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
0: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गाँव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
0: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
1: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा,
0: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करें, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें, और कैसे ब्रांडिंग करें, और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाएं।
1: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
0: बिल्कुल, कल्पना कीजिए, किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे, तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
0: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी,
0: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा,
1: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा,
1: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
0: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
1: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है, तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
0: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए,
1: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे, तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे आनंद,
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
1: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर किया 25,000 रूपए प्रतिमाह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
1: 25,000 रुपीस पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे। दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष के सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर कल से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कल श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
2: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा। 7 अक्टूबर तक के वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत कल सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान देश भर में कल से शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की पहचान पूरे देश में बदली है।
5: आज बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी, लगातार ये सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में इंडियन

0: मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है। श्री योगी ने कहा कि आज हम नए गोरखपुर, नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
1: एक नए गोरखपुर का, एक नए यूपी का, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, गोरखपुर में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। एम्स गोरखपुर में आ गया। गोरखपुर में आज 2 मेडिकल कॉलेज, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के कुल 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी एवं सहायक अध्यापक शहरी के पदों के लिए विज्ञापन के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 2,607 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत लखनऊ के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण आज से 12 अक्टूबर तक प्लेटफार्म 1 से 3 तक ब्लॉक लेगा। इस दौरान एयर कॉन्कोर्स का काम पूरा किया जाएगा। इस कारण 85 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रति माह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त, वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे FM मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
6: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
5: थैंक यू सर,
6: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
5: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
6: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
5: क्या बात है।
6: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
5: जी जी प्लीज।
6: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
5: ब्यूटीफुल।
6: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
5: वाओ।
6: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
5: क्या बात है।
6: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या।
5: जी।
6: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
5: हाँ जी।
6: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
5: हाँ जी।
6: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
5: Alright.
6: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
5: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
6: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ गुट्टी पिलाने लगते हैं।
5: जी जी।
6: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
5: जी
6: हैं।
5: जी जी जी।
6: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
5: जी जी जी।
6: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
5: बट
6: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
5: ओके। सो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
6: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
5: हाँ जी,
6: तो
5: हाँ
6: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
5: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक।
6: Sort of, it's a different thing.
5: All right.
6: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है,
5: okay,
6: जो
5: okay.
6: कम वजन के बच्चे होते हैं।
5: जी, हाँ जी,
6: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
5: जी।
6: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
5: okay.
6: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है,
5: तो जी जी।
6: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
5: ओके।
6: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
5: ओके। डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
6: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
5: हैं, हाँ जी,
6: उनको नहीं पता
5: नहीं
6: होता
5: पता
6: है,
5: होता
6: क्या
5: है।
6: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
5: जी।
6: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
5: Okay.
6: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
5: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
6: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: है ना,
5: बिल्कुल।
6: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
5: मतलब कोई रीजन कोई कारण मतलब जिसे पता,
6: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
6: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
5: ठीक है, बहुत
6: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
5: जी,
6: है
5: जी, जी,
6: ठीक है, तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25 टू 27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं, अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
5: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
6: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
5: जी,
6: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
5: हाँ जी, हाँ जी, हाँ,
6: ठीक है,
5: हाँ,
6: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
5: हाँ जी, हाँ जी,
6: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
5: छोटे बच्चों के लिए जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
6: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
6: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर
5: जी।
6: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
5: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते?
6: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
5: हाँ जी।
6: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
5: हाँ जी हाँ,
6: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेलियां तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, बच्चे की केयर करते रहे, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
5: बिल्कुल सही कहा,
6: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
5: थैंक यू। क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। बच्चों

0: के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हवा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना की लागत 244,87,00,000 रुपए होगी।
3: नया ब्लॉक जीडीपी अस्पताल के मौजूदा परिसर में ही बनाया जाएगा। 7 मंजिला इमारत में 77 क्रिटिकल केयर बेड, 9 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 38 ओपीडी कमरे होंगे। ब्लॉक में 24 घंटे आपातकालीन सेवा के साथ सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और प्रयोगशाला जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चौथे चरण के तहत किया जाएगा और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नए ब्लॉक के शुरू होने से गंभीर मरीजों को 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा, जांच, सर्जरी और गहन चिकित्सा की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी दिल्ली में गंभीर दुर्घटनाओं और आपातकालीन मामलों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया। इसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई मोबिलिटी के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली के बाद अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। ये सूचकांक का दूसरा संस्करण है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करता है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 प्रमुख विषयों, परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान तथा नवाचार स्थिति के अनुसार 16 संकेतकों पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 100 अंकों में मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य निर्णय लेने में सहायता करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को और उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। ऐसा अनुमान है कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री में 40% हिस्सा इलेक्ट्रिक कार का होगा। की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार कल सेवा समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार 1 माह तक सेवा संकल्प अभियान भी चलाएगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
6: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कर्तव्य पथ पर शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत 1,00,000 दिए जलाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की सेवा में निरंतर शक्ति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान भी किया।
7: हम सब मिल करके अपने घर पे, अपने आंगन में एक आशीर्वाद का दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जलाएं शाम को 6 से 7 के बीच 17 सितंबर को। मैं भी जलाऊंगी, आप भी जलाइए आशीर्वाद का दिया।
6: वहीं त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेगा रक्तदान शिविर होगा, जिसमें 2,500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अलीपुर स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन होगा और दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में मानवाधिकारों की रक्षा और शांति को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में मानवाधिकारों की रक्षा, संसदीय निगरानी और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में विधायिकाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली को देश की सोलर कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आयोजित सोलर वेंडर्स मीट में विक्रेता और हितधारकों से सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में करीब 2,30,000 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सुगम बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए अगले 6 महीनों में करीब 2,600 से 2,700 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के कौशल भवन में वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। इस दल में कुल 70 कुशल युवा प्रतिभागी शामिल हैं, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल बनाता है। ये दल चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक होने वाली 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में 63 कौशल श्रेणियों में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ये प्रतियोगी विश्व मंच पर पहली बार 11 नए और उभरते कौशल क्षेत्रों में हिस्सा लेगा, जिनमें ड्रोन तकनीक, विमान रखरखाव, सॉफ्टवेयर परीक्षण और दंत कृत्रिम अंग शामिल हैं। विदाई समारोह में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। दिल्ली यातायात पुलिस की उत्तरी रेंज ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 2,511 चालान जारी किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर 2,041, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 383 और वाहनों में रंगीन शीशों के इस्तेमाल पर 87 चालान जारी किए। अभियान का उद्देश्य यातायात अनुशासन बनाए रखना, मार्गों पर अवरोध रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज दिल्ली की स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जोनवार और वार्डवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कचरा संवेदनशील स्थानों की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरा पृथककरण और दिल्ली को बिन मुक्त बनाने पर बल दिया। आयुक्त ने पारंपरिक सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम कर मौजूदा स्तर के अधिकतम 20% तक लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। आज सभी 12 जोन में 46 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, 11 संपत्तियां सील की गई और 12 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आयोजित दो दिवसीय जल मंथन 2026 आज समाप्त हो गया। इस महामंथन में इसराइल, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस के बड़े तकनीकी जानकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आज वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के लिए फिनिशर मेडल का अनावरण किया। इस मैराथन का आयोजन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगा। दिल्ली के श्रम, रोजगार और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये मैराथन दिल्ली के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है जो देश और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है।
9: आप सबसे अपील है, आप सबका आह्वान है कि 18 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली हाफ मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आइए दिल्ली को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दोबारा से तैयार करने के संकल्प को पूरा करें।
2: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह की। दिल्ली कैबिनेट बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में दिल्ली शीर्ष पर। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: रात्रि के 8 बज चुके हैं।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर

0: हेलो जी, नमस्ते। कैसे हालचाल हैं? आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम आपसे बात करने आए हैं, इसलिए हमारा दिन खास है। और आपका खास इसलिए क्योंकि आप हमें सुन रहे हैं। इसी फालतू बात के साथ स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेरे यानी आनंद के साथ। और आज की इस बेहतरीन शाम में अजय भी हमारा साथ निभाएंगे, वो थोड़ा सा बिजी है। तब तक हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। अखिल जी, गणपति बप्पा
1: मोरिया,
0: आपके कुछ कहने से पहले मैंने जो है बोल दिया। हाँ, बोलो बोलो बोलो।
1: मैं ही कह रहा था, मैं जब भी बिजी रहता हूँ ना, मैं बस इसलिए बिजी रहता हूँ कि सुन तो मुझे भी, मैं भी जैसे ये सब लोग तुम्हारे फैन है, ऐसे मैं भी आना तुम्हारा फैन हूँ। मुझे
0: आजकल आप बातों को कैसे लपेटना है वो आप सीख गए हो, है ना?
1: मुझे अच्छा लगता है जब भी तुम बातें करते हो तो मुझे पहले
0: मोरिया, इससे अच्छा भाई कुछ नहीं हो रहा। अपन यहाँ पर जो है आपको गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं। सबसे पहले तो मेरी और आरजे अखिल भाई की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजकल आप लोग बहुत बिजी हैं गणपति में, आई नो। और इस टाइम पे आप हमें सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग होगा ऐसा जो अभी किसी के यहाँ जा रहे होंगे आज बप्पा के दर्शन करने, या फिर आप आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में प्रसाद हो और आप हमें सुन रहे हो और कह रहे हो गणपति बप्पा
1: मोरिया।
0: इतनी धीरे से बोलोगे तो कुछ ना होगा, गणपति भी भाग जाएंगे घर को कि यार मैं जा रहा हूँ भाई, ऐसे क्या कहना चाहिए उनका बर्थडे यार।
1: नहीं नहीं,
0: जोशीली आवाज में बोलो गणपति बप्पा
1: मोरिया,
0: मेरा कुछ नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। ये सुनो भाई, हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।
2: गणपति बप्पा
3: मोरिया।
0: गणपति बप्पा
1: मोरिया
0: मोरिया। तो आज जो है गणपति बप्पा का कौन सा दिन है, दूसरा तीसरा?
1: आज है तीसरा दिन।
0: पक्का?
1: यस।
0: कौन सी तारीख को आए थे बप्पा?
1: 14 तारीख को।
0: हाँ, सोच समझ के बोला है लेकिन पता चल गया है। चलिए गाइज, फिलहाल गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आप सुनते रहिए ऐसे ही आरजे आनंद और अखिल भाई को। अभी हम वापस आते हैं, एक काम करते हैं, पहले कुछ गाने बजाते हैं उसके बाद वापस आते हैं।
1: गाना बजाने से पहले एक शायरी।
0: हाँ प्लीज, अपनी शायरी।

0: रखें। मैं चाहूंगा गणेश चतुर्थी की बात हो रही है तो कुछ ऐसी अच्छी सी शायरी हो जाए।
1: जहां बप्पा का नाम हो वहां खुशियों की बात हो, जहां दिल में विश्वास हो वहां हर दिन खास हो, गणपति बप्पा साथ रहें हर कदम पर हमारे, तुम मुस्कुराते रहे जिंदगी के नजारे।
0: हैप्पी गणेश चतुर्थी।

0: इतने बढ़िया गाने सुन के तो मजा आ गया है। दिन बुधवार का है और आज गणेश भगवान का दिन है, और सच बताऊं तो इन 10 दिनों में इतनी अच्छी वाइब्स आ रही होती है, चारों तरफ से एकदम पॉजिटिविटी आती है, और कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी जब आती है तो बहुत सारी मन में खुशियां भी होती हैं, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात मोदक बड़े पसंद आते हैं आपको।
1: मुझे तो
0: लड्डू या मोदक,
1: मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है।
0: आप खुद भी तो वैसी हो ना यार, आपको तो जो खिला दो आप उसी में खुश हो। एंड एनीवेज, आपको पता है रिसेंटली मैं अभी एक शो होस्ट कर रहा था, आई डोंट नो आई रिमेम्बर, मुझे रियलाइज आई, ये चीज मुझे फील हुई, मुझे रियलाइज हो रही, तो मुझे लग रहा आपको बतानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी और मेरी बकवास सबको पसंद आ रही है। वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार आनंद जी जब आपके साथ ये अखिल जी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा इसीलिए तो लगता है क्योंकि वो मेरे साथ बोलते हैं, अकेले में बोलते हैं तो सबको लगता है। क्या हुआ, मतलब कहना क्या चाह रहा
1: है? हंसी नहीं आ रही थी मगर तुमने जो है ना,
0: लेकिन यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं लपेट सकता हूँ, क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना कि मैं इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ आपकी तरह। अच्छा अखिल भाई, शहर में अभी बड़ी नई नई चीजें हो रही हैं, जैसे आज मैं सुबह मैं बोल रहा था अपने मॉर्निंग शो पे कि मुरादाबाद की जो दाल है उसको सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन के अंतर्गत, और ये जो दाल है ये ग्रेटर नोएडा में एक जो है बहुत बड़ा एक शो वाला है यूपी का, उसके अंदर इस दाल को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, अब ये दाल जो है मतलब देश के लोग तो खाते ही हमारे ऑफकोर्स, और विदेशी लोग जो वहां पर आएंगे वो भी अब खाएंगे, तो इस दाल को एक नया मोड़ मिलने जा रहा है, मतलब एक नया इतिहास बनेगा मूंग की दाल को लेकर भी। जैसे पीतल के बर्तन अपने आप में बहुत पॉपुलर है, वैसे अब दाल भी एक हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी।
1: नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुरादाबादी दाल की अगर रही बात, तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक चीज देखी थी कि दुबई में एक बहुत ही एक बहुत आलीशान शादी हुई, और एक इंडियन फैमिली में ही शादी हुई थी, और जो मेन्यू में था तो वहाँ पे प्रॉपर मुरादाबादी दाल का उन्होंने एक
0: स्टॉल पूरा था, मतलब
1: एक काउंटर था। तो ऐसा नहीं है कि अपन हमारी मुरादाबादी दाल जो है अभी तक फेमस नहीं, बहुत ही दूर दूर तक इसका नाम जा चुका है,
0: मतलब बट वो ये ना कि जैसे दूर दूर तक नाम जा चुका है, लेकिन अब जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसमें एक नई पहचान मिलेगी, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है मुरादाबादी के लिए।
1: बहुत ही अलग बात
0: है ना, वो बात अलग है कि हम दोनों सिर्फ दाल खाते हैं बनाते नहीं है क्योंकि हमें आती भी नहीं है। अगर आप में से कोई जानता है तो हमें रेसिपी जरूर बताना, शायद हम कल ट्राई करें, बनगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो फिर खा लेंगे जाकर के बाहर,
1: बटर लेके आऊंगा।
0: और एक दाल से मुझे बड़ा अच्छा याद आ रहा है यार, मैं प्रमोट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे नाम का दाल वाला भाई भी है और वो आसपास में बैठता है कहीं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो अच्छी बनाते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि नाम मेरा है वहाँ। अब इस नाम से आप फ्री में मत लेने पहुंच जाना भाई, नहीं तो वो देगा भी नहीं आपको, कई लोग को याद आ गया होगा, आपको आया
1: वो ये कहेंगे बस आनंद दाल से खा लो, आनंद की दाल से खा लो।
0: दाल को आनंद से खाओ, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब दाल खा रहे हो तो आनंद तो आ जाएगा।
1: मैं तो तुम्हारा नाम लेके फ्री में खाऊंगा, कहूंगा भाई साहब
0: हमने आपका प्रचार किया था, ये रिकॉर्डिंग सुन लो। बहुत बढ़िया, लेकिन गाइज ये एक बहुत ही अच्छी बात है जोक सपाट से हटके कि चलो मुरादाबाद पीतल के साथ साथ अब मुरादाबाद का फूड जो मुरादाबाद की दाल है उसको भी एक अलग पहचान मिलने वाली है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है। और इसी बात पे एक अच्छा गाना बजाते हैं फिर, जब इतनी अच्छी बात है तो।
1: और जो दाल खा रहे हैं ना इस समय वो एक पत्ता एक्स्ट्रा और खा लेंगे इस गाने को सुनने।
0: नहीं आप भिजवा दो हमें, एक्स्ट्रा मत खाओ क्योंकि हमें भूख लगी है। एक काम करते हैं गाना बजाते हैं, बहुत खाने पीने की बातें हुई।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अरे अखिल भाई, आपको UPI कर दूं क्या 2000 रुपए?
1: अरे नहीं नहीं यार, मैंने अभी अभी सुना है कि 15 अक्टूबर के आसपास से ना
0: पैसे कट जाएंगे
1: भाई, चार लग जाएंगे। तुम अभी
0: 2000 रुपए नहीं दूं, देख लो 2000 रुपए की बात है। देखो गाइस,
1: ऐसा करो,
0: मतलब पैसे ठुकरा रहे हैं, कैश मत मांगना है।
1: 1999 देता हूं।
0: वाओ, 1900 भाई, सेल चल रही है क्या यहाँ कोई तुम्हारी? 1999
1: का डिस्काउंट दे दिया।
0: आप एक काम करो, 2999 मेरे में ट्रांसफर करो, मैं आपको अपना QR भेजता हूँ। अच्छा हाँ, मजे की बात यह है, जोक सपाट से हटके, UPI वाला फंडा चल क्या रहा है? बाय द वे,
1: UPI वाला फंडा क्या चल रहा है, ये इस पे इस समय बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है कि अब आपको ना कुछ चार्जेस हैं, मिनिमम 0.5 या 0.4 कुछ चार्जेस हैं जो आपको 2000 की ऊपर की ट्रांजेक्शन में देना पड़ेगा।
0: लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये ग्राहकों के लिए नहीं है, ये व्यापारियों के लिए है और बिजनेसमैन के लिए है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो UPI का टॉपिक बिल्कुल हॉट है, बहुत सिंपल सा समझा रहा हूँ। 2000 रुपए तक की कोई ट्रांजेक्शन पे आपको पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। 3000 रुपए की पेमेंट पर आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे। 50000 रुपए की पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 75000 या उससे ज्यादा की करते हैं तो उसपे 300 रुपए का आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। 2000 रुपए तक की पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी इस पे कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये सिर्फ जो व्यापारी हैं बड़े स्तर पे जो काम करते हैं, ये उनके लिए, उनके ऊपर जो है चार्ज लगाया जाएगा। अगर सपोज दैट कोई बड़ा दुकानदार है या कोई कारोबारी है, ये उनको पे करना है बेसिकली। अगर मैं आपको 2000 रुपए भेजता हूँ या 4000, तो नहीं कटेगा पैसा। ये व्यापारियों के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आम जनता ये सोच रही है कि मेरे 2000 रुपए भेजने से पैसे कट जाएंगे, तो भैया UPI पूरी तरीके से आम ग्राहकों के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। मतलब आम जनता के लिए भी चार्जेबल नहीं है। सबको लग रहा था कि भैया पैसा कटेगा, पैसा मैं आपको 2000 दे रहा था, आपने नहीं ली, इसमें आपका लॉस हुआ। पूरी जानकारी पता होती तो शायद आप ले चुके होते। लेकिन चलो, अच्छी बात है कि मेरा पैसा मेरी जेब में है, आज मैं बहुत खुश हूं। मां, एक गाना सुना दे इसी बात पे अखिल भाई मेरे को।
1: वो जो है ना, कभी अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, एकदम दस्तक देती है और एकदम चली जाती है। तुमने ऐसे एकदम दस्तक दी, तुमने सोचा, तुम्हें पता था कि भैया को तो पूरी बात पता ही नहीं है।
0: हाँ,
1: तो ना अपने 2000 रुपए अपनी जेब में ही रख लो।
0: बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो यार अखिल भाई, बहुत ही अच्छी बात बोली है। चलो फिर एक काम करते हैं, गाना सुनते

0: भैया जी बहुत सारी बातें तो हम रोज करते हैं, शाम का टाइम है, लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं, कुछ लोग गणपति के साथ में जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप ही बताओ, आप अभी तक गणपति उत्सव में कहाँ कहाँ गए हो और आपने मिठाइयाँ खाई या नहीं खाई? स्पेशली
1: मैंने मोदक भी खाए। और
0: यार
1: मैं...
0: मुझे मोदक में 1 रुपए का सिक्का जो मिलता है ना, वो मेरे लिए बड़ा लक्की कॉइन होता है, हर साल मिलता है, लेकिन इस साल मैं किसी के घर जा नहीं पाया हूँ। आज अगर आप कहीं ले जाए घसीटते नहीं, प्यार से
1: लेके जाऊंगा।
0: अरे वाह क्या बात है, इतने प्यारे तो आप हो, अकेले नीलकंठ कोठे पे चले जाते हो, कर हमें बताते भी नहीं।
1: ढाबे पे,
0: हाँ सॉरी ढाबे पे, वही वही। हाँ तो आप बताओ मेरे
1: भगवान क्या हो गया, क्या मैंने भी वही सुना जो आपने सुना था।
0: हाँ नीलकंठ, देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कोठी है जहाँ पे चाय पीने के लिए मैं अक्सर चला जाता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के घर है बड़े बड़े, आई शपथ, ऐसे ऐसे घर है ना आपके मुरादाबाद में, पता नहीं चलता होटल में घर में हूँ, ये बात है या नहीं?
1: बिल्कुल सही।
0: हाँ तो फिर कोटा बोलना कोई गलत तो नहीं था, अब आप गलत हो तो क्या करें, गलत बात गलत विचार क्या ही कर सकते हैं।
1: मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं अभी गया था 14 तारीख को, जो आपने सुना भी होगा, यहाँ के रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट है नेहा महेशी सिंह मुरादाबाद की, तो उनके
0: हाँ, उनका कल बर्थडे था, मेरे बहुत सारे लिसनर्स उन्हें देख चुके हैं, अब उसमें आप भी खड़े हो मेरे साथ, एक फोटो में डाली है, एक पिंक सा गमला लेके खड़े हैं हम लोग। हाँ सो टेल अस,
1: उनका उनके यहाँ पे गणपति, हाँ गणपति आगमन थे 14 तारीख को, तो मैं वहीं पे
0: मिस कर दिया।
1: हाँ तो तुमने इस बार मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मगर मैं
0: शायद गणपति जी का बुलावा ना हो कि मैं ज्यादा मोदक खा लूं उनके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाऊंगा, अभी तो है ना।
1: हाँ अभी तो है,
0: कोई बात नहीं। हाँ
1: तो मैंने वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे गया था उसमें, और अब तुम्हें भी लेके जाऊंगा, और वहाँ नहीं तो दूसरी जगह लेके चलो।
0: चलो अच्छी बात है, मतलब हमें खाने पीने से मतलब है यार। अगर आपके घर पे भी गणपति है या आपके पड़ोस में है तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं रेडी हो गए, ब्लैक कलर का कुर्ता नहीं पर्पल पहनूंगा आज, क्योंकि ब्लैक तो अवॉइड ही करना चाहिए, आज ग्रीन पहनूंगा, आज वेंसडे है ना, लक भी साथ देगा, एक मोदक की जगह दो देंगे,
1: बस तुम कुर्ता पहन लेना।
0: अच्छा टेंशन मत लो, मैं धोती नहीं पहनूंगा भाई, कुर्ता ही पहनूंगा। एनीवेज गाइज अभी हम वापस आते हैं, और ये हमारी कुछ अच्छी बात है, आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत करो, क्योंकि यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ सिर्फ आप हमें सुन सकते हो, राइट भाई?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया अपना फोकस फोन पे ना गाड़ी पे ही रखें, हमारी आवाजों के लिए आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, हाँ ये काम एक्स्ट्रा वाला अच्छा वाला कर लो। बाकी अभी थोड़ी देर में गाना सुनने के लिए आप फोन मत करो, अखिल भाई अभी 9 बजे अपना डिपार्टमेंट संभालेंगे तो आप तब फोन कर लेना, अभी फिलहाल हम एक गाना लगा रहे हैं आपके लिए अच्छा वाला, एक नहीं कई गाने होंगे, एड ब्रेक भी होंगे, फिर हम आएंगे लौट के, फिर आगे, ये देसी भाषा बोल दी मैंने, आगे आगे क्या होता है वो आनंद,
1: आगे जांगे खांगे,
0: उल्ली पार पल्ली पार, ये वो ढिपड़ा फिकड़ा पता नहीं क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो फिलहाल अगला गाना छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, मतलब अभी आ रहे हैं वापस, आप कहीं मत जाइए, बिल्कुल मत घबराइए,
1: और खूब कहते ना वो गाते रहो बजाते रहो, और जाने से पहले मेरी एक शायरी और सुनते जाइए।
0: बप्पा जी जान ही रहे हैं, आप सुना दो फिर इसी बात पे, गणपति बप्पा मोरिया।
1: जहाँ बप्पा का नाम हो वहाँ खुशियों की बात हो, जहाँ दिल में विश्वास हो वहाँ हर दिन खास,
0: हर दिन खास हो गणपति बप्पा मोरिया। आगे ये बोलूं या कुछ और भी बोलना है?
1: नहीं नहीं, गणपति बप्पा साथ रहे हर कदर हमारे, तुम मुस्कुराते रहे ये जिंदगी के नजारे।
0: अरे क्या थे, इसी बात पे मैं एक चीज और ये कहना चाह रहा था, मेरे साथ मिलके बोलो, एक फूल दो फूल,
1: एक फूल दो फूल,
0: गणपति बाबा ब्यूटीफुल,
1: वेरी कूल,
0: ये भी अच्छा था, एक गिलास दो गिलास,
1: गणपति बाप्पा हमारे पास,
0: हाँ
1: गणपति बाप्पा हमारे पास,
0: हाँ वेरी गुड। ये जय गणेश बीच में क्यों बजा दिया भाई, इसका तो अभी आरती का समय है बाबा। हाँ। चलो लेकिन फिलहाल हमारी जोक मस्ती चलती रहेगी, ये सुन लो आप,

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: तो गाइस अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सलमान भाईजान का, जिसमें वो आरती उल्टी कर रहे हैं सीधी करने की जगह, और इस बात को लेकर उनके फैंस को बड़ी वो लगी, मतलब हैरत हो रही है कि यार सलमान बाजी ने जो इतनी सारी फिल्मों में प्रेम बन के उन्होंने प्रेम बांटा है, अब वो आरती सीधी की जगह उल्टी क्यों कर रहे हैं। अब उस पे अर्पिता ने हालांकि उनको किया है कि अपने भाई को इशारा दिया कि भाईजान इसको उल्टा नहीं सीधा घुमाते हैं गणपति जी के सामने, अब इस पे लेके वो ट्रोलिंग में आ गए, मतलब काफी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उनका ये वीडियो।
3: कभी कभी होता है जब आप होते हैं मंदिर में या फिर जब आरती का कलर एक्चुअल प्रोसेस है, गलती हो जाती है।
2: हाँ,
3: जो बात फीलिंग है वो तो दिल से एक्चुअल
2: भैया, चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान, वो दिल से करते हैं ये चीज। तो
3: बाद में उनके एक्सप्रेशन से ऐसी लग रहा था कि यार मैं कर तो आती रहा हूँ चाहे मैं,
2: लेकिन अब मुझे समझ में नहीं, ये भी कोई वायरल करने या ट्रोल करने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो लोग इतने खाली बैठे हैं कि उन्हें कुछ भी पकड़ के खींचना है, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए,
3: उन्हें तो मसाला चाहिए।
2: एग्जैक्टली, तो वेल हम तो ये कहें भाईजान आप चाहे आरती इधर से घुमाएं या उधर से घुमाएं, बट मन से घुमाएं, है ना।
3: बहुत ही ऐसी गणेश जी आपके यहाँ भी, और
2: सिद्धि सिद्धि जो है आपको खूब सारा धन देने के पास बहुत है हमें दे। हम भाईजान की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हमें अभी बहुत जरूरत है ना। तो जो राइट बात है वो मैं कर देता हूँ कभी कभार इस बात में, हालांकि पैसे नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। अच्छा तो अखिल भाई मैं कह रहा था अभी चले घर पे या थोड़ा कुछ और आपको बताना है?
3: नहीं नहीं चलते हैं यार, अब तो हमारे लिसनर्स भी जो है अपने घर पहुंचने वाले हैं।
2: हाँ,
3: जाम कहते हैं आजकल, जाम भी लग रहा है जगह जगह थोड़ी सा काम की वजह से।
2: अच्छा अगर मैं आपको बोलूं काम की वजह से जाम भी लग रहा है और थोड़ा शहर में इधर उधर क्राउड भी है, आना जाना लगा हुआ है ना लोगों का, अभी हम और आप भी जाने वाले हैं तो वो सब तो है। अच्छा मैं कह रहा था अखिल भाई अगर मैं आपको बोलूं आप इंस्टाग्राम एक दिन के लिए छोड़ दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे?
3: छोड़ दूं मतलब इंस्टाग्राम,
2: मतलब एक दिन आपको नहीं चलाना है तो उस दिन आप इंस्टाग्राम की जगह क्या चलाओगे?
3: उस दिन मैं इंस्टाग्राम की जगह,
2: कौन सा आपका फेवरेट ऐप है?
3: ऐप नहीं, मेरा एक फेवरेट गेम है, पजल गेम है या कैंडी क्रश, मुझे थोड़ा सा दोनों
2: कैंडी क्रश। अच्छा वहाँ इनकी क्रश कैंडी है और कोई नहीं है, नहीं तो फिर मेरे को ही मार पड़ती साथ में। अच्छा तो मतलब आप उन पे अपना टाइम स्पेंड करोगे, दिन की शुरुआत कौन से वाले, एक आंख खोल के हम करते हैं बाहर निकालते हैं?
3: नहीं नहीं वो अब मैंने
2: व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम,
3: ये मैंने अब शुरुआत बिल्कुल बंद कर दिया, मैं दिन में 2 मिनट जो है ना अपने आप को ही दे रहा हूँ।
2: वेरी नाइस, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, इसलिए आप पहले से काफी अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, लोग आपकी तरफ जो आकर्षित होते हैं तुरंत चले आते हैं कि अखिल जी ये काम पे सिग्नेचर कर दीजिए।
3: ज्यादा नहीं आना देखना नहीं,
2: जो ईमानदारी की बात है वही बता रहा हूँ गाइस, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि देखो यही बोलना है लाइव जाके, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं यही बोल दूंगा। लेकिन यार अखिल भाई सच में अगर आप खुद को 2 मिनट देते हो तो वो 2 मिनट हालांकि 10 मिनट में तब्दील हो जाते हो, बात अलग है। सच है या गलत?
3: 2 मिनट में पीछे आवाज आती है पापा जल्दी चलो छोड़ने स्कूल में लेट हो रहा
2: है, बात तो मैं समझ सकता हूँ। आपको पता है ना 2 मिनट में तभी बैठ पाऊंगा जब बच्चे आवाज देंगे, उससे पहले बैठूंगा तो ज्यादा कर ही नहीं पाऊंगा। ये वाला अलार्म सेट होता है हमारे दिमाग में, यार इस टाइम पे बैठूंगा तो बच्चे आवाज देंगे खुद ही उठ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं?
3: वैसे एक बात बताओ तुम भी क्या अपने आपको 1-2 मिनट दे रहे हो क्या आजकल?
2: हाँ भैया मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आजकल इतना ज्यादा सदमे में हूँ कि सोते जागते कुछ पता नहीं चलता है कब उठ रहा हूँ कब सो रहा हूँ। वो थोड़ा सा सोच रहा हूँ, दुनिया कहती है मेडिटेशन करोगे तो आपको पीस मिलेगा रिलैक्स मिलेगा, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ख्याल आते हैं सपने आते हैं कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ। फिर मैंने एक यूट्यूब पे देखा तो उन्होंने कहा था जब आप नया नया मेडिटेशन करने जाओगे तो आपका मन भटकेगा, स्टेबल नहीं होगा, मतलब एक जगह समझ नहीं आ रहा रोकू कहा। अरे वो काट देंगे यार तुम टेंशन मत लो, ये भाई कह रहे हैं कि तुमने अभी जो मेडिटेशन को बोला वो काट दो। क्यों काट दो, मेडिटेशन तो मेरे काम की चीज है, बोलो आप करना चाहिए छोड़ना चाहिए?
3: नहीं नहीं करना चाहिए,
2: करना चाहिए।
3: और मतलब मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो सच में थोड़ा सा फील पॉजिटिव आया है इसमें।
2: अच्छा,
3: और पॉजिटिविटी
2: आपने इतनी सारी ब्रेसलेट राखियां एस्ट्रोलॉजर ये सब फॉलो करोगे तो पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? हमने एक लिया वो भी निकाल दिया, पैसा ही नहीं आया, उसने बोला था 1 महीना पहनोगे प्रोस्पेरिटी आएगी, प्रोस्पेरिटी जगह और क्या ही मैं बोलूं यार। लेकिन एक बात बताऊं कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं गाइस, हम छोटी सी बात बोल के जा रहे हैं, बात ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बातें हम नहीं करते हैं, कभी कभी कम बातें करते हैं, कभी कभी कुछ चीजों को अगर आप दिल से और मन से मानते हो ना तो वो आपको रिजल्ट भी देती है। किसी भी चीज को अगर आप मन से करोगे तो वो एक्चुअली आपको रिजल्ट देगी, क्यों अखिल भाई?
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल
2: है ना। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने अगर ठान लिया कि मुझे आज उसको शॉपिंग में उड़ाना है तो वो उड़ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ना। तो अगर आप मन से सोच लोगे ना आज मुझे डोसा खाना है तो आप खा के आ जाओगे,
3: डोसा 36 पे आके
2: वो आपको पता होगा आप कहाँ जाओगे, 36 पे या 25 पे। चलिए जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया, इधर सब कुछ गड़बड़ हो रिया, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। जूते वूते पड़ सकते हैं अभी लिसनर के, तो चलो भाई मैं अपना
3: चलो साहब, लिसनर्स को भी थोड़ा सा आराम,
2: खाली बॉटल भी उठा के चलो पानी की, इधर ही रख के जाते हैं, सुबह मेरे को पड़ती है डांट। तो चलिए गाइस गुड नाइट, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और हमारी तरफ से शुभ रात्रि, और अभी मेरी तरफ से, इनकी तरफ से तो अभी गाने बजेंगे आपकी पसंद के, है ना।
3: हाँ बिल्कुल,
2: चलिए तो आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, और एक बार फिर से गणपति बप्पा आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें, एंड बस मस्त रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
3: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
2: बाय
3: बाय बाय।

0: भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योग

0: और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
3: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
1: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
4: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
1: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
5: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया।

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: क्या?
1: इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है।

नमस्कार दोस्तों, शाम का लड़की भाग दौड़ के बाद अब थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और जुड़ जाइए अपने दोस्त अखिल के साथ, क्योंकि अब आ गया है

0: आने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। तो एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं, फिर हम लेंगे अपने पहले कॉलर को, क्योंकि 9837896896 ये हॉटलाइन अब खुल गई है, आप भी कर सकते हैं कॉल। तो एक शायरी के साथ करते हैं शुरुआत। शाम ढली तो यादों का कारवां निकल पड़ा, चेहरे पर मुस्कान और दिल में अरमान निकल पड़ा, सोचा था आज बस थोड़ा आराम करेंगे, रेडियो लगाया तो अखिल का फरमान निकल पड़ा। हाँ जी साहब, अब मुस्कुराइए और अपने दिल की बात जरूर कहिए। तो चलिए करते हैं बात अपने पहले लिसनर से और पूछते हैं क्या है उनके हाल। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, कैसे हैं आप
1: जी? बहुत बढ़िया है, पहले आवाज में क्या आ रही आवाज?
0: हां जी सर, तो मैं अपना आप जी, अपना जी, नाम बताइए, अभी हमारे सारे श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: राकेश कहाँ से बात कर रहे हैं? राकेश जी मुरादाबाद से या आसपास से?
1: नहीं, मैं बड़े दूर से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अरे साहब आप कहाँ ठंड वाली बातें कर रहे हैं आज? ठंड हो रही है? नहीं हो रही है
1: जी? जी थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो रही है और सुबह शाम ठंड होती है, और अभी जो है अच्छा है, और बीच बीच में मौसम भी करवट बदल देता है।
0: मौसम भी करवट बदल रहा है और आप भी करवट बदल रहे होंगे साहब, तो टाइम भी करवट बदलने वाला हो गया है।
1: जी जी जी जी जी जी।
0: और क्या करते हैं आप राकेश जी, कहीं चांद पे तो नहीं जाने वाले?
1: नहीं नहीं अभी तो नहीं, बस घर पे हैं, और हम जो हैं अपनी जो है बागवानी का काम करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो कभी आपका यूपी में कहीं घूमना हुआ है? आप कभी आए हैं यूपी?
1: नहीं फिलहाल अभी तो प्लान नहीं बना यूपी, और अगर हम कोशिश करेंगे आपके यूपी भी आएंगे और मुरादाबाद भी घूमेंगे।
0: जरूर आइए साहब, पीतल नगरी की चमक देखिए आके, आप खुद ही कहेंगे साहब आज मैं बिना लिए कुछ जाऊंगा नहीं यहाँ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, कभी आएंगे
0: मुरादाबाद। तो कोई शायरी या कोई एक गाना जो हमारे श्रोताओं के लिए आप शिमला से एकदम ठंडा ठंडा सुनाना चाहें?
1: जी तो मैं एक गाना सुनाऊंगा और उसी गानों को मैं सभी श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ, और उसका नाम है आशिकी, और गाने की बोले इस तरह से है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी आशिकी तू ही, पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी आशिकी।
0: क्या बात है, क्या बात है। आपकी शादी हो गई है राकेश जी?
1: नहीं अभी तो शादी नहीं हुई है।
0: तभी आपने इतना सुर में गाना गाया है।
1: नहीं शादी नहीं हुई है अभी।
0: नहीं नहीं, चलिए साहब जल्दी, हम तो यही दुआ करेंगे, यही भगवान से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो और आप इस गाने को और भी अच्छे से गाएं। तो चलिए, आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे या सभी श्रोताओं को डेडिकेट कर दिया आपने?
1: सभी श्रोताओं के लिए गाना डेडिकेट रहेगा जो सुन रहे हैं सभी।
0: ठीक है राकेश जी, बहुत ही बढ़िया बात, और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं हमारे साथ शिमला से जुड़े थे राकेश जी, और कह रहे हैं वहां चल रही है खूब ठंडी ठंडी हवा, और उसके साथ इन्होंने अपना पसंदीदा गाना ही बताया। कह रहे हैं अभी शादी नहीं हुई है मगर आशिकी फुल ऑन है, तो आप भी लीजिए उस गाने का आनंद और कॉल करें 9837896896 पे, करेंगे साहब दिल से दिल की बात करेंगे। जैसे करी है राकेश जी की दिल की बात, वैसे ही होगी आपकी बात। तो हमें सिर्फ कॉल करें या फिर मैसेज करें और बताएं अपना थोड़े से राज़।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
2: It's a unisex song.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। खूब सारी बातें हो रही हैं, साहब बिना प्यार के तो चैन है नहीं। और हाँ, अगर आपके दिन की सबसे अच्छी बात क्या रही तो ज़रूर हमें बताएं। क्या रहा, काम अच्छा हुआ, किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आया, घर में कोई खुशखबरी मिली, या फिर बस आज शाम घर पहुंच गए साहब जैसे तैसे, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं कौन सी उपलब्धि थी जो आज आपके साथ जुड़ी है। और हाँ, अगर आज का दिन थोड़ा तो कोई बात नहीं भाई, हर दिन एक जैसा हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर पल चेहरे पर हंसी हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ दिन बस गुजारने के लिए आते हैं, हर दिन ज़िंदगी में त्यौहार हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो चलिए लेते हैं अपने दूसरे कॉलर को लाइन पे, कहेंगे साहब आपने तो हमारे को भूल ही गए। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं सर आप?
1: बहुत बढ़िया
0: सर, क्या नाम है हमें सारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, अरावली में रहता हूँ।
0: और सर इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: इस समय लेट से पड़े, खाना खा के आराम कर रहे हैं।
0: पंखा बिल्कुल तेज चल रहा है या एकदम तीन नंबर पे?
1: अरे भैया बहुत स्लो चल रहा है, ये भी पैसे मांग रहा है, ये भी अटक गया कर रहा है।
0: कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, कभी कभी एक डंडा अपने पास रखिए, जहाँ हल्का हो एकदम डंडे से घुमा दिया साहब पंखा। तो आज क्या है जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई गाना गाना चाहेंगे या कोई शायरी?
1: शायरी तो हम चाहते नहीं, गाने के बोल बता सकते हैं।
0: जरूर जरूर, गाने के तो बोल बताइए साहब। क्या बात है, क्या बात है, ये बोल भी बहुत अच्छा है, गाना भी, पूरी उम्मीद है गाना भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये गाना जहाँ तक मुझे याद है रेखा जी पे फिल्माया गया है, और जितेंद्र जी इस फिल्म के हीरो थे।
1: हीरो थे।
0: अमीरी गरीबी, बिल्कुल सही, अलका याग्निक जी की आवाज़ में है ये गाना, तो ज़रूर ये गाना सुनाएंगे। और नरेंद्र जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में आप घर से निकले हो और आधे रास्ते याद आया कि यार मैं तो हेलमेट पहनना ही भूल गया?
1: हेलमेट का जिक्र तो नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा हूँ घर से निकल के मोबाइल रख दिया हूँ एक तरफ, आधे रास्ते अरे यार मोबाइल तो भरती रहती है, फिर भागना
0: पड़ता। अरे मोबाइल के बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते।
1: क्योंकि हम साइकिल पे हेलमेट तो लगा नहीं सकते।
0: नहीं साहब, लगा सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक रील बहुत वायरल हुई थी, गाड़ी में भी हेलमेट लगा के घूम रहे थे साहब एक। तो कोई बात नहीं नरेंद्र जी, आपकी भी ये फरमाइश पूरी की जाती है, और आप आराम से पंखे के नीचे हवा लेते रहिए। ओके नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे थे कि साहब आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा पंखा उनका हल्कल के चल रहा है, और ये भी कह रहा है कि भाई साहब मेरी सर्विस करवा दो, मेरी सर्विस करवा दो। तो ज़रूर इस पंखे की भी सर्विस होगी, और इस गाने को सुनने के बाद नरेंद्र जी भी कहेंगे। चलिए नरेंद्र जी की फरमाइश का गाना पूरा करते हैं और फिर आपकी कॉल का इंतजार करते हैं। 9837896896 ये हॉटलाइन नंबर बिल्कुल रेडी है, फटाफट कॉल करें और दिल की बात करें।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप इस समय कर रहे हैं सफर और कभी कभी लगता है यार मैं ही हूँ क्या इसी अकेले रोड पे, या ये रोड मेरे लिए हो गई है खाली। तो उसका मजा ही कुछ और है जब ना आगे दिखता है ना कोई पीछे। मगर साहब एक्सेलरेटर पर पैर रखिएगा, ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि गाड़ी आराम से चलानी है, बहुत ही हौले हौले। तो चलिए आज हुई है खूब सारी बातें और एक छोटे से और अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि आज न्यूज ही कुछ ऐसी है। आज बात उन युवाओं की है जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। UPSSC ने 12,405 असिस्टेंट टीचर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो अगर आपके घर में भी कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है ना, तो ये खबर उसको जरूर शेयर कीजिएगा। और चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, पूछते हैं क्या कर रहे हैं जनाब। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: बढ़िया भैया,
0: अरबाज खान।
1: अरबाज रेडी।
0: अरबाज रेडी, कैसे हैं आप, इस समय क्या कर रहे हैं?
1: कुछ नहीं, बस ड्राइव कर रहा था।
0: आप ड्राइव कर रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर?
1: मैं कुंदरगी जा रहा था, मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से कुंदरगी जा रहे थे, तो बहुत ही संभाल के चलाइएगा, क्योंकि आजकल खूब सारे कहते हैं ना चीते बाहर निकले हुए हैं।
1: नहीं, बेकार से हूँ।
0: तो कोई नहीं कोई नहीं, आराम से। तो क्या कर रहे हैं इस समय, कार में हमारे ही गाने सुन रहे थे या अपने?
1: आपके ही सुन रहे सर।
0: तो बढ़िया बढ़िया। तो आप क्या काम करते हैं अरबाज जी? क्या करते हैं आप? अच्छा, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग भी आजकल साहब ट्रेंडिंग में चल रही है, तो ये तो ट्रेंड ही अलग चल रहा है। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: मैं अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान को डेडिकेट करना चाहूंगा। हम तेरी यादों में रहते, तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने आज तेरे नाम बन गए हैं बिल्कुल ही।
1: मैं उसका डेली गाना सुनता हूँ सर।
0: साहब गाने आप सलमान खान के सुन रहे हैं और नाम आपका अरबाज खान है, तो कहीं ना कहीं तो आपका लिंक निकला हुआ है।
1: मैं तेरी सुनता हूँ, यही गाना सुनता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं सुनता। आप बस यही सुना दीजिए।
0: चलिए सर, ये भी फरमाइश आपकी पूरी करते हैं और आप भी आराम से इस गाने को सुनते सुनते कुंदर की पहुंच जाइए। ठीक है। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे अरबाज जी, जो कह रहे हैं तेरे नाम मूवी का गाना, और जरूर इनको ये गाना प्ले करते हैं। इनके लिए जहाँ ये गाना पहुंचना चाहिए वहां भी पहुंचना चाहिए, और वहां से थोड़ी सी तो मुस्कान आनी चाहिए, तो जरूर वहां से मुस्कान आएगी। और अरबाज जी, आप इस गाने का लीजिए आनंद। अगर आपको भी कोई गाना अपनी फरमाइश प्ले करनी है, किसी को डेडिकेट करना है, तो ज़रूर 9837896896 पर करें कॉल, और ज़रूर अपने हॉटलाइन नंबर पर बात करते हैं दिल से दिल की।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे गाना बेकरार में बेकरार। तो पहले भी मैंने दोस्तों आपके साथ कई बार बातें करी हैं कि हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और ठीक इस गाने के पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। और वो थोड़ी सी कहानी है कि एक गाना ये एक दिन में शूट करना हो तो कैसे करते हैं, एक ही कास्ट के साथ, जब आपके साथ ज़्यादा कोरियोग्राफर्स, ज़्यादा आपके पास पीछे डांसर्स ना हो और कोरियोग्राफर खुद उस गाने में शूट कर रहा हो, अपने आप को खुद भी उस गाने का एक पार्ट हो। तो कहते हैं ना, एक कहानी अलग ही बन जाती है। उस समय गोविंदा जी ने सोलो ये गाना परफॉर्म किया और एक ही दिन में ये गाना एक ही लोकेशन, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में इस गाने को शूट किया गया। तो चलिए बात करते हैं अपने लिसनर से, और जो बहुत देर से वेट भी कर रहे थे हमारा, तो उनकी भी कॉल लेते हैं क्योंकि 9:46 9:46। तो आप लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी आपके साथ दिल की बातें कर रहे हैं। 10 बजने वाले हैं साहब, इसलिए उससे पहले कॉल ज़रूर मिला लीजिएगा। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? हेलो सर, कहाँ चले गए? ने तो अपनी कॉल कर ली है डिस्कनेक्ट, मगर कोई बात नहीं, सर ने अपनी फरमाइश हमें बता दी थी और उनकी फरमाइश भी हम जरूर प्ले करेंगे। तब तक के लिए अगर आज कोई भी मस्ती या कोई भी ऐसी बात अगर आपकी याद में हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे पास मैसेज आया है बहुत ही प्यारा सा एक। हेलो अखिल भैया, प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं सर आप, बताएं। बहुत ही बढ़िया गाने, एक से बढ़कर एक गाने बजा रहे हैं। और मैं रिहान भाई, अरे रिहान भाई कैसे हैं आप, आपका भाईजान। हाँ जी साहब, आप हमारे पूरे पूरे भाईजान हैं और बहुत ही बढ़िया गाने बजाएं दोस्त, क्या बात है। आपने आज अपने सारे मैसेज में हमारे साथ सारे रिश्ते अपने बता दिए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा रिहान जी, आपने हमें मैसेज किया। दूसरा मैसेज आया है हमारे पास। हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी, दिल से दिल तक, आप कैसे हो? ललिता कश्यप मुरादाबाद। हाँ जी, आप पहचान तो गए होंगे, ललिता कश्यप जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं और सारे अपडेट हमें बताते रहते हैं। कह रहे हैं सॉन्ग बिंदास सुना रहे हैं, ढलती शाम लेकर आई है खुशियों का पैगाम, अखिल सर के नाम हो आज की प्यारी शाम, आपकी मुस्कान यूं ही हमेशा बनी रहे, आपकी हर शाम खुशियों से सजी रहे। क्या बात है ललिता जी, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं। सॉन्ग सुना रहे हैं तो हमारी पसंद का भी सुना दीजिएगा, तो जरूर जाने से पहले आपकी पसंद का भी सॉन्ग सुनाएंगे। मगर उससे पहले एक और मैसेज हमारे पास है, पढ़ते हैं। चल रहा हूँ धूप में तो विनायक तेरी छाया है, शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब ये मोह माया है। क्या बात है, क्या लाइनें लिखी हैं आपने। हमारा पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार। जी हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। लाइन पर मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से आप बोल रहे हैं, यादव फैमिली। हाँ जी, हम पहचान गए थे यादव फैमिली। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्ले ओ माई फ्रेंड गणेशा, तो जरूर ये भी पूरी करेंगे फरमाइश। चलिए बात करते हैं कॉलर से।
1: नमस्कार सर, क्या?
0: हेलो, दिल से दिल तक, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हाल चाल। हर्ष सर बोल रहे हैं क्या?
0: हम बोल रहे हैं मुरादाबाद एफएम 89.6 से अखिल।
1: अखिल, अखिल सर, हां मैं हर्ष कह रहा हूं, जल्द करके दी बात।
0: कोई बात नहीं साहब, आप कुछ भी कह सकते हैं, बस ये है कि शायरी सुनानी पड़ेगी। अब आपने कुछ भी कह दिया है तो
1: शायरी तो मैं शायरी कहां करता हूं, मैं शायरी वायरी कहां
0: याद। शादी हो गई सर आपकी?
1: अभी हो गया।
0: अभी अभी मतलब क्या, एक दो दिन पहले ही हुई है क्या?
1: सुना,
0: सुना दीजिए साहब, आप तो सुना दीजिए।
1: क्या क्या खता हमसे हुई जो खत का आना बंद था, क्या खता,
0: क्या बात है,
1: आप ही नाराज थे, डाक खाना बंद था
0: साहब। डाक खाना ही बंद होगा साहब, आपसे कौन नाराज होगा, जिसकी अभी दो दिन पहले शादी हुई है उससे नाराज कौन होगा साहब।
1: बात सही है,
0: आप एक हाँ करिए सर, आपका तो भी हक बनता है।
1: सर ये जो डॉक्टर डीएमआर हॉस्पिटल का जो एड सुनना था मुझे थोड़ा सा।
0: आपको एड सुनना था डीएमआर हॉस्पिटल का? तो जरूर हम आपको ये ऐड सुनाएंगे। जब भी ये शो चलता रहेगा तो शो के बाद आप जरूर ऐड सुनेंगे। जब जब ऐड का टाइमिंग होता है आप ध्यान लगा के सुनिएगा, आपको डीएमआर हॉस्पिटल का ऐड सुनाई आएगा। अच्छा गाना भी सुनाना पड़ेगा। हाँ साहब, आप आपकी शादी हुई है तो हमारी तरफ से एक तोहफा ही ले लिए, हम गाना ही सुना सकते हैं आपको। बताइए कौन सा गाना? तो साहब दूल्हे राजा के साथ ही आइए सर। आपने कितना डांस किया अपनी शादी में ये बताइए आप। हैं सर, आदत डाल लीजिए, आगे तो डांस ही करना है। डांस करने में कोई बुराई नहीं है। क्या बात है साहब, क्या बात है। बिल्कुल आप पूरी फोर्स लेके गए हैं शादी करने, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। आप पूरे बैंड बाजा सही से बजा के आए हैं
1: सर। और हमारे साथ में मुस्लिम भाई करोले से।
0: हाँ हाँ, तो उनकी भी शादी हो गई क्या अभी अभी?
1: हाँ उनकी भी शादी हो गई, उनकी तो बच्चे जवान हो गए।
0: चलिए तो वो क्या वो अच्छा अच्छा आज लोग गाने सुनवाने के लिए कॉल करते हैं हमें। फरमाइश, आप पहले हमारे कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे पहले ऐड सुनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक नया कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सुनने को भी मिला। तो आप ऐसे कॉल करें और कम से कम हमारे जितने भी ऐड हों ऐसी आप रिक्वेस्ट करके ऐड प्ले करवाएं। चलिए इसी ठीक है सर, ओके सर। तो हमारे साथ जुड़े थे अकरम साहब, कह रहे हैं कि साहब अभी अभी शादी हुई है और मैं गाना ही सुनना चाहूँगा, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो आप तो ये दुल्हन ले आए हैं और ऐड भी इन्हें डीएमआर का सुनना है, तो भाई साहब कॉम्बिनेशन इनका बड़ा खतरनाक है। कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ये गाना सुनिए और हाँ 9837896896 पे कॉल करें। हंसी आपकी भी नहीं रुक रही है, कोई बात नहीं, तब तक इस गाने का आनंद ले लीजिए।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ इतनी सारी दिल की बातें हुई, खूब सारी आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं। तो कहते हैं ना, बात छोटी सी थी दिल तक उतर गई, एक मुस्कान थी जो यादों में ठहर गई। हमने सोचा था भूल जाएंगे उसे धीरे धीरे, मगर उसकी याद हर शाम फिर से आ गई। तो दोस्तों जो है ना, प्यार सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, प्यार परिवार से भी होता है, दोस्त से भी होता है, अपने शहर से भी होता है, और उस आवाज़ से भी होता है जो रोज़ शाम आपका साथ देती है, जैसे आप लोगों की आवाज़। जो भी सुनते के साथ ही कहता है ना, जब अंदर से आवाज़ आती है, यार आज हमारे इस लिसनर का कॉल क्यों नहीं आया। तो कहीं ना कहीं तो बातें रहती हैं जो दिलों से दिलों को जोड़ती हैं। चलिए चलते हैं शो को बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे लेकर, और लास्ट कॉल सुनते हैं हमारे लिसनर की, और बातें करते हैं उनसे खूब प्यारी सी दिल की। हेलो, दिल से दिल तक आपका।
1: मैं नाम मोहम्मद उस्मान है, सागुप्ता साकिबुल्ला की तारा ट्रेक के पीछे नदी पे से बोल रहे हैं, मुरादाबाद से।
0: अरे सर, कैसे हैं आप? सर, कितने रंग भरेंगे आप उस्मान जी, आप तो हर सुबह शाम रंग ही भरते रहते हैं।
1: आपकी मेहरबानी है सर।
0: कभी कभी जो टायर में एक आध बार फूंक मार के हवा भी भर दीजिए करे। तो इस समय क्या कर रहे थे उस्मान जी आप? शाम को आप चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं, या चाय भी आपने पीनी छोड़ दी है?
1: आप भी पीते हैं और हम भी पीते हैं
0: साहब। तो चाय के साथ कौन सा बिस्कुट खाते हैं आज बता दीजिए सभी श्रोताओं को।
1: तो जो भी मिल जाता वो ही अच्छा लगता।
0: नहीं नहीं साहब, आज बता दीजिए आप पार्ले जी खाते हैं या फिर गुड्डे खाते हैं?
1: चिड़ियों को भी खिलाते हैं।
0: चिड़ियों को भी बिस्कुट खिला देते हैं आप? चिड़िया तो फिर आपसे बहुत खुश रहती होंगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो कोई शायरी सुनाइए उस्मान जी, अब आखिरी शो के अंतिम पड़ाव पे है, आखिरी कॉल आपसे आपके साथ कनेक्ट हुई है, तो कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना शायरी।
1: हाँ बिल्कुल साहब। एक वक्त भी है हमारा सलम, तुम दरिया और मैं किनारा बन जाऊं, दूरिया अब नहीं हमारा सलम।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप तो कह देते तुम नदी और मैं किनारा बन जाऊं, क्योंकि आप तो नदी के पास ही रहते हो ना। दरिया के पास तो आप रहते नहीं हो, तो आप ये शायरी में ऐड कर देते अपनी कि तुम नदी बन जाओ मैं किनारा बन जाऊं। तो चलिए उस्मान जी, कौन सी फरमाइश है आज आपकी, कौन सी चांदनी और मेरी चांदनी?
1: बादल भरे रंग।
0: सर, दो तीन दिनों से रंग बादल जो है बिल्कुल ही बरस रहे हैं, रंग भी भर रहे हैं सर। ये अब पता चला ये क्यों बरस रहे हैं, ये आप इस गाने को सुनना चाह रहे थे इसलिए इतने दिनों से हमें बादल तंग कर रहे हैं। शुक्रिया उस्मान जी, शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया
1: प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं साहब।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद उस्मान जी। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे उस्मान जी, जो कह रहे हैं कि रंग भरे बादल में, और जो गानों की उनकी चॉइस है ना, पहले भी हमेशा एकदम ऐसी ही रहती, बिल्कुल रंग भरी, और हर गाने की फरमाइश जैसी जब भी वो करते हैं तो हमें भी वो गाने जो वो कहते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही कहते हैं ना आनंद आ जाता है। तो चलिए अब है अंतिम पड़ाव की ओर, जाने से पहले आपको पता ही है कि एक शायरी तो बनती ही है। जिंदगी को थोड़ा आसान बनाइए, जो मिले उसमें मुस्कुराइए, हर बात का जवाब जरूरी नहीं, कुछ बातों को दिल से जाने दीजिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बहुत ही छोटी है, नाराज मत करिए और ना ही नाराज रहिए। आज की शाम में हमने खूब सारी बातें करी, खूब शायरी सुनी, खेल की भी बातें सुनी और थोड़े से अपडेट लिए उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के। तो आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। और याद रखिए, रेडियो की आवाज कानों तक आती है लेकिन अच्छी बात जो है ना दिल तक जाती है बिल्कुल सीधे। हाँ जी, आप ये दिल में कहाँ इसे झांक रहे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ पे आपने इसे छोड़ा था। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल और अब इजाजत दीजिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधे पकड़िए, अपनों का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, पूरे लोगों के लिए पूरा समय आपने दे ही रखा है, पूरा दिन आप भी थक जाते हैं, ये काम वो काम, तो थोड़ा सा तो आराम अब आपको भी चाहिए साहब। तो फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई बात और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए दिल से जुड़िए, अखिल के संग जुड़िए और हाँ फॉलो ज़रूर करिए साहब, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे अखिल एरन के नाम से, तो ज़रूर खूब सारी बातें करेंगे और वहाँ भी चटकारे लेंगे। गुड नाइट, कल मिलते हैं ठीक 9 बजे आपसे इसी समय मस्ती के साथ। बाय बाय।

एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइविंग के साथ साथ मजे मजे में आपका शो का लुत्फ भी उठा रहा हूँ। तो सर मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, अगर हो सके तो मेरी पसंद का गाना जरूर प्ले कर दीजिएगा। सर हमने आपकी पसंद का गाने को प्ले कर चुके हैं और आप अपना ध्यान रखिए, चाहे कहीं से भी हो, इटली से आप बात कर रहे हैं, सभी श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे। और हाँ जी साहब, इटली तक हमारा मैसेज जरूर पहुंचे, बिल्कुल मेलोडी वाला। तो चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद 89.6 FM।
5: बेटा,

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

या पटना, यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

ಇನ್ನಾಯ ಅದು.

0: गोला चतुर एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चलने तो को के समझे
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहे ना किसी के,
1: हो

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।